नमस्कार श्रोताओं, मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्स पर, एफएम बैंड पर 100.1 मेगाहर्ट्स, डीआरएम पर 909 किलोहर्ट्स और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एयर पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के वैसाख मास की 19वीं तिथि, तदनुसार 9 मई सन 2026 ईस्वी। प्रातः के 5:56 होने वाले हैं। अब हमारे आज के प्रसारण मंगल ध्वनि के साथ आरंभ होते हैं।

हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। प्रातः की 6 बजने वाले हैं। अब समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। भारतीय जनता पार्टी यहां पहली बार सरकार बनाने जा रही है। शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई।

0: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
1: विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद श्री अधिकारी ने राज्यपाल आरएन रवि से भेंट की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। तमिलनाडु में तमिलगम वेत्री कलगम तिवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने टीवीके को समर्थन देने की खबरों का खंडन किया है। ये भी खबरें आ रही हैं कि वे आज होने वाला शपथ ग्रहण समारोह स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले कल टीवीके प्रमुख ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात कर सहयोगी दलों के समर्थन पत्र सौंपकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। उधर केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव और बढ़ गया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने ओमान की खाड़ी में एक तेल टैंकर को कब्जे में ले लिया है। वहीं अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि उनके सुरक्षा बलों ने नाकेबंदी का उल्लंघन करने पर ईरानी झंडे वाले दो टैंकरों को रोक दिया है। इन घटनाओं के बाद ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष विराम टूटने के कगार पर पहुंच गया है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि यह प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इनमें दोनों पक्षों को 1,000 कैदियों का आदान प्रदान करना शामिल होगा। उन्होंने रूस यूक्रेन संघर्ष को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा युद्ध बताते हुए कहा कि स्थायी रूप से शांति स्थापित करने के लिए बातचीत जारी है। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है, जो प्रतिवर्ष 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर

वंदना कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आज संजीव कालिया का नमस्कार। श्रोताओं, मनुष्य के जीवन में यदि कोई शक्ति उसे टूटने से बचाती है, भटकने से रोकती है और भीतर से मजबूत बनाती है तो वो है भक्ति। भक्ति हमारे व्यवहार, हमारी विनम्रता, हमारी करुणा और हमारे सत्य में भी दिखाई देती है। जब संसार का शोर मन को अशांत कर देता है तब ईश्वर का स्मरण भीतर एक शांत दीपक जला देता है। भक्ति हमें यह सिखाती है कि जीवन केवल पाने का नाम नहीं है बल्कि स्वयं को श्रेष्ठ बनाने की साधना भी है। किसी कवि ने कहा है कि जिस मन में श्रद्धा का प्रकाश होता है वहीं जीवन में विश्वास होता है। और श्रोताओं, हर शुभ कार्य का प्रारंभ प्रथम पूज्य श्री गणेश जी के स्मरण से किया जाता है। गणपति केवल विघ्नहर्ता ही नहीं, वे बुद्धि, विवेक और संतुलन के प्रतीक भी हैं। वे हमें सिखाते हैं कि जीवन में शक्ति से अधिक आवश्यक है समझदारी और धैर्य। तो लीजिए, कार्यक्रम का आरंभ करते हैं गणेश वंदना के साथ।

और श्रोताओं, अब स्मरण करते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का। प्रभु श्री राम आदर्श जीवन की प्रकाश स्तंभ हैं। उन्होंने हमें सिखाया है कि परिस्थितियां कैसी भी हों, मर्यादा और सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आज जब संसार तेजी से बदल रहा है, तब श्री राम की लीला हमें संयम, कर्तव्य और परिवार के महत्व की याद दिलाता है। तो लीजिए सुनिए प्रभु श्री राम की मधुर स्तुति।

श्रोताओं, जीवन केवल नियमों से नहीं चलता, उसमें प्रेम और मधुरता भी आवश्यक है। और यही संदेश देते हैं योगेश्वर श्री कृष्ण। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि कर्म करते रहो, लेकिन अहंकार मत करो। प्रेम करो, लेकिन आसक्ति में मत डूबो। युद्ध करो, लेकिन अन्याय के लिए नहीं, धर्म के लिए। कुरुक्षेत्र के बीच खड़े होकर उन्होंने मानवता को गीता का अमर संदेश दिया, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो लीजिए, सुनिए प्रभु श्री कृष्ण की ये मधुर भक्ति रचना।

श्रोताओ, भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना इस समय आप आकाशवाणी की कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से सुन रहे हैं। श्रोताओ, जब जीवन में अंधकार बढ़ता है तब शक्ति का स्मरण आवश्यक हो जाता है। माँ दुर्गा साहस, आत्मविश्वास और मातृत्व की प्रतीक हैं। वे हमें ये संदेश देती हैं कि अन्याय के सामने मौन रहना भी अधर्म है। भक्ति हमें विनम्र बनाती है, परंतु शक्ति हमें अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना भी सिखाती है। तो लीजिए सुनिए जगत जननी माँ दुर्गा की ये स्तुति।

श्रोताओं, भक्ति का सर्वोच्च उदाहरण यदि किसी में दिखाई देता है तो वो है पवन पुत्र हनुमान जी। शक्ति होने के बावजूद विनम्रता और ज्ञान होने के बावजूद अहंकार से दूरी और प्रभु के प्रति पूर्ण समर्पण, यही हनुमान जी का चरित्र है। हनुमान जी से हम प्रेरणा लेते हैं कि सच्चा भक्त वही है जो सेवा में आनंद महसूस करे। तो लीजिए सुनिए हनुमान जी की ये भक्ति रचना।

श्रोताओं, कहा गया है कि कलयुग केवल नाम अधारा। जब मन थक जाए, जब रास्ते धुंधले लगने लगें और जब भीतर बेचैनी बढ़ जाए, तब ईश्वर का नाम एक औषधि की तरह काम करता है। और राम नाम केवल शब्द नहीं है, वह चेतना है, वह विश्वास है और वह आत्मा की शांति है। तो आइए सामूहिक रूप से प्रभु नाम का स्मरण करें।

श्रोतो, भक्ति का अर्थ संसार छोड़ना नहीं है, बल्कि संसार में रहते हुए अपने भीतर प्रकाश बनाए रखना है। यदि हमारे व्यवहार में विनम्रता है, वाणी में मधुरता है, हृदय में करुणा हो और कर्म में सत्य हो, तो वही सबसे बड़ी पूजा है। इसी मंगल कामना के साथ आज के इस वंदना कार्यक्रम से संजीव कालिया को अनुमति दें। नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। लीजिए अब सुनिए आध्यात्मिक दर्शन का कार्यक्रम चिंतन। विषय है ओमकार साधना। वाचक स्वर चैतन्य गुरुजी का है।
1: साधना एक शब्द है, लेकिन ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अर्थ होता है। ओंकार का साधना के बारे में आप सबको परिचय कराना चाहूँगा। ओंकार, जैसे हम बोलते हैं एक मंत्र का ओम नमः शिवाय ऐसा, तो सिर्फ ओम बोलने से उसका पूरा फायदा हमें मिलता नहीं। ओंकार के अंदर में तीन मात्राएं होते हैं, आकार, उकार, मकार। कौन सा मात्रा को कितना देर बोलने से कौन सा तरंगे पैदा होते हैं, और उन तरंगों का जो फ्रीक्वेंसी है, जो हमारा मेटाबॉलिज्म के ऊपर, हमारा शरीर के अंदर में ब्लड केमिकल्स के ऊपर कैसा काम करता है, एक तकनीक है जो ओंकार साधना है। और उसको हम इस तरह बोलने से बहुत फ़ायदा होगा, जैसे

अभी मैं तीन मात्राओं को उच्चारण किया, लेकिन अंदर से आवाज एक ही है। इसको ऊपर में जैसा पूरा मुंह खोल करके बोला हूं तो आ, ये शब्द नाभि से निकलती है। और दूसरा ऊ उकार, तो उसको हम दोनों होठों को नजदीक करते हैं तो उकार में बदलते हैं। इस मात्रा को मैंने ज्यादा इस्तेमाल किया और ये अनाहत चक्र मैंने हमारा हृदय के पास में, क्योंकि जो कॉन्शस लेवल है हमारा ये पूरा यहीं पर होता है। और दूसरा मकार, जब मकार मैंने उच्चारण किया तो कंठ के ऊपर, जिसको हम पराशक्ति परा बोलते हैं। इस तरह उकार को ज़्यादा बोलने से शरीर के अंदर में जो अनाहत चक्र है चौथा, और उसके नीचे और ऊपर में पूरा ऊर्जा का संचालन होगा और नीचे अंगों के अंदर में जितने भी बीमारियां दूर होते हैं। ऐसे ही आध्यात्मिक क्षेत्र में अगर हमको आगे बढ़ना हो तो मकार शब्द को दोनों होठों को बंद करके उच्चारण करते हैं, तब पूरा मस्तिष्क के अंदर में ऊर्जा संचारित होगा और उससे हमारा मस्तिष्क में और मानसिक तौर पर बहुत फायदा होगा। अगर एक आम आदमी शुरू करना हो तो इसी तरह आकार को 4-5 सेकंड बोलें, फिर उसके बाद ओकार को जितना लंबा खींच सके उतना लंबा खींचें और मकार से अंत कर दें। और इस तरह से अगर हम आकार ओकार मकार को बोलते हैं तो जो उन कोशिकाओं के अंदर में जो गड़बड़ है वो दूर हो जाएगा और अपने आप फ्रीक्वेंसी बदल जाएगा और बीमारी दूर हो जाएगा। और इसके साथ में अपना श्वास का प्रक्रिया को भी जोड़ते हैं। जब बोलते वक्त हमारा शरीर के अंदर में से कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे मैं अभी ऊ बोल रहा हूँ तो मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। अब अंत में जो कुछ भी बचा है मुंह बंद करके नाक से बोलता हूँ तो नाक से जो बचा वो पूरा निकल जाता है। निकलने के बाद श्वास ना लेते हुए नाभि को अंदर खींच करके गर्दन को नीचे करते हैं और बाहर में हवा बाहर, मतलब एक बांध बन गया। इसको कहते हैं प्राणायाम में शून्य स्थिति। इस स्थिति में जितना देर रह सकते हैं उतना देर रहेंगे, जब सहन नहीं कर पाते हैं तब गर्दन को उठा करके मुंह से श्वास ले लेंगे। यहाँ पर क्या होता है, अब तक जो ऑक्सीजन कोशिकाओं को नहीं मिला है वो ऑक्सीजन मिलने लगता है। जब ऑक्सीजन से भरपूर हो जाता है कोशिकाएं, तब उसके अंदर में जो कार्बन डाइऑक्साइड भरा हुआ आज तक वो पूरा निकल जाता है, तो नया ऊर्जा कोशिका को मिलेगा और पुराना गंदगी निकल जाती है। इस तरह हर कोशिका, हर अंग

0: अंग प्रत्यंग पूरा बॉडी के अंदर में और खास करके रीढ़ हड्डी के अंदर में, मेरुदंड के अंदर में जितना भी तकलीफ है सब दूर हो सकते हैं। जो व्यक्ति इस क्रिया को इस तरह 25 मिनट, मतलब 25 मिनट लगातार बोलना नहीं, ये सब बोलना श्वास के साथ में जोड़ना 1 मिनट लगता है और 4 मिनट आराम करते हैं। एक ओंकार साधना का मतलब 5 मिनट हो गया, ऐसा हम आम व्यक्ति 5 बार ही करना चाहिए। ऐसा इस 25 मिनट जो व्यक्ति मॉर्निंग में खाली पेट पे करता है उनको पूरा शरीर एक ऊर्जावान हो जाता है, हर कोशिका ताजगीपन महसूस करता है, थकावट जिंदगी में होती नहीं है, तो हमारा आभा मंडल चेहरे का वो पूरा बदल जाता है, जीवन ही कुछ ऊर्जावान हो जाता है।
1: श्रोताओ, अभी आप आध्यात्मिक दर्शन का कार्यक्रम चिंतन सुन रहे थे। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण। अब से कुछ ही देर बाद सवेरे 7:10 पर खेतिहर वास्ते कार्यक्रम में किसान भाइयों के लिए जानकारी होगी सब्जियों की फसल में सामयिक कार्य विषय पर। मानस गान आप सुनेंगे सवेरे 7:20 पर। आज आप सुनेंगे भाग 238 का पाठ। सुप्रभात कार्यक्रम होगा सवेरे 7:30 पर। आज के अंक में हम आपको हिंदी काव्य पाठ सुनवाएंगे कवि सुरेंद्र सिंह बेनीवाल से। सुगम संगीत कार्यक्रम होगा प्रातः 8:45 पर। इस कार्यक्रम में आप कुछ भक्ति रचनाएं सुनेंगे। हिंदी में प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर केंद्र से रिले किए जाएंगे प्रातः 9 बजे और मरुमंगल कार्यक्रम में कलाकार रहेंगे पूर्ण राम मेहरड़ा प्रातः 9:10 पर। फिल्म संगीत के कार्यक्रम में प्रातः 9:30 पर आप कुछ युगल हिंदी फिल्मी गीत सुनेंगे। फिल्म संगीत का ही एक अन्य कार्यक्रम होगा प्रातः 10 बजे और प्रातः 11 बजे भी आप फिल्म संगीत सुनेंगे। फरमाइशी हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम अनुरोध गीत आप सुनेंगे दिन में 12:05 पर। सुगम संगीत कार्यक्रम में दिन में 12:30 पर आप गजलें सुन सकते हैं। खेत खलिहान कार्यक्रम में दिन में 12:50 पर किसान भाइयों के लिए जानकारी होगी कृषि यंत्रों की देखभाल विषय पर। हिंदी में प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से रिले होंगे दिन में 1 बजे। महिला जगत कार्यक्रम होगा दिन में 1:05 पर। आज के अंक में रजनी मोदी आपके साथ रहेंगी। चर्चा के विषय होंगे बुजुर्गों की याददाश्त बढ़ाने वाले मेमोरी गेम्स और गर्भावस्था में डिहाइड्रेशन से बचें, गर्मी के मौसम में जल की बचत और खिचड़ी के विभिन्न प्रकार। फिल्म संगीत आप सुनेंगे दिन में 2:30 पर। उर्दू सर्विस के कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे दोपहर बाद 3 बजे से और नौजवान साथियों के लिए कार्यक्रम होगा युववाणी संध्या 5 बजे। आज के अंक में आरएएस भर्ती 2024 में चयनित अभ्यर्थी महेंद्र गोदारा व साहिल जुरासिया से नवीन सिसोदिया की बातचीत सुनवाई जाएगी। इसके अतिरिक्त ऑनलाइन लर्निंग का बढ़ता प्रभाव, नई शिक्षा नीति और युवा, राजस्थान के लोक नृत्य और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आदि विषयों पर चर्चा होगी। सराइकी प्रोग्राम का वक्त रहेगा 6:05। ग्रामीण परिवारों के लिए कार्यक्रम होगा चौपाल संध्या 7 बजे राजन मुदगल के साथ। चर्चा के विषय रहेंगे मित्र कीटों का बचाव कैसे करें, बीज खरीदारी करते समय सावधानियां, हरी खाद के लिए ढेंचा की खेती और उपलब्ध होने पर बाजार भाव और मौसम की जानकारी। भक्ति संगीत रात्रि 8 बजे और एक ही फिल्म से कार्यक्रम होगा रात्रि 8 बजे और भक्ति संगीत संध्या

0: पाठवाहिकातः रविवासरे मध्याह्ने सार्धैकवादनतः भविष्यति। भवन्तः सर्वे श्रोतुं प्रभवन्ति। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। भारतीय जनता पार्टी यहां पहली बार सरकार बनाने जा रही है। शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई। विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद श्री अधिकारी ने राज्यपाल आर एन रवि से भेंट की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। वहीं तमिलनाडु में तमिल वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने टीवी को समर्थन देने की खबरों का खंडन किया है। ये भी खबरें आ रही हैं कि आज होने वाला शपथ ग्रहण समारोह स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले कल टीवी के प्रमुख ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात कर सहयोगी दलों के समर्थन पत्र सौंपकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। उधर केरला में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा है कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि ये प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इसमें दोनों पक्षों के 1,000 कैदियों का आदान प्रदान भी शामिल होगा। उन्होंने रूस यूक्रेन संघर्ष को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा युद्ध बताते हुए कहा कि स्थायी रूप से शांति स्थापित करने के लिए बातचीत जारी है। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है, जो हर साल 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका द्वारा समर्थित मसौदा प्रस्ताव को त्रुटिपूर्ण और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए खंडन कर दिया है। ये प्रस्ताव होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षा में संबंधित था। ईरान ने इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और अमरीकी हितों को साधने वाला कदम करार दिया है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों से प्रस्तावित प्रस्ताव का समर्थन न करने की अपील की है। उधर अमरीका ने ईरान पर वाणिज्यिक जलमार्ग को रोकने और समुद्री यातायात को स्थिर करने का आरोप लगाया है। अमेरिका ने 10 व्यक्तियों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिनमें चीन और हांगकांग की कंपनियां भी शामिल हैं। अमेरिका का आरोप है कि ये लोग और कंपनियां ईरान को हथियार बनाने और ड्रोन तथा बैलिस्टिक मिसाइल के लिए आवश्यक सामान जुटाने में मदद कर रही थीं। अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने कहा है कि ईरान की सैन्य क्षमता को रोकने के लिए आर्थिक कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही ईरान के साथ गैर कानूनी व्यापार करने वाली विदेशी कंपनियों और बैंकों पर भी कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये कदम विशेषकर होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान की समुद्री गतिविधियों को सीमित करने के लिए उठाया गया है। अमेरिका के विदेश विभाग ने बताया है कि इसराइल और लेबनान 14 और 15 मई को अमेरिका की मध्यस्थता में फिर से बातचीत शुरू करेंगे। विदेश विभाग के अनुसार दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल एक व्यापक शांति और सुरक्षा समझौते पर पहुंचने के लिए बैठक करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने 8 विकेट खोकर 142 रन बनाए। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 15वें ओवर में 147 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। लगातार चौथी जीत के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स अंक तालिका में 7वें स्थान पर पहुंच गई है। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। मैच जयपुर में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। भारत की

0: addresses the core concerns of both the countries. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। सवेरे के 7:10 हुए हैं। खेतिहर वास्ते कार्यक्रम में आज प्रगतिशील किसान भाइयों के लिए उपयोगी जानकारी का विषय है सब्जियों की फसल में सामयिक कार्य। लीजिए सुनिए।
2: किसान भाइयों राम राम। किसान भाइयों आपने ही क्षेत्र में अपना किसान भाई सब्जियां की खेती भी काफी क्षेत्र में कर रखी है। बिया तो इन टाइम सब्जियां की बिजाई लगभग अपना किसान भाइयों कर ही दी है और बेल वाली सब्जियां के सागे सागे दूसरी भी कई तरह की किस्म वाली सब्जियां की बिजांत कर रखी है और अच्छी उन्नत किस्म और बीज लेके जकी सब्जी की बिजाई भाई लोग करी ही बांगी बडवार के सागे आपा ने बांगी पूरी ख्यांत और देखभाल करनी जरूरी है क्योंकि सब्जी की फसल में भी कई तरह का रोग कीट व्याधियां लगे और जे टेम सारू आपा व्याधियां की रोकथाम नहीं करा तो फसल खराब तो होवेगी ही अपनो मुनाफो भी घट जाएगा। इन वास्ते अपनी सब्जी की फसल ने टेम रहता सार संभाल करनी जरूरी है। तो किसान भाइयों आज आपा बात करांगा ई मौके जायद में मुख्य रूप से बेल वाली सब्जियां जिया लौकी तोरी करेला कद्दू टिंडा चप्पण कद्दू पेठो आ सब्जियां की बिजांत करेड़ी है। इनके सागे सागे टमाटर बैंगन मिर्च भिंडी की बिजांत किसान भाइयों कर रखी है। जे किसान भाइयों आ सब्जियां वाली फसल पर कीट गो या बीमारियां को प्रकोप हो जाए तो जानी जान मिनक बतावे है कि 30-35 सैकड़ा तक उत्पादन कम हो जाए यानी आपा ने इतो नुकसान झेलनो पड़ सके। सब्जी की फसल पर कई तरह का कीट लागे जिया सफेद मक्खी हरियो तेलो चेपो दीमक सफेद लट परणजीवी जका ने आपा थ्रिप्स भी कह देवा। इनके अलावा फल मक्खी लाल भृंग बरूथी हरी लट जड़ गलन रोग जैसा सूत्रकृमी जिसे नुकसानदायक कीट बीमारियां लागे और ये सब्जी की फसल ने चौपट कर दे। जे किसान भाइयों लाल भृंग कीट अपनी फसल में लाग जाए तो इनकी पहचान के तौर पर थाने बता देवा कि वो नाम के हिसाब हुई लाल रंगो हुए और वो कीट नई और अंकुरित पत्तियां ने खागे चालनी आड़ी तरिया जालीदार बना दे। इनके ज्यादा प्रकोप छू पूरी की पूरी फसल नष्ट होने की नौबत आ जाए। किसान भाइयों ई कीट के नियंत्रण खातर आपा कार्बोरिल 5% चूरण 20 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से यानी 5 किलो प्रति बीघा की दर से बुरकाव करनो है। इनके अलावा किसान भाइयों आपा कार्बोरिल 50% घुलनशील चूरण को 2 किलो प्रति हेक्टेयर से छिड़काव कर देवा तो लाल भ्रंग रोग कीट से निजात मिल सके। आ दवाइया मुंह कोई भी आपा एक दवाई ले गए आधा ग्राम दवाई सागे 1 लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव कर सका और 15 दिन बाद जरूरत के हिसाब से आप दवाई को दोहराव भी कर सका। अब बात करा आप फल मक्खी के बारे में। वो कीट करेला तोरी टिंडा ककड़ी आमे लगे और फला ने काणा कर देवे। इनके नियंत्रण खातर आप सबसे पहली काणा फला ने तोड़ के नष्ट कर देना चाहिए और मेलाथियान 50 cc या फिर डाइमिथोर 30 cc की 10 मिलीलीटर मात्रा और 250 ग्राम गुड़ और 1 लीटर पानी सागे घोल तैयार करके ई घोल ने 50-100 मिलीलीटर के हिसाब से प्याला या डिब्बा में भर के खेत में जिया जिया रख देवा तो ई फल मक्खी की रोकथाम कर सका। किसान भाइयों ई घोल से हरियो तेलो और मोयला की रोकथाम हो सके। किसान भाइयों अब आप बात करा बरूथी की तो बरूथी की रोकथाम खातर इथियान 50 cc 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी सागे या डायरोफाल दवाई को 0.5 मिलीलीटर 1 लीटर पानी सागे घोल बना के छिड़काव कर देवा तो बरूथी की बढ़िया तरीका से रोकथाम हो सके। किसान भाइयों सफेद मक्खी परणजीवी यानी थ्रिप्स हरियो तेलो और मोयला को प्रकोप भी अपनी सब्जी की फसल में हो सके। एक कीट पत्तियां और पौधा का कोमल भाग छू रस चूस गए काफी नुकसान पुगावे। जे भाई लोगों आंगो प्रकोप अपनी सब्जी की फसल पर हो गयो तो 20-25% तक नुकसान फसल ने हो सके। आंगो नियंत्रण आप डाइमिथोट 30 cc या मेलाथियान 50 cc या फिर मिथाइल डिमेटोन 25 cc 1 मिलीलीटर दवाई सागे प्रति लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव कर देवा। जे ए दवाई ना मिले तो इमिडाक्लोप्रिड नामक दवाई आपा 0.3 मिलीलीटर दवाई लेगे प्रति लीटर पानी सागे घोल बना के अच्छी तरिया से छिड़काव कर देवा और ज्यादा प्रकोप होवे तो 15-20 दिन बाद आपा इन दवाई को दोहराव कर सका। लेकिन किसान भाइयों रासायनिक छिड़काव करने से पहले आपा ने सब्जियां जरूरत के हिसाब से तोड़ लेनी चाहिए और छिड़काव करने के बाद 8-10 दिन तक आपा सब्जियां ने तोड़ काम में नहीं लेनी चाहिए क्योंकि कई दिन तक रसायन को असर सब्जियां पर रेवे और तोड़ने के बाद साफ पानी से अच्छी तरह धोगे ही काम में लेनी है ताकि रसायन

0: इनको असर अपने स्वास्थ्य पर ना पड़े। इनके अलावा जका भाई लोग भिंडी टिंडा टमाटर की बीजा अब भी करी है, वे खाद पानी को भी पूरा ध्यान देनो है, टेम टेम पर सार संभाल सके, निराई गुड़ाई भी करता रहना है, ताकि पौधा की बढ़वार बढ़िया तरीका से हो जाए और जठे तक हो सके अपर रासायनिक छिड़काव न करके जैविक कीटनाशक गो ही प्रयोग करा तो ज्यादा बढ़िया रहे। ज्यादा से ज्यादा कंपोस्ट खाद या गोबर की खाद नीमनाश यांगो प्रयोग करा तो सब्जियां एकदम शुद्ध और जहर रहित हो सी और अपना स्वास्थ्य भी बढ़िया बनियो रे वेगो। तो आ बातों को ध्यान जरूर रखनो है, टेम टेम पर कृषि वैज्ञानिका से राय मशवरा लेता रहनो है। पण अब मैं चालू, राम राम सा, राम राम।
1: श्रोताओ, खेतिहर वास्ते कार्यक्रम में अभी आपने सब्जियों की फसल में सामयिक कार्य विषय पर उपयोगी जानकारी सुनी और लीजिए अब सुनिए मुंशी राम के स्वर में एक लोक भजन।

भरत को श्रीराम की चरण पादुका प्राप्त हो चुकी है। सबके चित्रकूट से विदा होने की वेला आ पहुंची है। स्वामी के चरणों की वंदना करके भरत और शत्रुघ्न ने लक्ष्मण को गले लगाया, सीता जी के चरणों की धूलि ली। लक्ष्मण सहित श्रीराम ने राजा जनक के सम्मुख सिर नवाकर उनके वहां आने के लिए कृतज्ञता तथा वन प्रवास के कष्टों के लिए क्षमा याचना की। फिर दोनों भाइयों ने सासु रानी सुनैना के पास जाकर उनका आशीष प्राप्त किया। मुनि विश्वामित्र सहित सभी पूजनीय ऋषि मुनियों, कुटुंबियों, अयोध्या वासियों, मंत्रियों आदि को यथा योग्य विनय प्रणाम करके विदा करने के बाद श्रीराम माता कैकेयी के निकट आए। निश्चल हृदय से मिल भेंट कर माता कैकेयी का संकोच मिटाया और सुंदर सजी पालकी में बिठाकर उन्हें विदा दी। उधर सीता जी ने मायके से आए कुटुंबियों, माता पिता और सासुओं का आशीर्वाद प्राप्त किया। सभी माताओं को सुंदर सजी पालकियों में बिठाकर विदा किया गया। जब सब लोग विदा होकर चले तो लगा बैल, घोड़े, हाथी आदि पशु तथा सभी कुटुंबी मन मारे थके हारे चले जा रहे हैं। पर्णकुटी लौटकर श्री राम और लक्ष्मण का मन अवसाद से भर गया। जड़ चेतन, चर अचर सभी उदास हो गए।

श्रोताओ, अभी आपने मानस गान सुना। आज आप सुन रहे थे भाग 238 का पाठ। यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। सवेरे के 7:30 हो चुके हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सुप्रभात। सुप्रभात सुनने वाले सभी श्रोताओं को आज संजीव अपनी पहली तान छेड़ता है तो लगता है जैसे पूरी कायनात इबादत में झुक गई हो। श्रोताओ, इंसान ने शहर बना लिए, ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी कर ली, लेकिन सुकून आज भी उसे पेड़ों की छांव में ही मिलता है, क्योंकि प्रकृति केवल दृश्य नहीं है, वो एक एहसास है, एक रिश्ता है जो हमारी रूह को भीतर तक सींच देता है। दरख्तों से जरा सीखो वफा की ये रवायत, धूप खुद सहते हैं और औरों को साया देते हैं। श्रोताओ, जब हम प्रकृति से प्रेम करते हैं तो केवल फूल पौधों से नहीं, हम जीवन से प्रेम करना सीखते हैं। नदी हमें बहना सिखाती है, पहाड़ हमें अड़िग रहना सिखाते हैं, और बारिश हमें मिट्टी की खुशबू में सादगी का आनंद देती है, और हवा हमें बताती है कि दिखाई न देकर भी बहुत कुछ महसूस कराया जा सकता है। श्रोताओ, आज इंसान की सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि वो कुदरत से दूर होता जा रहा है। मोबाइल की स्क्रीन में कैद होकर उसने आसमान के असली रंग देखना कम कर दिया है। वो भूल गया है कि सूरज केवल रोशनी नहीं देता है, वो उम्मीद भी देता है। और इसी एहसास के साथ सुनिए एक बहुत ही खूबसूरत नगमा। इसे गाया है मुकेश ने और फिल्म है बूंद जो बन गई मोती। यह गीत कुदरत की सुंदरता को मानो शब्दों में चित्रित कर देता है। लीजिए सुनिए।

श्रोताओं, क्या खूबसूरत कल्पना है इस गीत में। मानो धरती पर बिखरे हर रंग को किसी कलाकार ने बड़े प्यार से सजाया हो। श्रोताओं, प्रकृति से प्रेम केवल कविताओं तक सीमित नहीं होना चाहिए। अगर आप सचमुच कुदरत से प्यार करते हैं तो एक पौधा आप अवश्य लगाएं। गर्मी के मौसम में पक्षियों के लिए पानी रखिए और बारिश की बूंदों को महसूस कीजिए। और कभी कभी बिना किसी वजह के खुली हवा में टहल आइए। यकीन मानिए, कुदरत के पास हर टूटे हुए मन का इलाज है। श्रोताओ, प्रकृति हमें धैर्य भी सिखाती है। बीज जो है वो तुरंत पेड़ नहीं बनता है, नदी तुरंत समंदर नहीं बनती है। हर चीज अपने समय पर खिलती है। और आज की भागती हुई दुनिया में कुदरत हमें यही संदेश देती है कि ठहरो, सांस लो और जीवन को महसूस करो। और लीजिए, अब सुनिए फिल्म प्यार का मौसम का ये नगमा।

शो तो अभी आपने फिल्म प्यार का मौसम का ये नगमा सुना, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। गीत मजरू का था, संगीत आर डी बर्मन का।

0: निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: श्रोताओं, साहित्य की अनेक विधाएं हैं, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, परंतु कविता इन सब में सबसे अधिक हृदय के निकट मानी गई है, क्योंकि कविता सीधे बुद्धि से

0: आत्मा से संवाद करती है और एक सुंदर कविता कभी हमें प्रकृति से जोड़ती है और कभी प्रेम से, कभी राष्ट्रभक्ति से, तो कभी जीवन के गहरे दर्शन से परिचित कराती है। महान कवियों ने अपनी कविताओं के माध्यम से समाज को नई चेतना दी है। रामधारी सिंह दिनकर ने ओज और राष्ट्रवाद जगाया, महादेवी वर्मा ने संवेदनाओं को स्वर दिया और हरिवंश राय बच्चन ने जीवन के संघर्षों को मधुरता से अभिव्यक्त किया। कविता हमें यह सिखाती है कि जीवन केवल जीने का नाम नहीं है, बल्कि महसूस करने का नाम है। और जिस मन में कविता जीवित रहती है, वहां संवेदनाएं कभी समाप्त नहीं होती है। और श्रोताओ, आज हम आपको हिंदी काव्य पाठ सुनवा रहे हैं। हमारे कवि हैं सुरेंद्र सिंह बेनीवाल। लीजिए सुनिए।
1: नमस्कार, मेरी पहली कविता है, इसका शीर्षक है आसान नहीं है औरत होना। कि एक औरत रोज सुबह जल्दी उठकर जब झाड़ू लगाती है, उसकी आहट हर सुबह मुर्गे को जगाती है। सुबह से शाम तक, तारों की छांव से तारों की छांव तक चुपचाप जुटी रहती है काम में एक औरत हर गांव में। पशुओं को चारा डालने, दूहने, पानी भरने और घर का हर काम करने के बाद भाता लेकर जाती है। पूरा दिन खेत कमाती है, शाम को लौटने पर फिर वही पारी, पशुओं की नीराचारी, गोबर बुहारी, फिर वही काम की मारामारी। दूहने से लेकर पूरा पशुपालन, बच्चों का लालन पालन, चूल्हा चौका, झाड़ू पोछा, बर्तन भांडे और कपड़े धोना, फिर वही दिनचर्या, सबसे अंत में खाना, सबसे अंत में सोना। आसान नहीं है एक औरत होना। न लोभ लालच न पगार है, न लोभ लालच न पगार है, यह एक औरत का घर के प्रति प्यार है, बड़ी भूमिका निभाती है। औरत जो मकान को घर बनाती है, वो औरत का घर के सदस्यों को एक माला में पिरोना आसान नहीं है एक औरत होना। वो घूंघट, वो पर्दा प्रथा, वो रस्म रवायत दस्तूर, वो बंदिशों में मजबूर, वो परंपराओं की पाबंदियां, वो पुरातनवादी पहरा। कि वो घूंघट, वो पर्दा प्रथा, वो रस्म रवायत दस्तूर, वो बंदिशों में मजबूर, वो परंपराओं की पाबंदियां, वो पुरातनवादी पहरा, वो रूढ़िवादिता का रोना, रीति रिवाज और परिपाटी के नाम पर अंधेरा ढोना, आसान नहीं है एक औरत होना। कि बंदिशों की बेड़ियों से आजादी का सांत संग्राम है औरत, कि बंदिशों की बेड़ियों से आजादी का सांत संग्राम है औरत, धैर्य सहनशीलता दया करुणा संघर्ष शांति तमाम है औरत, त्याग तपस्या बलिदान और समर्पण का दूसरा नाम है औरत। माँ बाप भाई बहन घर परिवार गली मोहल्ले सखी सहेलियों और पीहर से वो भावनात्मक विदाई, बहुत कुछ बुलाना बहुत कुछ खोना आसान नहीं है एक औरत होना। कुछ जख्म जो समय के साथ भरे हैं, कुछ जख्म जो समय के साथ भरे हैं, अंदर से आज भी हरे हैं, और जिन जख्मों पर सामाजिक पहरे हैं वो जख्म ज़्यादा गहरे हैं। संविधान में दर्जा है बराबरी का, पर आंकड़ों की दुनिया में हर बात नहीं होती, और जमीन से जुड़े बगैर सच से मुलाकात नहीं होती। सब्र के इम्तहान के बहुत पड़ाव पार किए, कि सब्र के इम्तहान के बहुत पड़ाव पार किए हैं, किस किस को अनसुना करें, वो बातों के बहाने तंज और ताने, वो तरक इन बातें वो झूठे फंसाने, या फिर वो कटाक्ष करना और कांटे चुभना, वो फब्तियां कसना और थूक बिलोना, आसान नहीं है औरत होना, आसान नहीं है एक औरत होना। मेरी दूसरी कविता है माँ। उम्र के जिस पड़ाव पर मैं खड़ा था, उम्र के जिस पड़ाव पर मैं खड़ा था, लोगों की नजरों में बड़ा था, उम्र कम नहीं थी मेरी, यह बात मैं बखूबी जानता था। कि उम्र कम नहीं थी मेरी, यह बात मैं बखूबी जानता था, पर जब तक माँ थी खुद को बच्चा ही मानता था। अब सुनने वाले हैं सब, अब सुनने वाले हैं सब, घर में बात काटने वाला नहीं है, इसे संवाद कैसे कहूँ, मुझे कोई तू कहकर डांटने वाला नहीं है। हर किसी बड़े को यों तू कैसे कह दूँ, हर किसी बड़े को यों तू कैसे कह दूँ, यह बेहद खास सम्मान है, इसकी हकदार या तो माँ है या फिर भगवान है, या फिर भगवान है। मेरी अगली कविता का शीर्षक है माँ भाग दो।

0: मैं बचपन में जब भी ठोकर खाकर गिरता तो माँ कहती कि चींटी मर गई। मैं बचपन में जब भी ठोकर खाता तो माँ कहती कि चींटी मर गई। पता नहीं हर बार चींटी पर ही क्यों गिरता, मचलता था किसी चीज के लिए बार बार, तो माँ कहती कि बिल्ली ले गई, तो कभी कहती कि चिड़िया ले गई, और रोने पर माँ कहती कि चुप हो जा नहीं तो हऊ आ जाएगा। ये सब सुनकर मैं रोना और मचलना भूल जाता। हालांकि मैंने न कभी चींटी मरी देखी, न बिल्ली या चिड़िया को कुछ ले जाते देखा और न ही हऊ देखा, फिर भी एतबार किया, एक बार नहीं हर बार किया, क्योंकि माँ ने कहा था। माँ का लगाया जो काजल का टीका था, जिसके आगे हर ताबीज फीका था, चोट पर माँ ने जो फूंक मारी थी वो हर मरहम पर बारी थी, कि चोट पर माँ ने जो फूंक मारी थी वो हर मरहम पर बारी थी, और पता नहीं माँ की लोरी में कौन सी ले और सुरताल थी। माँ की लोरी कमाल थी, पढ़ी लिखी नहीं थी माँ, पढ़ी लिखी नहीं थी माँ, पर समझ व्यापक थी, माँ खामोशियों की पाठक थी, मेरी नज़र पहचान लेती थी, मेरी इच्छाएं जरूरतें सब जान लेती थी, कि मेरी नज़र पहचान लेती थी, मेरी इच्छाएं जरूरतें सब जान लेती थी। स्कूल से भले ही अनजान थी पर माँ पूरा मनोविज्ञान थी, स्कूल से भले ही अनजान थी पर माँ पूरा मनोविज्ञान थी। माँ महान थी, मेरा पूरा जहान थी, सब कुछ थी माँ, माँ मेरे लिए भगवान थी, माँ मेरे लिए भगवान थी। मेरी अगली कविता का शीर्षक है साक्षर, कि पत्थर दिल है मार्मिक नहीं है, कि पत्थर दिल है मार्मिक नहीं है, दकियानुषी है तार्किक नहीं है, धैर्य का दामन छोड़ चुके हैं जिनके संवेग दम तोड़ चुके हैं, भ्रमित होने के आदि हैं घोर निराशावादी हैं, कि भ्रमित होने के आदि हैं घोर निराशावादी है, ईर्ष्या क्रोध गुरूर सहनशीलता से दूर है, कान के कच्चे हैं पूर्वाग्रह के शिकार हैं, मौका प्रस्त है गैर जिम्मेदार हैं, न स्वाभिमान न जमीर है, बेताब हैं अधीर हैं, बदले की भावना है प्रतिशोध की कामना है, माना कि वो बड़े हस्ताक्षर हैं पर शिक्षित नहीं साक्षर है, पर शिक्षित नहीं साक्षर है। मेरी अगली कविता का शीर्षक है शिक्षित, कि अक्षरों से अनभिज्ञ है पर खामोशियां पढ़ना जानता है, कि अक्षरों से अनभिज्ञ है पर खामोशियां पढ़ना जानता है, लगाता है तीर निशाने पर यूं खाक नहीं छानता है, आंख कहां किस हद तक खोलनी है परिस्थितियां पहचानता है, रखता है नजर पैनी हर पहलू पर अनदेखी करना बखूबी जानता है, कि आंख कहां किस हद तक खोलनी है परिस्थितियां पहचानता है, रखता है नजर पैनी हर पहलू पर अनदेखी करना बखूबी जानता है, भरोसे नहीं छोड़ता किसी के कुछ भी, कि भरोसे नहीं छोड़ता किसी के कुछ भी, मोर्चा खुद संभालता है, दृढ़ निश्चय है पार लगाकर ही लेता है दम, जो मन में ठानता है पढ़ने नहीं गया कभी, पढ़ने नहीं गया कभी, स्कूल का रास्ता भी नहीं जानता है, भले ही बारीकी से पढ़ा है जिंदगी को पर जमाना निरक्षरी मानता है, कि भले ही बारीकी से पढ़ा है जिंदगी को पर जमाना निरक्षरी मानता है, जिंदगी के अनुभवों से प्रशिक्षित है साक्षर नहीं है पर शिक्षित है, साक्षर नहीं है पर शिक्षित है। धन्यवाद।
1: श्रोताओ, अभी आपने हिंदी काव्य पाठ सुना, कवि थे सुरेंद्र सिंह बेनीवाल। श्रोताओ, अब हम बात करें उन मित्रों की जो कभी धोखा नहीं देते हैं, जो हमारे अकेलेपन में हमारे साथ बैठते हैं और जो बिना शोर किए हमें महान बना देते हैं, और वो मित्र हैं पुस्तकें किताबें। श्रोताओ, कहा गया है कि यदि आपके पास अच्छी किताबें हैं पुस्तकें हैं तो आपको कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा। मनुष्य के जीवन में मित्रों का बहुत महत्व होता है। कुछ मित्र हमारे साथ थोड़ी दूर तक चलते हैं और कुछ समय के साथ बदल जाते हैं, लेकिन पुस्तकें वह मित्र हैं जो हर परिस्थिति में हमारे साथ खड़ी रहती हैं। जब संसार हमें समझ नहीं पाता है तब एक अच्छी किताब हमारे मन की भाषा समझ लेती है। जब हम निराश होते हैं तो कोई प्रेरणादायक पुस्तक हमारे भीतर आशा का दीप जला देती है, और जब अहंकार

0: कार बढ़ता है तो कोई महान लेखक विनम्रता का पाठ पढ़ा देता है। श्रोताओं, किताबें केवल कागज और शब्दों का संग्रह नहीं होती हैं, वे अनुभवों का खजाना होती हैं। एक पुस्तक हमें उन स्थानों तक भी पहुंचा देती है जहां हम कभी गए ही नहीं, उन लोगों से मिलवा देती है जिनसे हम कभी मिले नहीं, और उन भावनाओं को जगा देती है जिन्हें हमने कभी महसूस ही नहीं किया। तो सोचिए, एक छोटी सी किताब में कितनी बड़ी दुनिया छुपी होती है। कभी वह हमें इतिहास के पन्नों में ले जाती है, कभी विज्ञान के रहस्यों में, और कभी अध्यात्म की गहराइयों में, तो कभी प्रेम और संवेदनाओं की मधुर यात्रा में। किसी ने बहुत ही सुंदर कहा है कि जिस घर में पुस्तकें नहीं होती, वह घर आत्मा के बिना शरीर के समान होता है। तो श्रोताओं, पुस्तकों को अपने जीवन में स्थान दीजिए। पुस्तकें अनमोल खजाना हैं, सच्चे मित्र हैं। और चलते चलते एक गीत आपको सुनवाते हैं।
1: रेशम की डोर

0: श्रोता, उस साजन फिल्म के लिए आपने लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी को सुना। गीत आनंद बख्शी का था, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। और इसी के साथ सुप्रभात के इस अंक से संजीव कालिया को अनुमति दें। नमस्कार। अभी आप सुप्रभात कार्यक्रम सुन रहे थे। अब समाचार होंगे।
1: समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। शुभेंदु अधिकारी आज सुबह पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बरकरार। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि भारत के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त। अगले दो दिन में केरलम, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश का पूर्वानुमान। और फुटबॉल में भारत ने एएफसी अंडर 17 महिला एशियाई कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार प्रवेश कर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से।

0: अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा।
1: राज्य के राजनीतिक इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण करेगी। शपथ ग्रहण समारोह सुबह 10 बजे शुरू होने वाला है और इसमें लाखों पार्टी समर्थकों, राजनीतिक नेताओं और देश भर से आए गण्यमान्य व्यक्तियों के शामिल होने का उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों का मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। राज्यपाल आरएन रवि मुख्यमंत्री और नए मंत्रिमंडल के सदस्यों को पद और गोपनीयता का शपथ दिलाएंगे। नवनिर्वाचित संसदीय दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के अध्यक्षता में आयोग राज्य में संस्थानगत भ्रष्टाचार की जांच करेगा। संदीप दासगुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार देश की सीमाओं को सुरक्षित करेगी और राष्ट्रीय सुरक्षा की सबसे बड़ी कमी को दूर करेगी। कोलकाता में कल नव निर्वाचित भाजपा विधायकों को संबोधित करते हुए श्री अमित शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जीत संगठन के विस्तार या विचारधारा की पुष्टि के लिए नहीं है, बल्कि देश सुरक्षा को मजबूत करने के लिए है।
2: घुसपैठिया मुक्त बंगाल, सुरक्षित महिला और सुरक्षित जनता, ये हमारा वादा है। हमने बंगाल के आर्ष दृष्टाओं ने जो सोनार बांग्ला का संकल्प और स्वप्न देखा है, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सोनार बांग्ला को जमीन पर उतारने के लिए अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस बंगाल की जनता को दें।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि लंबे समय से ठप पड़ी विकास योजनाओं को भाजपा सरकार फिर से शुरू करके पश्चिम बंगाल की जनता की सभी आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करेगी।
2: आधुनिक खेती बंगाल तक पहुंची ही नहीं है, इंडस्ट्रीज बंगाल से भाग गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का विजन ही नहीं है और महिला सुरक्षा और नागरिक सुरक्षा पाताल तक नीचे पहुंच गई। ये सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र के अंदर लिए हैं और मुझे विश्वास है कि भाजपा सरकार मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार बनकर दिन दूनी रात चौगुनी बंगाल को प्रगति की दिशा में ले जाए।
0: तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। आईयूएमएल ने टीवी के को सरकार बनाने में समर्थन देने वाली खबरों का खंडन किया है। खबरों के अनुसार आज शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा। इससे पहले टीवी के ने दावा किया था कि विजय सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रोफेसर खादर मोहिदीन के नेतृत्व वाली इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने कहा है कि उनकी पार्टी ने तमिलगा वेत्री कड़गम को समर्थन पत्र नहीं दिया है। एएमएम के पार्टी के नेता टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल से संपर्क किया और मुन्ना रुकई से निर्वाचित एकमात्र विधायक एस कामराज का समर्थन पत्र प्रस्तुत किया। इसमें एआईएडीएमके के महासचिव एडप्पडी पलनीसामी को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की गई थी। उधर केरला में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त किया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पदभार ग्रहण करने की तिथि से वे सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमण्यम वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले वे सेना के उप प्रमुख और केंद्रीय कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्य कर चुके हैं। सरकार ने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें भारतीय नौसेना में लगभग 4 दशकों की विशिष्ट सेवा का अनुभव है। वे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे, जो 31 मई को सेवानिवृत्त हो रही हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में एलवीएमएच मोइट हेनेसी लुई विटो एसीई के अंतर्राष्ट्रीय संबंध निदेशक विसेंट स्टॉक से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट

0: में श्री गोयल ने बताया कि चर्चा का मुख्य विषय निर्यात बढ़ाने के लिए भारत में विनिर्माण को मजबूत करना, स्थानीय प्रतिभाओं में निवेश करना, भविष्य के सहयोगों के माध्यम से भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना और संतुलित तथा पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार साझेदारी को आगे बढ़ाना था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 16वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के परिणामों की सराहना करते हुए इसे रणनीतिक साझेदारी के लिए एक निर्णायक मोड़ बताया है। वित्त मंत्री कल नई दिल्ली में यूरोप दिवस समारोह को संबोधित कर रही थी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन के परिणाम दोनों देशों के संबंधों में परिवर्तनकारी चरण का संकेत देते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि यह प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इसमें दोनों पक्षों के 1,000 कैदियों का आदान प्रदान भी शामिल होगा। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है, जो हर साल 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका द्वारा समर्थित मसौदा प्रस्ताव को त्रुटिपूर्ण और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए खंडन कर दिया है। यह प्रस्ताव होर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षा से संबंधित था। एक रिपोर्ट।
3: ईरान ने इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और अमरीकी हितों को साधने वाला कदम करार दिया है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्य देशों से प्रस्तावित प्रस्ताव का समर्थन न करने की अपील की है। अमरीका, बहरीन, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और कतर द्वारा समर्थित इस मसौदा प्रस्ताव का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य से आवागमन सुगम बनाना है। अमरीका ने ईरान पर वाणिज्यिक जलमार्ग को रोकने और समुद्री यातायात को अस्थिर करने का आरोप लगाया है। इस बीच ईरान की सेना ने कहा है अमरीकी रक्षा बलों ने यूएई के फुजरा बंदरगाह के पास एक ईरानी तेल टैंकर और एक अन्य जहाज को निशाना बनाया। पश्चिमी तेहरान के ऊपर ईरानी वायु रक्षा प्रणालियां भी सक्रिय थीं। वहीं अमरीकी सेना ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य में उसकी नौसेना को ईरानी बलों द्वारा मिसाइल, ड्रोन और तेज नावों से हमलों का सामना करना पड़ रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: अमेरिका ने 10 व्यक्तियों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिनमें चीन और हांगकांग की कंपनियां भी शामिल हैं। अमेरिका का आरोप है कि ये लोग और कंपनियां ईरान को हथियार बनाने और ड्रोन तथा बैलिस्टिक मिसाइल के लिए आवश्यक सामान जुटाने में मदद कर रही थीं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है, जो मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिवसीय इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र में बदल दिया है, जो देश भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: सोमनाथ अमृत पर्व के पावन अवसर पर कल से पाठात्मक अतिरुद्र का विधिवत प्रारंभ किया गया, जिसमें अगले 5 दिनों तक निरंतर रुद्र पाठ किया जाएगा। मंदिर में आज से 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का भी आयोजन होगा, जिसमें लगभग 1,25,000 आहुतियां अर्पित की जाएगी। इस महायज्ञ का मूल उद्देश्य वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति की स्थापना और मानव कल्याण सुनिश्चित करना है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इसे ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म के अंतर्गत अगली कड़ी में हम भारत में रेडियो प्रसारण के क्षेत्र में अग्रणी रहे डॉक्टर राममूर्ति श्रीधर से बातचीत करेंगे। उन्हें प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
5: In 1991 to 1993,

0: exactly 35 years back, which I conceived and designed and did it, called Manavka Vikas, or Human Evolution, which was 144 episodes broadcast from 200 radio stations. Today, following that model example, 550 radio stations are functioning in this country. Content writers, script writers, creative people, AI is going to help you.
1: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी गोल पर प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करेगा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। मौसम विभाग ने अगले दो दिन के लिए केरला, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस बीच बिहार में बिजली गिरने और तूफान से संबंधित अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मृत्यु हो गई। खेलों में भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। वहीं IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से होगा। ये मैच जयपुर में शाम 7:30 से खेला जाएगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
2: धन्यवाद फरहत। सभी समाचार पत्रों ने आज पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के भाजपा के विधायक दल का नेता चुने जाने की खबर प्रकाशित की है। दैनिक जागरण लिखता है, बंगाल में सत्ता के शुभेंदु अधिकारी, नए अध्याय की शुरुआत, भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में आज लेंगे शपथ। लोकसत्ता ने तमिलनाडु में सत्ता का संग्राम नहीं थमने पर खबर प्रकाशित की है। विजय के शपथ ग्रहण पर फिर लगा ग्रहण, राज्य में सरकार पर फिर सस्पेंस, सियासत बदली। कांग्रेस के शीर्ष कमान पर अब केरलम के अगले मुख्यमंत्री को चुनने की जिम्मेदारी, राज्य में सरकार गठन को लेकर तैयारियां तेज, पर्यवेक्षक ने खड़गे को सौंपी रिपोर्ट, दिल्ली में होगा फैसला, देशबंधु की सुर्खी है। गर्म होते हिमालय में ऊंचाई पर आवास बना रहे जानवर, हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है, जलवायु परिवर्तन की वजह से निचले इलाकों में रहने वाला हिमालयन बीजल पहली बार 3,500 मीटर की ऊंचाई पर नजर आया। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पन्ने पर AI समय शीर्षक से लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, चैटबॉट हैं नई पीढ़ी के असली दोस्त। बेशक AI चैटबॉट्स ने युवाओं की अभिव्यक्तियों का नया मंच दिया है, लेकिन इसके कुछ गंभीर खतरे सामने आने लगे हैं। जान जमा पूंजी छीन रहा गेमिंग ऐप का जुनून, ऑनलाइन गेमिंग में 2025 में लोगों ने 20,000 करोड़ रुपए गंवाए, हिंदुस्तान की खबर है। नवभारत टाइम्स सहित सभी समाचार पत्रों ने सोमनाथ मंदिर के पुनरुत्थान होने का समाचार भी प्रकाशित किया है। नमामि गंगे की डॉल्फिन एम्बुलेंस ने 4 महीने में 8 डॉल्फिन को बचाया, जनसत्ता ने अभियान शीर्षक से एक खबर प्रकाशित की है।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी आज सुबह पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बरकरार। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि भारत के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त। अगले दो दिन में केरलम, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश का पूर्वानुमान। और फुटबॉल में भारत ने AFC अंडर 17 महिला एशियाई कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार प्रवेश कर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। सुवेंदु अधिकारी टू टेक ओथ एज फर्स्ट बीजेपी चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल दिस मॉर्निंग। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड होम मिनिस्टर अमित शाह टू अटेंड द स्वेयरिंग इन सेरेमनी। Uncertainty continues over government formation in Tamil Nadu. Lieutenant General N.S. Raja Subramani appointed new Chief of Defence Staff. IMD forecasts heavy rainfall over Keralam, South Interior Karnataka, Tamil Nadu and Puducherry during next 2 days. And in football, India scripts history by qualifying for AFC Under-17 Women's Asian Cup quarter-finals for the first

आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। सुवेंदु अधिकारी आज सुबह मगरबी बंगाल के पहले बीजेपी वजीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह हलफ बरदारी की तकरीब में शिरकत करेंगे। तमिलनाडु में सरकार की तश्कील के बारे में गैर यकीनी सूरत हाल जारी है। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि को नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मुकर्रर किया गया है। भारत के महकमे मौसमियात ने केरलम, जनूबी अंदरूनी कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी में अगले दो दिन तक मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है।

और फुटबॉल में भारत ने 17 साल तक की उम्र की खवातीन के एशिया कप के क्वार्टर फाइनल्स में पहली बार जगह बनाकर तारीख रकम की है। अब खबरें तफसील से। शुभेंदु अधिकारी आज

0: और फुटबॉल में भारत ने 17 साल तक की उम्र की खवातीन के एशिया कप के क्वार्टर फाइनल्स में पहली बार जगह बनाकर तारीख रकम की है। अब खबरें तफसील से। शुभेंदु अधिकारी आज मगरबी बंगाल के पहले बीजेपी वजीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। हलफ बर्दारी की तकरीब कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुनाकिद की जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: रियासत नई सरकार की हलफ बर्दारी की तारीखी घड़ी का मुशाहदा करने के लिए तैयार है। ये तकरीब कोलकाता के आइकॉनिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुनाकिद की जाएगी। हालिया इख्तिताम पजीर असेंबली इंतखाबात में फैसलाकुन वोट हासिल करने के बाद रियासत की सियासी तारीख में पहली मरतबा भारतीय जनता पार्टी की क्यादत वाली सरकार बाकायदा तौर पर ओहदा संभालेगी। हलफ बर्दारी की तकरीब में मुल्क भर से पार्टी की हिमायत करने वाले लाखों अफराद, सियासी लीडरों और मुअज्जज मेहमानों की आमद का इम्कान है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और बीजेपी की बरसर इक़्तदार रियासतों के वज़ीर आला इस तकरीब में शिरकत करेंगे। गवर्नर आरएन रवि वज़ीर आला और नई काबीना के मेंबरों को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाएंगे। पार्लियामानी पार्टी के नौमंतखब लीडर शुभेंदु अधिकारी ने ऐलान किया है कि रियासत में इदारा जाति बदरवानी की छानबीन के लिए एक रिटायर्ड जज की सरबराही में कमीशन कायम किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि आरजी खर अस्पताल और संदेश खाली जैसे वाकयात के सिलसिले में भी तहकीकात शुरू की जाएगी। अधिकारी ने इस जीत को बीजेपी कारकुनों की इज्तिमाही कोशिशों को मौसूम करते हुए पार्टी के मंशूर में शामिल सभी वादों को वक्त पर पूरा करने का अहद किया। ये तकरीर 25वें बैशाखी के मौके पर मुनक़िद की जा रही है, जो रवींद्रनाथ टैगोर का यौम पैदाइश है। इससे तकरीब की सकाफती और अलामती अहमियत बढ़ जाएगी। पूरे वस्ती कोलकाता में सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रोग्राम को खुशसूबी के साथ मुनक़िद कराने को यकीनी बनाने के लिए हज़ारों पुलिस अहलकारों को तैनात किया गया है। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
0: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि मगरबी बंगाल में बीजेपी हुकूमत भारत की सरहदों को महफूज बनाएगी और कौमी सलामती के लिए सबसे बड़ी कमजोरी को दूर करेगी। कल कोलकाता में मगरबी बंगाल के 9 मंतखबा बीजेपी अरकान असेंबली से खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि बीजेपी की जीत का मकसद अपनी तंजीम को तौसी देने या इसके नजरियात को जवाब फराहम करने का नहीं है, बल्कि इस जीत का मकसद मुल्क की कौमी सलामती की सबसे बड़ी कमजोरी को दूर करना है। उन्होंने कहा कि आसाम, त्रिपुरा और अब मगरबी बंगाल में बीजेपी की हुकूमतें सरहद को नाकाबिले तस्खीर किले में तब्दील कर देंगी।
2: घुसपैठिया मुक्त बंगाल, सुरक्षित महिला और सुरक्षित जनता, ये हमारा वादा है। हमने बंगाल के आर्ष दृष्टाओं ने जो सोनार बांग्ला का संकल्प और स्वप्न देखा है, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सोनार बांग्ला को जमीन पर उतारने के लिए अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस बंगाल की जनता को दें।
0: जनाब शाह ने जोर देकर कहा कि बीजेपी हुकूमत में दरअंदाजी और गायों की स्मगलिंग नामुमकिन हो जाएगी। तमिलनाडु में टीवीके के सरबराह सी जोसेफ विजय के तहत सरकार की तश्कील के सिलसिले में अब भी गैर यकीनी सूरत हाल है। नया मोड़ ये आया है कि आईयूएमएल ने हुकूमत की तश्कील के लिए टीवीके को अपनी हिमायत की खबरों से इनकार कर दिया है। एक और वाकये में ये खबरें भी आ रही हैं कि हलफ बर्दारी की तकरीब जो आज मुनाकिद होनी है मुनाकिद नहीं होगी। प्रोफेसर कादिर महीउद्दीन की सरबराही वाली आईयूएमएल ने कहा है कि उनकी पार्टी ने तमिजागा वेत्री करगम को हिमायतनामा नहीं दिया है। एक और हैरानकुन वाकया यह है कि एएमएमके पार्टी के लीडर टीटीवी दिनाकरन ने गवर्नर से रुजू किया है और इस कामराज की तरफ से हिमायतनामा पेश किया है, जो मन्नार दुई से मुंतखबा वाहिद एमएलए हैं। उन्होंने यह हिदायतनामा एआईएडीएमके के जनरल सेक्रेटरी एडापड्डी पलानीस्वामी को वजीर आला बनाने के हक में पेश किया है। एक रिपोर्ट।
3: तमिलनाडु में जहां 85% से ज्यादा वोट डाले गए हैं, अभी तक नई हुकूमत और वजीर आला के तकरूर का इंतजार है। नई हुकूमत की तश्कील में इसलिए ताखीर हो गई है कि वाहिद सबसे बड़ी पार्टी टीवीके भरपूर अक्सरियत 118 की तादाद तक अभी तक नहीं पहुंच सकी है। अलबत्ता वीसीके की तरफ से महज एक और हिमायतनामा मौसूल हुआ है, जिसे एक हतमी कदम माना जा सकता है, क्योंकि पार्टी के पास 2 अरकान असम्बली आ गए हैं, जिसके बाद ये तादाद 118 हो जाएगी। तब तक किसी फैसले का इंतजार रहेगा। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: हुकूमत ने लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सब्रमणी को अगला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS मुकर्रर किया है। वजारत दिफा का कहना है कि लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणी

0: संभालने की तारीख से अगले अहकाम तक फौजी उमूर के महकमे के सेक्रेटरी के तौर पर भी खिदमात अंजाम देंगे। वो जनरल अनिल चौहान की मुलाजमत की मुद्दत 30 मई को मुकम्मल होने के बाद अपना ओहदा संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणि एक इंतहाई मुअज्जज़ अफसर हैं जिनकी 4 दहाइयों से ज़्यादा की शानदार खिदमात हैं। वो सितंबर 2025 से नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट में मिलिट्री एडवाइज़र के तौर पर भी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। इससे पहले वो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ सेंट्रल कमांड के तौर पर खिदमात अंजाम दे चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने मगरबी और शिमाली महाज़ों पर अहम ऑपरेशनल फॉर्मेशंस की कमांड भी की है। हुकूमत ने वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन को बहरिया का अगला सरबराह मुकर्रर किया है। वजारत दिफा ने कहा है कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन इस वक्त मगरबी बहरिया की कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। एडमिरल तकरीबन 4 दहाइयों की शानदार खिदमात हैं। भारतीय बहरिया में मुख्तलिफ ओहदों पर रहते हुए उनका ऑपरेशनल स्ट्रेटजिक और जवानों से मुतालिक बंदोबस्त का काफ़ी तजर्बा है। वो एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी की जगह लेंगे जो 31 मई को रिटायर हो रहे हैं। सोमनाथ अमृत पर्व 2026 का कल बाकायदा तौर पर आगाज हो गया है। ये तकरीबात मंदिर की तामीर नौ के 75 साल पूरे होने के मौके पर मनाई जा रही हैं। इन तकरीबात में मुल्क भर के अकीदतमंद शिरकत कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: सोमनाथ के मंदिर में सोमनाथ अमृत पर्व पठात्मक अति रुद्र के साथ शुरू हो गया है। आज 3 रोज यज्ञ का भी आगाज होगा जिसके दौरान सामग्री के तौर पर तकरीबन 1,25,000 अशिया मुकद्दस आग की नज़र की जाएंगी और मौजूदा बैन अल-अक़वामी तनाज़ात के दौरान आलमी अमन और इंसानियत की भाई के भलाई के लिए दुआ की जाएगी। ये तकरीबात 11 मई को इख्तिताम पज़ीर हो जाएंगी जब मंदिर में अज़ीम-उश्शान तरीके से कुंभाभिषेक का इनेकाद किया जाएगा जिसमें 11 मंदिरों का पानी नजर किया जाएगा। अहमदाबाद से अपर्णा खून की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
0: अक़वाम-ए-मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में ईरान की तरफ से अमेरिका की हिमायत वाली करारदाद के एक मुसवदे को मुस्तरद किए जाने के बाद आबनाए हुरमुस पर तातुल में शिद्दत आ गई है। ईरान ने कहा है कि इस करारदाद में खामियां हैं और इसके पीछे सियासी मकसद कारफरमा है। ईरान ने कहा है कि इस तजवीज़ से गैर कानूनी इकदामात को कानूनी जवाब हासिल होगा बजाय इसके कि इससे तनाज़े को हल करने में मदद मिले। ईरान ने अक़वाम-ए-मुत्तहिदा के रुकन मुल्कों से अपील की है कि वो इस मुजवजा करारदाद की हिमायत न करें। तफसील हमारे नमानिगार से।
1: इस करारदाद को अमेरिका के साथ साथ बहरीन, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और कतर की हिमायत हासिल है और इसमें तवानाई की दुनिया की सबसे अहम गुजरगाह में जहाज़ों की आज़ादाना आमदोरफ्त को यकीनी बनाने के लिए कहा गया है। अमेरिका ने ईरान पर कमर्शियल जहाज़रानी के लिए ख़तरा पैदा करने और बहरी ट्रैफिक को कमज़ोर करने का इल्ज़ाम आयद किया है। इसी दौरान ईरान की फ़ौज ने कहा है कि अमरीकी फ़ौजों ने मुत्तहिदा अरब इमारात में फुजैरा बंदरगाह के नज़दीक ईरान के एक तेल टैंकर और एक और जहाज़ को निशाना बनाया था, जबकि इत्तला के मुताबिक अमरीका के फदाई हमलों में बंदर खमीर, सिरिक और किस्म जजीरे में शहरी इलाकों को निशाना बनाया गया। इधर ईरान का फदाई निज़ाम भी अपने दिफा के लिए सरगर्म है। समंदर में बढ़ती हुई इस महाजाराई में इंसानी जानें भी तलफ हुई हैं, लिहाजा दुबई में भारत के मिशन ने एक जहाज़ में सवार भारतीय हमले के एक अहलकार की हलाकत पर दुख का इजहार किया है और इसे एक अफसोसनाक वाक़या करार दिया है। इस सबसे अलग ईरान ने खलीज ओमान में एक टैंकर पकड़ लिया है जबकि अमरीका ने कहा है कि उसने उसी रोज़ 2 जहाज़ों को नाकारा बनाया है। कल के इन वाक़यात के बावजूद सिफारती ज़राए ने काम करना बंद नहीं किया है। 14 निकाती अमरीका ईरान मुजवजा फ्रेमवर्क अपनी जगह मौजूद है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
0: अमरीका ने 10 अफराद और कंपनियों के खिलाफ बंदिशों का ऐलान किया है जिनमें चीन और हांगकॉन्ग के अफराद और कंपनियां भी शामिल हैं। उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने हथियार और शाहिद ड्रोन और बैलिस्टिक मिज़ाइल तैयार करने में दरकार खाम मवाद हासिल करने की ईरान की कोशिशों में मदद दी है। तफसील हमारे नामे निगार से।
2: अमरीका की तरफ से ये बंदिशें सदर डोनाल्ड ट्रंप के सदर शी जिनपिंग के साथ एक मीटिंग के लिए चीन जाने के मंसूबे से कुछ दिन पहले आयद की गई हैं क्योंकि ईरान के साथ जंग खत्म करने की कोशिशों में तातुल पैदा हो गया है। एक बयान में अमरीकी महकमा खजाना ने कहा कि वो ईरान के फौजी सनअती ठिकाने के खिलाफ इकतसादी कार्रवाई करने को तैयार है ताकि ईरान को हथियार बनाने की सलाहियत को असर नौ परवान चढ़ाने से रोका जा सके। महकमे ने कहा है कि वो एयरलाइंस समेत ऐसी किसी भी गैर मुल्की कंपनी खिलाफ कार्रवाई करने को भी तैयार है जो ईरान की नाजायज तजारत की हिमायत करती हो। वो उन गैर

श्रोताओं, अभी आप सुगम संगीत कार्यक्रम में भक्ति रचनाएं सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। प्रातः के 9 बजने वाले हैं और प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से होंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। देश भर में इस साल की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत आज। प्रदेश में 479 बेंच 7.5 लाख से अधिक मामलों का निपटारा करेंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भविष्य के युद्ध केवल हथियारों से नहीं।

0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। ग्राम 2026 के तहत कल हैदराबाद में हुई इन्वेस्टर मीट में 200 करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू किए गए। ये समझौते राज्य में विभिन्न स्थानों पर फूड पार्क, सीड प्रोसेसिंग और फूड प्रोसेसिंग के विकास के लिए किए गए इस बिजनेस मीट में निवेशकों, उद्योग जगत और एग्री टैंक विशेषज्ञों के साथ संवाद किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मीट को संबोधित करते हुए कहा कि हैदराबाद का लैब टू लैंड मॉडल राजस्थान के लिए प्रेरणादायी है और राज्य सरकार इसे अधिक मजबूती के साथ लागू करना चाहती है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल कोटा में गेहूं खरीद के लिए 25% अधिक टोकन जारी करने और मंडियों में पड़े गेहूं के उठाव के लिए पर्याप्त संख्या में रैक लगाने के निर्देश दिए। श्री बिरला कल कोटा बूंदी क्षेत्र में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि FCI सहित सभी खरीद एजेंसियां गेहूं लेकर खरीद केंद्र में आए किसानों की तुलाई का काम सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि खरीद का वर्तमान लक्ष्य पूरा होने के बाद भी अतिरिक्त गेहूं खरीद के लिए बारदाना और भंडारण की उचित व्यवस्था रखी जाए। उन्होंने सभी खरीद एजेंसियों को किसानों को समय पर भुगतान करने के भी निर्देश दिए। बैठक में भारतीय खाद्य निगम, राजफेड, तिलम संघ और NCCF के प्रतिनिधि मौजूद रहे। कोटा मेडिकल कॉलेज में सिजेरियन डिलीवरी के बाद दो प्रसूताओं की मौत और अन्य महिलाओं की तबीयत बिगड़ने के मामले में राज्य सरकार ने कड़ी कार्रवाई की है। कल चिकित्सा आयुक्त BL गोयल के दौरे और प्रारंभिक जांच के बाद लापरवाही बरतने के आरोप में देर रात एक चिकित्सक सहित 3 कर्मियों को निलंबित कर दिया गया। UTB में कार्यरत महिला चिकित्सक डॉक्टर श्रद्धा उपाध्याय को सेवा से हटा दिया गया है, जबकि एक अन्य चिकित्सक सहित 2 नर्सिंग कर्मियों को निलंबित किया गया है। वहीं वार्ड प्रभारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। संभागीय आयुक्त अनिल कुमार अग्रवाल और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने अस्पताल का दौरा कर दवाओं और ऑपरेशन प्रक्रिया के रिकॉर्ड की जाँच की है। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने आश्वासन दिया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। कोटपूतली बहरोड जिले के विराटनगर में करीब 100 से अधिक लोग फूड प्वाइजनिंग का शिकार हो गए। उपखंड अधिकारी कपिल कुमार उपाध्याय ने बताया कि ढाणी गैसकान में एक शादी समारोह में भाग लेने के बाद बड़ी संख्या में लोगों को उल्टी और पेट दर्द की शिकायत होने पर उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। उन्होंने बताया कि अधिकतर मरीजों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। वहीं खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मिठाइयों और खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे हैं।
1: ढाणी गैसकान गांव से यहाँ पर एक फूड पॉइजनिंग की सूचना मिली। लगभग 45 ग्रामीण और 34 बच्चे यहाँ वोमिटिंग की और पेट दर्द की शिकायत के साथ यहाँ आए थे। इनमें से अभी 3 बच्चे अपने एडमिट है, बाकी स्वस्थ होकर लौट रहे हैं और बाकी ग्रामीण जनों का इलाज चल रहा है। ऐसे ही लगभग 14 बच्चे और 16 ग्रामीण के सापुरा भी दिखाने गए थे वहाँ पर, उनके इस शिकायत के आधार पर तो CBO साहब को मैंने वहाँ भेजा था। अभी 3 बच्चे वहाँ हैं, बच्चे स्वस्थ हैं और सबका इलाज करवाया जा रहा है।
0: राज्य के अधिकतर स्थानों पर कल दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार कई शहरों में अधिकतम तापमान में करीब 6 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आई। हालांकि पश्चिमी राजस्थान में प्रचंड गर्मी का असर बना हुआ है। फलौदी, बाड़मेर और जैसलमेर में पारा 44 डिग्री सेल्सियस के पार मापा गया। वहीं 17 शहरों में दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा। प्रदेश में अगले 2-3 दिनों में तापमान में फिर बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं 11 मई से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के आसार हैं। इसके असर से कई हिस्सों में आंधी बारिश का दौर फिर से शुरू होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में इस साल की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत आज। प्रदेश में 479 बेंच 7.5 लाख से अधिक मामलों का निपटारा करेंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भविष्य के युद्ध केवल हथियारों से नहीं बल्कि नई सोच और बेहतर तालमेल से जीते जाएंगे। ग्राम 2026 के तहत हैदराबाद में हुई इन्वेस्टर मीट में 200 करोड़ रुपए से अधिक के MOU किए गए। और प्रदेश में सोमवार से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के आसार, कई हिस्सों में आंधी बारिश का दौर फिर से शुरू होने की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम बैंड पर 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और डीआरएम पर 909 किलोहर्ट्ज़ पर, और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एयर पर, यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। प्रातः के 9:11 हो चुके हैं। राजस्थानी लोक संगीत के कार्यक्रम मरुमंगल में आज कलाकार हैं पूरण राम महिरड़ा। लीजिए सुनिए इनकी गाई लोक रचनाएं।

श्रोताओं, ये है आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़, और आप सुन रहे हैं इस समय राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम मरुमंगल। हमारे कलाकार हैं पूर्ण राम मेहरड़ा। लीजिए सुनिए इन्हीं के स्वर में एक और रचना।

श्रोताओं, अभी आप राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम मरुमंगल सुन रहे थे। आज इस कार्यक्रम में हमारे कलाकार थे पूरन राम मेहरड़ा। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के क्वाटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। प्रातः के 9:30 हो चुके हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत। आज इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ युगल हिंदी फिल्मी गीत सुनवाएंगे। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं मोहब्बतें फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे गाया है लता मंगेशकर और उदित नारायण ने। शब्द रचना आनंद बख्शी की है, संगीत

लीजिए श्रोताओं, आप सुनिए लता मंगेशकर के साथ कुमार सानू को। गीत आनंद बख्शी का है, संगीत जतिन ललित का, और फिल्म का नाम है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे।

श्रोताओं, ये फिल्मी दोगाने इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से, और कार्यक्रम में मैं हूं आपका साथी, आपका रेडियो मित्र संजीव कालिया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं अनुराधा पोडवाल और उदित नारायण के गाए इस गीत के साथ। फिल्म का नाम है तुम बिन, शब्द रचना फैज़ अनवर की और संगीत निखिल विनय का है।

और लीजिए श्रोताओं, कार्यक्रम में अब सुनिए चलते चलते फिल्म का ये नगमा। स्वर दिया है अभिजीत और अलका याग्निक ने, शब्द रचना जावेद अख्तर की और संगीत जतिन ललित का है।

और लीजिए श्रोतो, कार्यक्रम के अंत में सुनिए फूल और कांटे फिल्म का ये नगमा। आवाज़ें कुमार सानू और अलका याग्निक की हैं, गीत रानी मलिक का और संगीत नदीम श्रवण का है।

श्रोताओ, अभी आप युगल हिंदी फिल्मी गीत सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 998 किलोहर्ट्ज़ पर। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 10 बज चुके हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आज संजीव कालिया का नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम का आगाज करते हैं सरस्वती चंद्र फिल्म के इस नगमे के साथ, जिसे गाया है मुकेश ने। शब्द रचना इंदिवर की है, संगीत कल्याण जी आनंद जी का है।

और लीजिए श्रोताओं, सुनिए, मुगले आजम फिल्म के लिए लता मंगेशकर और शमशाद बेगम को शब्द रचना शकील बदायूनी की है और संगीत नौशाद का है।

श्रोताओं, अभी आपने लता मंगेशकर, शमशाद बेगम और साथियों के स्वर में मुगले आज़म फिल्म की ये कव्वाली सुनी। और लीजिए अब सुनिए आशा भोंसले और किशोर कुमार को, फिल्म का नाम है पेइंग गेस्ट। गीत मजरू सुल्तानपुरी ने लिखा है और संगीत दिया है सचिन देव बर्मन ने।

श्रोताओं, फिल्म संगीत इस समय आप आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से सुन रहे हैं। कार्यक्रम संबंधी एक सूचना आपको दे दें, आज संध्या 5 बजे युववाणी कार्यक्रम में आरएएस भर्ती 2024 में चयनित अभ्यर्थी महेंद्र गोदारा व साहिल जुरासिया से नवीन सिसोदिया की बातचीत सुनवाई जाएगी। और लीजिए, कार्यक्रम में अब सुनिए हमराज फिल्म का ये गीत, महेंद्र कपूर की आवाज़ में। साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा है और रवि ने संगीतबद्ध किया है।

लीजिए सुनिए, आरती फिल्म के लिए मोहम्मद रफीक को। गीत मजरू सुल्तानपुरी का है, संगीत रोशन ने दिया है।

लीजिए श्रोताओ, कार्यक्रम में अब सुनिए हसरत जयपुरी का लिखा गीत। संगीत शंकर जयकिशन का है और स्वर दिया है आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी ने। फिल्म का नाम है सूरज।

लीजिए अब सुनिए, लता मंगेशकर को फिल्म का नाम है बंदिनी, गीत लिखा है शैलेंद्र ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए

0: बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: श्रोतो, कार्यक्रम फिल्म संगीत इस समय आप आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से सुन रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम बैंड पर 100.1 मेगाहर्ट्ज़, डीआरएम पर 909 किलोहर्ट्ज़ और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एयर पर। और कार्यक्रम में आज मैं आपके साथ हूं, आपका रेडियो मित्र संजीव कालिया। कार्यक्रम में अब सुनिए पारसमणि फिल्म का नगमा मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। इसे लिखा है इंदिवर ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

शोदा अभी अपनी पारसमणि फिल्म का नगमा सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, और लीजिए अब सुनिए पत्थर की सनम फिल्म का ये नगमा। स्वर दिया है मुकेश और लता मंगेशकर ने, गीत मजरू सुल्तानपुरी का है और संगीतबद्ध किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

लीजिए श्रोताओं, आप सुनिए मोहम्मद रफीक को। फिल्म का नाम है कश्मीर की कली, गीत SS बिहारी का है और संगीत OP नैयर का है।

और लीजिए श्रोताओं, कार्यक्रम में अब सुनिए उजाला फिल्म के लिए लता मंगेशकर को। गीत लिखा है हसरत जयपुरी ने और संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

0: लीजिए श्रोताओ, आप सुनिए। शहनाई फिल्म के लिए मोहम्मद रफी को गीत राजेंद्र कृष्ण का है और संगीत रवि ने दिया है।
1: न झटको जुल्फ से।

मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलो हर्ट्स पर एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 11 बजे हैं। लीजिए अब सुने कार्यक्रम फिल्म संगीत।

फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम लेकर आपका दोस्त संजय चौधरी हाजिर है आपके साथ। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बेखुदी फिल्म के इस गीत के साथ। इसे स्वर दिया है आशा भोसले और कुमार शानू ने।

श्रोताओ, फिल्म संगीत का ये प्रोग्राम इस वक्त आप आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरत कर से सुन रहे हैं। कार्यक्रम में लीजिए, सुने बिन फेरे हम तेरे। इस फिल्म का ये गीत स्वर मोहम्मद रफ़ी और उषा खन्ना के हैं।

अभी आपने सुना शैलेंद्र सिंह को फिल्म बॉबी के इस गीत में। कार्यक्रम में लीजिए अब सुने कविता कृष्णमूर्ति को फिल्म सौदागर के इस गीत में।

श्रुतो कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे स्वयंवर फिल्म का ये गीत। इसे स्वर दिया था मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने। इसके गीतकार थे गुलजार और संगीत राजेश रोशन का। फिल्म संगीत का यह प्रोग्राम इस वक्त आप आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से सुन रहे हैं। कार्यक्रम में लीजिए अब सुने तड़ी पार फिल्म का ये गीत, स्वर अलका याग्निक और कुमार शानू के।

श्रोता कार्यक्रम में लीजिए और सुने तहलका फिल्म का ये गीत, स्वर अनुराधा पौड़वाल, कुमार शानू और बाबला मेहता के हैं।

श्रोताओ, फिल्म संगीत का ये प्रोग्राम इस वक्त आप आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से सुन रहे हैं। कार्यक्रम में लीजिए अब सुने तेरी मेहरबानियां। इस फिल्म का ये गीत स्वर अनुराधा पौडवाल और शब्बीर कुमार के हैं।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत, मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्स पर, FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 12:40 हुए हैं। लीजिए अब सुने कार्यक्रम विवरण। कार्यक्रम विवरण में आप सुनेंगे हमारी आज की सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम व उनका प्रसारण समय। अब से कुछ ही देर बाद यानी कि 12:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम फरमाइशी गीत। 12:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवाएंगे जगजीत सिंह की गाई कुछ गजलें। खेत खलिहान का वक्त रहेगा 12:50। दोपहर 1:05 पर कार्यक्रम होगा महिला जगत। फिल्म संगीत आप सुन पाएंगे 2:30 पर।

शाम 6:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सिराय की चौपाल का वक्त रहेगा शाम 7 बजे। 7:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। इस कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे भक्ति संगीत के गीत एक ही फिल्म से। ये कार्यक्रम आप सुन पाएंगे रात्रि 8 बजे।

रात्रि 9:15 पर कार्यक्रम होगा सुगम संगीत। 9:30 पर आप सुनेंगे राष्ट्रीय संस्कृति पत्रिका हमारे दिल्ली केंद्र।

मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह दोपहर के 12:05 होने को है। लीजिए अब सुने फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम अनुरोध गीत।

अनुरोध गीत सुनने वाले सभी श्रोताओं को संजय चौधरी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आपके पत्र हम तक पहुंचे हैं। इस कार्यक्रम में आपके पत्र शामिल करेंगे और आपकी पसंद के गीत आप तक पहुंचाएंगे। कार्यक्रम में ये पहला पत्र हम तक पहुंचा है सिद्धार्थ नगर दयारपुर बाबली से। लिखने वाले हैं गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप और अशोक येले। रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर से ये पत्र हमें लिखा है लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षिता और खुशी गोस्वामी ने। वड़िंगखेड़ा पंजाब से मिंटू, टेमस, पिंकी, लवली और आरती अरोड़ा ने ये पत्र हमें लिखा है। नाइयावाली जिला हनुमानगढ़ से ये पत्र हमें लिखा है वेद मिड्ढा और अलका मिड्ढा ने। गांव कलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ से विक्रम कड़वासरा, सचिन, सतीश, योगेश, युधव कड़वासरा, कुंदन जाखड़, लीलाधर स्वामी, कृष्ण मायल, कीड़ूराम जोया, हनुमान सहारण और सुनील पाईवाल शर्मा ने ये पत्र हमें लिखा है। गांव खोखरावाली से विनोद बारासा, विशाल बारासा, विकास बारासा, रोशनी और शगुन बारासा ने ये पत्र में लिखा है। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता ने ये पत्र हमें लिखा है। अगला पत्र हम तक पहुंचा है गांव घमंडिया से। लिखने वाले हैं जगदेश ढूकिया, परमिला ढूकिया, ज्योति, सरिता, तमन्ना, सचिन, विष्णु और शिवम ढूकिया ने ये पत्र हमें लिखा है। भोपालगढ़ जिला जोधपुर से घनश्याम सिंह चौधरी और अंकित सिंह चौधरी ने यह पत्र हमें लिखा है। गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़, मंजुला राठौड़, विशाल और निशा ने यह पत्र हमें लिखा है। बहलोल नगर से हरीश हैरी, जगतार जहरी, सुशील डेलू और राकेश चाहर ने यह पत्र हमें लिखा है। तो लीजिए, आप सबको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम में ये अगला पत्र हम तक पहुंचा है। लिखने वाले हैं जॉन डिकोस्टा, रोजी डिकोस्टा, पर्ल डिकोस्टा और विलिस डिकोस्टा ने ये पत्र हमें लिखा है जनकपुरी सहारनपुर से। अगला पत्र हम तक पहुंचा है दुर्गा कॉलोनी हांसी से। लिखने वाले हैं राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू ने ये पत्र हमें लिखा है। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी और निमित अहुजा ने ये पत्र हमें लिखा है। गांधी मार्ग मोती नगर नई दिल्ली से मानसी गौरव अरोड़ा ने ये पत्र हमें लिखा है। सादुल शहर से ये पत्र हमें लिखा है रामकुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़ ने। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और विमला अनेजा ने यह पत्र हमें लिखा है। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीटी मल्होत्रा, रितिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज ने यह पत्र हमें लिखा है। पदमपुर जिला श्रीगंगानगर से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा और भूमिका अरोड़ा ने ये पत्र हमें लिखा है। बोड़सर छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी, विनोद विभूति, अंशु बबली और प्रियांशु साहू ने ये पत्र हमें लिखा है। जिला नांदेड़ एताला महाराष्ट्र से शंकरलाल जायसवाल, गणेशलाल, शुभ प्रसाद, शुभम प्रसाद और कुमारी दुर्गेश्वरी जायसवाल ने ये पत्र हमें लिखा है। दादर गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल, किरण, कपिल और कुणाल मेहरा ने ये पत्र हमें लिखा है। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिंपा, कपिल छिंपा, ईशान छिंपा और पूजा परिहार ने ये पत्र हमें लिखा है। कार्यक्रम में ये अगला पत्र हम तक पहुंचा है धनोरी तेलीवाला उत्तराखंड से। लिखने वाले हैं निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और आयान बाबू ने ये पत्र हमें लिखा है। गांव फ्रांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और सौरभ डूडी ने ये पत्र हमें लिखा है। लखुवाली हेड से मास्टर भंवरलाल, कृष्ण विशाल, सौरभ ममता, राजबाला, नव्या लक्षिता, मोहम्मद रफीक, संगरिया मुकाना से राम महावीर लोहरा ने ये पत्र हमें लिखा है। गांव हीरावाली पंजाब से सुभाष गोदारा, विमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा, सरवण रीणमा, हंसराज भाटिया, मनीराम, रणजीत राम किरोड़ीवाल। तो लीजिए आप सबको सुनवाते हैं आपकी पसंद पर ये गीत।

कार्यक्रम में अगला पत्र हम तक पहुंचा है सांगली जिले से। लिखने वाले हैं अल्ताफ हुजरे, शैफुल्ला सबाहत, किरजत हुजरे और रेहान शेख ने पत्र हमें लिखा है। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरव शर्मा, शायना शर्मा और निवान शर्मा ने पत्र हमें लिखा है। वीरम गांव गुजरात से अजीत भावसर, प्रमिला भावसर ने ये पत्र हमें लिखा है। जीटीबी मार्केट अहमदगढ़ मंडी पंजाब से मोहम्मद अनवर अंसारी, रवीना, हीना, सकीला, जासमीन, राजिया, सुल्ताना, अख्तर अंसारी, सूरज, मोहम्मद जावेद अंसारी ने ये पत्र हमें लिखा है। नई बस्ती गंज डूंडवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ हाशमी, मोहम्मद तैमूर हाशमी और मोहम्मद कलीम अंसारी ने ये पत्र हमें लिखा है। अगला पत्र हमें लिखा है हनुमानगढ़ से रज्जाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान और इरफान खान ने। ये पत्र हमें लिखा है गांव जाखोद राजस्थान से। लिखने वाले हैं शंभुदयाल खटीक, विमला देवी, अमरजीत खटीक, सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार और कुमारी पूजा खटीक ने ये पत्र हमें लिखा है। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, असलम अंसारी, अकरम अंसारी और अल्ताफ अंसारी ने ये पत्र हमें लिखा है। डूमराव बिहार से डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी, डॉक्टर सोनम, अदीबा और वसीम अंसारी ने ये पत्र हमें लिखा है। अगला पत्र हम तक पहुंचा है सारिमपुर बॉक्सर से। लिखने वाले हैं राज एस डी अंसारी, आसमा खातून अंसारी, आफताब अंसारी, महताब अंसारी, मेराज अंसारी और कल्लू और मल्लू अंसारी ने ये पत्र हमें लिखा है। गांव बांडीवाला जिला फाजिलका से ओम बगड़िया, क्रियांश बगड़िया, योगेश बगड़िया, रजत और बेबी गरिमा बगड़िया ने ये पत्र हमें लिखा है। बठिंडा रोड मंडी डवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और तानिया नारंग ने ये पत्र हमें लिखा है। आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहां ने ये पत्र हमें लिखा है। चक 15 पीएस श्रीगंगानगर से सर्वजीत सिंह जोशन, सर्वजोत कौर जोशन, गुरमन मेलबॉर्न ऑस्ट्रेलिया से आदर्शपाल सिंह जोशन और वैंकूवर कनाडा से रॉबिन सिंह जोशन ने ये पत्र हमें लिखा है। रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी और ठाकुर साहब ने ये पत्र हमें लिखा है। गांव जोगीवाला से प्रेम सहारण, मोनिका और मनीष सहारण ने ये पत्र हमें लिखा है। गांव लोहगढ़ ठाकुरू जिला फिरोजपुर पंजाब से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह गिल, राजदीप सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह और इनके पोतरे गुरनूर सिंह और शुभदीप सिंह ने ये पत्र हमें लिखा है। गंज डुडवारा से श्यामसुल कमर राही, शाहीन फातिमा।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अगला पत्र हम तक पहुंचा है सदर बाजार कुरवाली से। लिखने वाले हैं अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा और विनीत कुमार वर्मा के साथ सोनम वर्मा ने ये पत्र हमें लिखा है। गांव खारिया, जिला सिरसा से पत्र लिखा है प्रताप जिनागल, इंदिरा, मुकेश, दिनेश, अंशु, बलदेव कटारिया ने। अमरगढ़ शादुल शहर से कुलवंत मान, लखविंदर कौर मान, खुशप्रीत कौर मान और गुरनूर मान, हरविंदर मान और कुलविंदर कौर मान ने ये पत्र हमें लिखा है। अगला पत्र हम तक पहुंचा है मुक्तसर पंजाब से। लिखने वाले हैं बाबू सिंह धीमन, बलजिंदर कौर धीमन, रवनीत, निशु ने ये पत्र हमें लिखा है। अगला पत्र हम तक पहुंचा है सात डीबीएन भादोंवाली से टेकचंद चारण, संतोष देवी, सत्यप्रिय चारण, जय सिंह चारण, बिटिया योगेश्री, रणजीत सिंह सुथार, गुरुदेव सिंह भणियाणा, हरनेक सिंह भणियाणा, कृष्ण लाल राहड़, 63 LNP से आपने ये पत्र हमें लिखा है। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शादरा दिल्ली से तुलसी मशकीन, वीना मशकीन, आशीष राजा, चैतन्य मशकीन और चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, किशु रिधाना खुराना ने ये पत्र हमें लिखा है। फवारा चौक से ये पत्र हमें लिखा है संदीप सिंह सोनगरा, प्राची सोनगरा, सोमल सोनगरा और कार्तिक सोनगरा ने। मानपुर साबित जिला मुरादाबाद से शेख जियाउर रहमान, शेख अताउर रहमान, शेख हबीबुर रहमान ने ये पत्र हमें लिखा है। कासम कॉलोनी सनावद से यूनिस खत्री, शफी खत्री और इदरीश खत्री, नूर मीना ने ये पत्र हमें लिखा है। बिल्लू सूद, सुनीता सूद, आशीष सूद और विश्वजीत सूद ने केसरी सिंहपुर से ये पत्र हमें लिखा है। अगला पत्र हम तक पहुंचा है गज डुंडवारा से मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम, मोहम्मद अयान, मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद यासीन और शमसूल कमर राही।

इन्हें हांडीखेड़ा जिला सिरसा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा और सार्थक शर्मा ने ये पत्र हमें लिखा है। तो लीजिए, आप सबको सुनवाते हैं आपकी पसंद पर ये गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अनुरोध गीत। फरमाइशी गीतों का यह कार्यक्रम आपने आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरत कर से सुना। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 12:30:20 हुए हैं। लीजिए अब सुने कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं जगजीत सिंह की गाई कुछ गजलें।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से। इस कार्यक्रम में हमारे आज के कलाकार हैं जगजीत सिंह।

0: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में आज आपने जगजीत सिंह की गाई कुछ गजलें सुनी। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। श्रोताओ, हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 12:50 हुए हैं। लीजिए अब सुने कार्यक्रम खेत खलिहान। इस कार्यक्रम में आज जानकारी का विषय है कृषि यंत्रों की देखभाल कैसे करें।
1: कार्यक्रम सुनणिया सगळ्या परिवाराने भाई राजन का घणा घणा राम राम, मोकला मोकला राम राम सा। बात करा भाई लोगों, आपा खेती की तो आपा के है, अपनी खेती में नए नए तरीका का जी का प्रयोग है वह करता रहा। कई बार आपा ने अपनी खेती में भी फायदों मिले तो कदे कदे आपा ने नुकसान भी उठानो पड़े हैं। तो खेती पाती की ई कड़ी में ही आज आपा आगे चला और देखा का अपनी जी की आधुनिक कृषि आपा करण लाग रहे हैं, बेंगमा कृषि यंत्रों को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। पुराने टाइम की बात करें तो बैठे के खेती को ज़्यादातर काम जिको है वो आपा अपने पशुओं और मानव श्रमों कराया करता है। लेकिन आज के टाइम की बात करें तो आपा कई ऐसा कृषि यंत्रों को प्रयोग करा जिकों के है कि आपनों टाइम भी बचे और अपने खातर फायदेमंद भी हो। जिया देखा तो ट्रैक्टर है, थ्रेसर, हार्वेस्टर, पंप सेट, सीड ड्रिल, स्पेयर ए आदि ऐसा यंत्र है जिका उपयोग के अपनी खेती है व पहले के मुकाबले काफ़ी तेज, सरल और लाभकारी भी अपने खातर बन गई है। कृषि यंत्र अगर आपा मूल तौर पर देखा तो किसान परिवारों को टाइम तो बचावे है, सागे सागे जिकी मेहनत है बिना भी बचावे और अपने उत्पादन बढ़ाने में भी काफ़ी सहायता करें। कृषि यंत्रों की देखा आपा तो कीमत है व साधारण तौर पर बहुत ज़्यादा हुए है, इन खातर के कि मांगी उचित देखभाल है वह भी अपने खातर जरूरी है। जै यंत्रों की आपा नियमित तौर पर सफाई करा मांगी मरम्मत राखा रख रखाव करा तो वह एकदम सही बने रहे है, पर आपा जे या ना करा तो वह के जल्दी खराब हो जाए जिका उनके किसान भैया ने आर्थिक नुकसान भी उठानो पड़ सके हैं। तो इन खातर कृषि यंत्रों की देखभाल है वह हर किसान परिवार की एक जिम्मेदारी है। अगर कृषि यंत्रों की देखभाल पर मूल महत्व पर आपा चर्चा करा तो लंबे टाइम तक अगर आपा कोई भी अपनों कृषि यंत्र प्रयोग में लेना है तो भी आपा सही देखभाल करके रखा और समय पर देखभाल करने के है कि कार्य क्षमता जी की अभा भी अच्छी बनी रहे, ईंधन और टाइम की भी आपने वो बचत करें। लगातार आपा सही समय पर देखभाल करें तो मशीन की जी की आयु है वह बढ़े और सागे सागे कोई भी प्रकार की खराबी को नहीं आवे और दुर्घटना की जी की संभावना है वह भी बहुत कम हो जाए। इनके अलावा देखा तो समय पर देखभाल करने के मरम्मत पर हो नाड़ो जी को खर्चो है वो भी कम हो जाए और खेती का जी का भी काम है वह आपा टाइम पर पूरा कर सका है। तो देखा आपा प्रमुख उपायों के बारे में बात करा कि कृषि यंत्रों की देखभाल में आपा के कर सका हाँ जी। मैं सबों पहले देखा आपा नियमित जी की सफाई है, हर उपयोग के बाद आपा जिका भी कृषि यंत्र को प्रयोग करने लाग रहे हैं भी आपा अच्छी तरीके से सफाई करा। माटी है, भूसो है, तेल है, ए चीज़ा जमा होने के है कि मशीन का जिका पुर्जा है भावें जंग लागण की संभावना बनी रहे। ट्रैक्टर है, थ्रेशर है, आने पानी के सागे सागे आपा कपड़ों भी साफ करा। स्प्रेयर को उपयोग के बाद बिना अच्छी तरह धोगे सु

कटाई आला जी का भी यंत्र है, बामे फसड़ी जी की भी फसल का कण है या अवशेष है, बहने आपा निकाला और साफ सफाईयों मशीना ज़्यादा टाइम तक सही काम करती रहे। इनके अलावा टाइम टाइम पर आपा ग्रीस जी की है बादता रहा, तेल पानी जी को भी मैं डालता रहा, तो भी मशीन है जी की बस सही चलती रहे, क्योंकि ज़्यादातर चालन वाला मशीना का भाग है बामे घर्षण हुआ है और बामे उचित मात्रा में तेल और ग्रीस आपा लगाता रहा तो क्या है पुर्जा सही चलता रहे, पर जे आपा यहाँ ना करा तो क्या है पुर्जा जल्दी घसन लग जाए। इंजन ऑयल है जी को आपा ध्यान रखा टाइम टाइम पर भी ना बदला, गियर बॉक्स और बेयरिंग में भी आपा ग्रीस डाला। इनके अलावा ट्रैक्टर की जिकी भी कंपनी है बिंगा द्वारा सुझाएडो जिको भी तेल है बिंग उपयोग आपा भी मैं कर सका हाँ, और मशीना सुचारू रूप में चाले इंग खातर आपा समय समय पर भी मैं तेल पानी और ग्रीस है जिको वो डालता रहा। और अगर सावधानी की बात करें तो नट बोल्ट की भी आपा ने समय रहते जांच करनी है, क्योंकि काम करता टाइम के है कि मशीन कंपन के कारण मशीना का नट बोल्ट है वह स्वाभाविक तौरों ढीला होने लग जाए, ढीला नट बोल्ट के है दुर्घटना को कारण बन सके है। और टाइम टाइम पर आपा ध्यान रखा कि प्रत्येक प्रयोगों पहले आपा सारा नट बोल्ट अच्छी तरीके से जाँच करा और बाने कसा टूटड़ा या घिसड़ा कोई भी पुर्जा है तो बाने तुरता फुरता आपा बदलवावा, और बेल्ट और चैन वाली अगर कोई मशीन है तो बांगी भी स्थिति आपा जांचा। इन अलावा आपा अब देखा तो उचित भंडारण जी को है वो भी अंग खातर बहुत जरूरी है, क्योंकि आपा प्रयोग के बाद कृषि यंत्र ने खुला गमा ना छोड़ा, कई बारी के है तेज धूप है नमी है या बारिश की वजह के मशीना में जंग लाग जाए, मशीना ने कोई भी प्रकार को शेड बना गया या कोई कमरों है बैंगमा आपा रखा, लंबे टाइम तक उपयोग ना होने पर भी पैके आपा कपड़ों या तिरपाल गाल के बिना ढक भी सका हाँ, और लोया का जिका भी भाग है बीपे ग्रीस या तेल लगा के आपा छोड़ देना जिका उनके है कि बीपे जंग ना लगे। आपा जिको भी कृषि यंत्र उपयोग कर रहे हाँ बिंगो जिको इंजन है और बीमे लागड़ी जिकी बैटरी है बिंगी भी उचित देखभाल करनी आपा खातर जरूरी है, क्योंकि ट्रैक्टर और अन्य जिका भी इंजन चालित मशीना है वामे इंजन और बैटरी को विशेष ध्यान रखना अपने खातर जरूरी है। बैटरी में जिको पानी गुस्तर है वो समय समय पर आपा जांचा, इंजन ने टाइम टाइम पर आपा स्टार्ट करा, एयर फिल्टर और जिको फ्यूल फिल्टर है बिने भी आपा साफ रखा, और रेडिएटर गमा आपा उचित पानी रखा। जिको भी व्यक्ति अपने कृषि यंत्र ने चलावे वो पूर्ण रूप प्रशिक्षित होना चाहिए, अनाड़ी आदमी कोई भी प्रकारों कृषि यंत्र का उपयोग ना करे, क्योंकि केवल प्रशिक्षित व्यक्ति जब भी ने चलावेगो तो वो के है सुचारू रूप में चलेगो, गलत संचालन के मशीन जल्दी खराब हो सके है, और मशीन चलाणु पहले आपा बिंगी पूरी जानकारी ले गए और फिर ही मशीन को प्रयोग करा, सुरक्षा नियमों को आपा पालन करा, और कोई भी छोटा टाबर है तो बाने भी आपा मशीन दूर रखा। इनके अलावा समय समय पर मरम्मत है जिकी कृषि यंत्रों की आपा जरूर करावा, जे मशीन में कोई भी आपा ने छोटी मोटी खराबी दिखाई देवे तो तुरंत बिना आपा ठीक करावा, कोई भी छोटी खराबी ने अगर आपा नज़रअंदाज कर देवा तो यूं के है कि बड़ो नुकसान है बिना आपा ने उतो देन लाग रहा, कोई भी असामान्य आवाज़ आवे तो बिंगी भी आपा जांच करा, खराब पुर्जा ने तुरंत बदलवावा, और कोशिश करा कि ज़्यादातर जिको मरम्मत को काम है वो आपा अधिकृत मैकेनिक के माध्यम ही करावा जिका ने मशीन की पूरी जानकारी हो। कुछ प्रमुख कृषि यंत्र आपा अपनी खेती में प्रयोग करा बांगी आपा विशेष देखभाल करता रहा, जहाँ ट्रैक्टर की बात करा तो आपा प्रतिदिन भी मैं डीजल इंजन ऑयल और पानी की आपा जांच करा, टायरा में आपा सही हवा को दबाव रखा, क्लच और ब्रेक की जांच करा, और भी मैं जिकी वायर है बिना भी आपा समय समय पर संभालता रहा। स्प्रेयर की आपा बात करा तो उपयोग है तुरंत बाद आपा टंकी जिकी है वह अच्छे तरीके से धोवा, नोजल ने साफ करके रखा, और जिका भी कीटनाशक का बिंग ऊपर अवशेष रेड़ा है बाने भी आपा पूरी तरीके साफ कर देवा। बात करा थ्रेसर की तो इमें बेल्ट और पुली की आपा जांच करा, संचालन के टाइम पर सुरक्षा को चापा जरूर लगावा, और छोटा टाबर है या पशु है बाने यूं दूर रखा। पंप सेट की आपा बात करा तो पाइप लीकेज है बिंग आपा ने हमेशा जांच करनी चाहिए, मोटर ने हमेशा सूखी जगह पर रखा, और बिजली कनेक्शन है जिको वो भी सुरक्षित होना चाहिए। कृषि यंत्रों की आपा देखभाल में कुछ सावधानियां भी आपा ने बरतनी है भाई लोगों, जिया मशीन जी टाइम पर चालू हुआ है बी टाइम पर आपा कोई भी प्रकार की साफ सफाई न करा, कोई भी ढीला कपड़ा पहरेगा आपा

प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में आज शपथ ली। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह हुआ। मुख्यमंत्री के साथ पांच अन्य विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल आर एन रवि ने सभी को शपथ दिलाई। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शिरकत की। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और 20 राज्यों के मुख्यमंत्री तथा उप मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने ब्रिगेड ग्राउंड पहुंचने से पहले एक रोड शो भी किया। केंद्र सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS नियुक्त किया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। श्री चौहान का कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पदभार ग्रहण करने की तारीख से लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणी सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी काम करेंगे। वर्तमान में वे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले वे सेना के उप प्रमुख और केंद्रीय कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्य कर चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणी पश्चिमी और उत्तरी मोर्चों पर प्रमुख परिचालन इकाइयों की कमान भी संभाल चुके हैं। राजधानी जयपुर में आज लोक अभियोजकों की राज्य स्तरीय कार्यशाला हो रही है। इसमें नए आपराधिक कानूनों, साइबर क्राइम तथा दिव्यांग कानूनों पर मंथन किया जा रहा है। बिड़ला सभागार में हो रहे इस कार्यक्रम में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा भी मौजूद रहे। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी इस कार्यशाला में शिरकत की। कार्यशाला में न्याय प्रक्रिया को तेज और प्रभावी बनाने तथा नए कानूनों के क्रियान्वयन पर जोर दिया जा रहा है। अजमेर की ऐतिहासिक पहचान से जुड़े तारागढ़ किले और इसके आसपास के पहाड़ी क्षेत्र का कायाकल्प किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कल इस बारे में जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा की। गौरतलब है कि आजादी के बाद पहली बार इस किले और क्षेत्र के समग्र विकास तथा संरक्षण की व्यापक कार्य योजना तैयार की जा रही है। राज्य सरकार ने पिछले बजट में इसके लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आज प्रयोगशाला सहायक और कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा आयोजित की जा रही है। 804 पदों के

0: ये ली जा रही ये परीक्षा आज एक और कल दो पारियों में होगी। बोर्ड की ओर से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार इस बार अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र के अंदर जाने के लिए दो स्तरीय सुरक्षा जांच से गुजरना होगा। बायोमेट्रिक जांच के साथ ही फेस रिकॉग्निशन तकनीक का भी इस्तेमाल किया जाएगा। पारदर्शी और सुचारू परीक्षा संचालन के लिए सभी केंद्रों पर वीडियोग्राफी की भी व्यवस्था की गई है। प्रदेश में महिला सुरक्षा संकल्प अभियान 14 और 15 मई को चलाया जाएगा। दो दिन के इस अभियान के तहत महिला सुरक्षा कानून और आत्मरक्षा के तरीकों के साथ महिलाओं को जागरूक किया जाएगा। इसी कड़ी में झुंझुनू जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक फूलचंद मीणा ने बताया कि अभियान के तहत स्कूल, कॉलेज, बस स्टैंड, पार्क और भीड़भाड़ वाले इलाकों में महिलाओं से अभद्रता करने वाले लोगों के खिलाफ मौके पर ही कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभियान के तहत कालिका टीम और निर्भया स्क्वाड को विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये टीमें सार्वजनिक स्थानों पर लगातार गश्त करेंगी। आज वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से अदम्य साहस और वीरता के पर्याय महाराणा प्रताप को नमन किया है। अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा है कि महाराणा प्रताप ने मातृभूमि की रक्षा के लिए घास की रोटी खाना स्वीकार किया, लेकिन विदेशी दासता के आगे कभी सिर नहीं झुकाया। पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में हीट वेव का दौर बना हुआ है। जैसलमेर, बाड़मेर और फलौदी में कल तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। 44.8 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ फलौदी सबसे गर्म स्थान रहा। मौसम विभाग ने आज भी इन जिलों के लिए हीट वेव का अलर्ट बताया है। वहीं कई जिलों में भीषण गर्मी के बीच मौसम बदला। नागौर, अजमेर, टोंक, बूंदी और सवाईमाधोपुर में दोपहर बाद धूल भरी आंधी चली और हल्की बरसात हुई। पूर्वी राजस्थान में आज भरतपुर, धौलपुर, करौली और अलवर जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 1:05 और 57 सेकंड हुए हैं। लीजिए अब सुने कार्यक्रम महिला जगत।

कार्यक्रम सुनने वाली सभी बहनों को रजनी मोदी का प्यार भरा नमस्कार। बदलते इस मौसम में, या यूं कहें कि पूरी तरह से बदल चुके इस गर्मी के मौसम में, आप सब स्वस्थ होंगे ऐसी मैं उम्मीद करती हूं। बहनों, शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की कुछ मीठी सी बातों से और उसके बाद संगीत का आनंद लेंगे। चलिए, आज बात की शुरुआत करेंगे हमारे बुज़ुर्गों से। बुज़ुर्गों की याददाश्त बढ़ाने वाले मेमोरी गेम्स क्या क्या हो सकते हैं और कैसे हम उनको खुश रख सकते हैं। मैंने किसी ने बड़ा ही सुंदर बात कही है, अधूरी ख्वाहिशों का कारवां है ज़िंदगी। अधूरी ख्वाहिशों का कारवां है ज़िंदगी, मुकम्मल जहां तो किताबों कहानियों में ही होता है। मैनो, हम तो ये कहेंगे मुस्कुराना सीख लीजिए, जिंदगी परेशान नहीं करेगी। जिंदगी एक पहेली की तरह है, कभी यह हंसाती है तो कभी रुलाती है। बड़े खट्टे मीठे किस्से जुड़ जाते हैं समय के साथ साथ। बचपन में बेफिक्री, कोई जिम्मेदारी का बोझ नहीं। फिर जवानी आई, थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी और चिंताएं भी हिस्से में आने लगी। घर के बड़े अच्छे बुरे के बारे में समझाते और हम जो अच्छा होने के लायक था वो करते। फिर एक दिन शादी हुई और फिर बच्चे। अब जब बच्चे हुए

उस दिन समझ में आया कि जिम्मेदारी आखिर होती क्या है। क्यों माँ बाप हमारी फिक्र करते थे, हमें समझाते थे। जिंदगी का असली मतलब तब समझ में आया जब हम प्रौढ़ अवस्था में एंटर हुए और हमारे बच्चों के बच्चे भी बड़े होने लगे। धीरे धीरे याददाश्त भी थोड़ी कमजोर होने लगी, लेकिन सौभाग्य से हमारे दिए हुए संस्कार हमारे बच्चों में पल्लवित होते हुए दिख रहे थे। वे हमारे साथ समय बिताते, हर अच्छी बुरी बात साझा करते और हम हमारे साथ गेम्स खेलते, जिससे हमें जिंदगी से कोई शिकायत नहीं। बहनों, ये सारी बातें आपको आत्मकथा जैसी लग रही होंगी, लेकिन नहीं, ये किसी एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। यह हकीकत है हम सब की जिंदगी में जो आनी है।

0: कभी तो हंसाए।
1: बहनो सच में जिंदगी एक पहेली ही तो है, कभी ये हंसाती है कभी रुलाती है, और संगम बन जाता है खट्टी मीठी यादों का। बहनो हम बात भी कर रहे थे बुजुर्गों की। बुजुर्ग घर के वटवृक्ष होते हैं, इनकी शीतल छाया में जो सुकून है ना, वह कहीं नहीं मिलता। इसलिए यदि इनकी याददाश्त आपको कुछ

कम होती लगे तो इन्हें नकारें नहीं, कुछ गेम्स ऐसे खिलवाएं जिससे इनके उच्च विचारों का फायदा हमें मिलता रहे। मेरे यकीन करके जानिए, जब भी कभी आप इनसे इनके अभ्यास के बारे में, इनके जितने भी काम किए हुए उनके बारे में यदि आप सुनेंगे ना, एक्सपीरियंस के बारे में, तो वास्तव में आप महसूस करेंगे कि बहुत कुछ इन्होंने अच्छा किया हुआ है और जिसे हम फॉलो करके भविष्य में लागू कर सकते हैं। याददाश्त बढ़ाने और मानसिक सक्रियता को बढ़ाने के लिए कई प्रकार के मज़ेदार गेम्स हैं, जैसे कि क्रॉसवर्ड पजल यानी पहेली सुलझाना। इससे क्या होता है कि दिमाग के न्यूरॉन्स को सक्रिय करने में मदद मिलती है और एकाग्रता बढ़ाता है ये गेम। पहेली में होता भी तो क्या है, हम कुछ ऐसे पजल वर्ड पूछते हैं, उसको समझने में फिर हम कल्पना करते हैं, बस यही तो सारा दिमाग का खेल है, यही करना है। सुडोकू नंबर गेम जो है, इसमें लॉजिकल थिंकिंग के लिए काफ़ी फायदेमंद रहता है ये। जिक्सा गेम, इसमें टुकड़ों को जोड़कर आकृति बनाने से दृश्य स्मृति में सुधार होता है। देखते हैं कि किस टुकड़े को कहाँ जोड़ दिया। अब कोई मानव एक व्यक्ति की चित्र बनाना है तो अलग अलग टुकड़े हैं, कहीं टांग है, कहीं हाथ है, कहीं मुखड़ा है, तो उसको जोड़कर जब वो बनाते हैं तो उससे क्या उनके देखने की जो क्षमता है उसमें भी सुधार होता है। शतरंज और चेकर्स, ये खेल जो है सोचने की क्षमता और रणनीति बनाने में मदद करते हैं। कहानियाँ सुनना और सुनाना, कभी खुद की सुना दो थोड़ी सी और उनसे सुने मज़ेदार कहानियाँ। घर में रखे सामान के बारे में पूछते रहें, बाऊजी ये कहाँ था, अम्मा मम्मी का ये कहाँ था, माताजी ये सामान, तो इससे क्या है बुज़ुर्गों को ये एहसास रहता है कि हमारी आज भी उतनी ही अहमियत है घर में जितनी पहले हम अपने आप में समझा करते थे। क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है जब हम उनसे सामान के बारे में पूछते हैं तो उनको लगता है कि उनका अधिकार आज भी उतना ही है। पुरानी तस्वीरों को देखना और उनके बारे में चर्चा करते रहना, हो सके तो बाहर टहलने के लिए भी ले जाएं। घूमते घूमते व्यापार और घर की समृद्धि के सुझाव लेना कई बार फायदेमंद साबित होता है। डिजिटल दुनिया के बारे में समय समय पर बताते रहना चाहिए। मोबाइल आजकल हर किसी के पास है, उस मोबाइल में जो ऐप्स हैं, और आजकल मैंने पता है क्या है, कैमरा बड़ा मदद करता है। समेट लीजिए अपनी इन पुरानी यादों को, जब भी कभी मन करे तो कैमरा खोलें और उसमें अपने साथ साथ अपने बुज़ुर्गों को भी वो फ़ोटोज़ दिखाएं, ये फलां फंक्शन की फ़ोटो है, ये वहाँ की फ़ोटो है, तो इनसे उनकी जो अंदर की भावनाएं हैं ना, उसमें एक जादू जैसा बदलाव आता है। और जब भी समय मिले उनके पास बैठना, हाथ पकड़ना और प्यार से कहना,

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: बहनों, मां बनना एक सुकून भरा एहसास है। ईश्वर द्वारा दिए गए तोहफे का अनमोल उदाहरण है मां। पहली बार बच्चे की तोतली जुबान से मां सुनना संसार का सबसे बड़ा सुख होता है। बच्चे को किस वक्त क्या चाहिए ये सिर्फ मां ही तो जानती है। अपने गर्भ में 9 महीने पालते वक्त ही सयानी हो जाती है। अपने सारे शौक सारे स्वाद को दरकिनार कर बस बच्चे की बेहतर संभाल पर अपने आप को समर्पित कर देती है। बहनों, ये माँ ही तो होती है जो जरा सी तकलीफ होते ही सहम उठती है, बच्चे की हंसी में हंसती है, उसके रोने पे रोती है। बच्चा तकलीफ में हो तो सारी सारी रात जाग कर उसकी देखभाल करती है, बस उसकी नन्ही जान ठीक हो जाए, भले वो खुद बीमार पड़ जाए उसकी फिक्र नहीं है, बस बच्चा ठीक होना चाहिए। हालांकि पिता उनके पालन पोषण की सारी जिम्मेदारी निभाता है। और ये भी सच है कि माँ बाप के लिए बच्चे कभी भी बड़े नहीं होते, इसलिए वे हक किसी भी उम्र में अपने बच्चों को डांट देते हैं। लेकिन क्या माँ बनना इतना आसान है? तो बहनों, जवाब यही होगा कि नहीं, क्योंकि गर्भावस्था के दौरान बहुत सी ऐसी परेशानियां एक गर्भवती स्त्री को होती हैं, लेकिन मातृत्व का सुख पाने के लिए इन सब से भी वो लड़ लेती है। तभी तो बच्चा ये कहता है ना

माँ, मैंने ऐसा लगता है जैसे सारी सृष्टि की सुंदरता इस एक शब्द में समा गई हो। एक औरत की जिंदगी का सबसे सुखद एहसास है माँ बनना। मैंने गर्भावस्था के दौरान बहुत सी सावधानियां रखनी पड़ती हैं ताकि प्रसव के दौरान जच्चा और बच्चा स्वस्थ रह सके। सबसे जरूरी है गर्भावस्था के दौरान डिहाइड्रेशन से बचना। इस दौरान गर्भवती के शरीर में तरल पदार्थों की दैनिक आवश्यकता बढ़ जाती है। ये सिर्फ गर्भवती के शरीर को एमनियोटिक द्रव बनाने और गर्भनाल के निर्माण में सहायता करने व रक्त प्रवाह बढ़ाने के लिए अतिरिक्त पानी की जरूरत बढ़ने के कारण होता है। प्रत्येक 3 महीने में ये जरूरत बढ़ जाती है। बस यही होती है बड़ी गलती। पर्याप्त पानी हम लोग पीते नहीं और जब चेकअप करवाते हैं तो पानी की कमी की वजह से बहुत सारी परेशानियां होने लगती हैं। पर्याप्त तरल पदार्थों के बिना गर्भवती का शरीर ठीक से काम करने में असमर्थ हो जाता है। यदि चक्कर आए, सिर में भारीपन हो सकता है पानी की कमी से रक्तचाप में गिरावट हो गई हो। मुंह का सूखना, त्वचा का सूखना, ये दोनों लक्षण जो हैं, ये भी पानी की कमी के ही लक्षण हैं। थकान, सिरदर्द, अनियमित पेशाब आना, कब्ज या भ्रूण की हलचल कम होना पानी की कमी की वजह से हो सकता है। सो गर्भावस्था में पर्याप्त पानी पिए और पानी में इलेक्ट्रो पाउडर मिला लें तो ज्यादा बेहतर है। रोजाना कम से कम 8 से 12 गिलास पानी पिए। नींबू पानी, छाछ, नारियल पानी और ताजे फलों का जूस काफी फायदेमंद रहता है। मैंने फलों की भी अगर आपकी इच्छा है, वैसे खाने ही चाहिए, तरबूज, खीरा, संतरा और अन्य पानी से जो भरपूर फल होते हैं वे खाएं। कॉफी और चाय थोड़ा कम पिए, सोडे का सेवन भी कम करें। बाकी मस्त रहें, स्वस्थ रहें और आनंदित होकर आने वाले मातृत्व के सुख का एहसास करें।

तुझे सब पता है ना मेरी माँ, मैनू ये सृष्टि की एक अनमोल रचना है। एक माँ ही तो है जो बिन बताए सब कुछ जान लेती है, बताने की आवश्यकता नहीं है। पिता की डांट और माँ का दुलार, सृष्टि में आगे बढ़ने के लिए, इस दुनिया के माहौल को सजने संवारने के लिए, यही तो हमारे पथ के साथी हैं। चलिए अब बात को आगे लेके चलते हैं, क्योंकि माँ बहन विषय ही ऐसा है, इसकी जितनी भी हम बात करें उतना ही कम है। जितना भी महिमा मंडित करें उसके लिए शब्द की मंजरी कम पड़ जाएगी, लेकिन माँ की महिमा हम फिर भी बखान नहीं कर पाएंगे। आइए अब मौसम की कुछ अपडेट लेते हैं। गर्मी बहुत बढ़ गई है और इस मौसम में पानी की खपत ज़्यादा होती है। नहाना, कपड़े धोना, कूलर में पानी डालना, लेकिन इस मौसम में पानी की बचत करें कैसे? चलिए मिलकर विचार करते हैं कि कैसे और क्या करें इस गर्मी में जल की बचत हो सके। बढ़ती किल्लत को देखते हुए और अपनी कुछ आदतों को बदला जाए तो पानी की बचत हो सकती है। कोई बड़ी बात नहीं है और मुश्किल भी नहीं है बहनों। गर्मी शुरू होते ही पानी की किल्लत होना अब जैसे हर साल की समस्या सी बन गई है। यही नहीं, देश के कई हिस्से ऐसे भी हैं जहां पानी की समस्या हमेशा रहती है, फिर वो गर्मी हो या सर्दी। लेकिन गर्मी में दिक्कत ज़्यादा आती है, क्योंकि इस तपती गर्मी में पानी ही हमारी मदद करता है। कहीं कहीं तो ज़मीनी पानी का लेवल इतना कम है कि कई दिन पानी का इंतज़ार करना पड़ता है। लेवल कम होने की वजह से समर्सिबल पंप से भी पूरा पानी नहीं आ पाता। कुछ स्थानों पर ज़्यादातर जीवन बरसाती पानी पर ही निर्भर है। वहाँ के लोग बरसात के पानी को स्टोर कर लेते हैं और साफ करके पूरे साल भर प्रयोग में लाते हैं। मैंने हमने देखा है, आप लोग भी इसका अनुभव कर चुके होंगे,

दूर सुदूर गांवों में बड़े बड़े तालाब, बड़े कुएं आजकल पक्के बनाने लगे हैं, जिसमें कि पानी, बारिश का पानी स्टोर कर लेते हैं, फिर उसको जल, जो जल है उसका शुद्धिकरण करके वो घरों में जितना भी उपयोग होता है उस पानी को उपयोग करते हैं। लेकिन ज़्यादा जब दिक्कत होती है तो बहनों उसका हल क्या है? इस परेशानी का हल तो हमें ही करना है ना।

गर्मी में पानी की बचत कैसे करें? जब भी ब्रश करें या साबुन से हाथ धोएं तो नल को लगातार खुला न छोड़ें। इस आदत को आज ही बदल डालो बहनों। यदि आप ऐसा करते हैं तो कई लीटर पानी बच सकता है। बहनों अक्सर क्या होता है कि हम बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देते। बच्चे इस आदत से मजबूर होते हैं। ब्रश करना है, लगातार नल से पानी बह रहा है। उन्हें इस बात से कोई फिक्र नहीं कि पानी खत्म हो जाएगा या नहीं। इस बात का ध्यान हमें ही रखना होगा। और बर्तन धोते समय हमें ध्यान रखना होगा। कैसे? पहले बर्तनों को गीला कर लें ताकि जूठन आराम से निकल जाए, और फिर उन्हें साबुन से मांझ कर साफ पानी से धो लें। बहनों आजकल क्या है, अक्सर हर घर में कपड़े धोने के लिए मशीन आ चुकी है। वॉशिंग मशीन में आपको अंदाजा तो होता ही है कि कितना पानी लगने वाला है, तो कोशिश करें कि थोड़े थोड़े कपड़े रोज रोज ना धो के 2-3 दिन के, जब ज्यादा कपड़े इकट्ठे हो जाएं तब धो लें। बहनों इसके अलावा नहाते वक्त भी कई बार क्या होता है कि क्योंकि सुविधा की जब बात आती है तो हर घर में लगभग ये है कि शावर भी लग चुके हैं। शावर लगे हैं तो सीधी सी बात है पानी की भी वहाँ पे वेस्टेज होती है। ख्याल रखें कि पानी बेवजह ना गिरे। अब बात आती है पानी को स्टोर करने की। तो यदि आप नया घर बना रहे हैं तो पहले से ही इंजीनियर से इस बात के लिए बात कर लें कि वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम उसमें लग पाए। बहनों ये बहुत ही फायदेमंद सिस्टम है। वाटर हार्वेस्टिंग से क्या है कि नीचे घर के जो तला है उसमें एक स्टोरेज टैंक बन जाता है। ऊपर से जो पाइप आती है, बरसात का जो पानी है छत पे इकट्ठा होता है, वो सारा इस टैंक में इकट्ठा हो जाता है। फिर उसे उस जल में फिटकरी या जो जल शोधन डाल के उसको शुद्ध करके पानी को अपन रीयूज कर सकते हैं। इसके अलावा टंकी में स्टोर करें और उसे ढककर रखें ताकि उसमें मच्छर व गंदगी का प्रवेश ना हो सके। क्योंकि कई बार क्या होता है बहनों, बिना ढके जो पानी रहता है उसमें मच्छर का लार्वा पैदा हो जाता है। वो हमारी सेहत के लिए बेहद जो है खराब रहता है। बहनों इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर हम जल की बचत कर सकते हैं। क्योंकि किसी ने सच कहा है, जल है तो कल है।

खिलाने की। बात करते हैं खिचड़ी की। खिचड़ी भारत का अत्यंत लोकप्रिय पौष्टिक और सुपाच्य भोजन है, जो क्षेत्र के अनुसार अलग अलग तरीकों से बनाया जाता है, जैसे मूंग दाल की खिचड़ी। बहनों, ये सबसे आम और सुपाच्य खिचड़ी है, जो चावल, पीली मूंग दाल और घी से बनती है और हम अक्सर बनाते भी हैं। और ये इसके बारे में कहते हैं ना कि बीमार और स्वस्थ दोनों ही व्यक्ति इसको खा सकते हैं। वेजिटेबल मसाला खिचड़ी, इसमें गाजर, मटर, आलू, फूलगोभी, शिमला मिर्च और मसाले डालकर इसको बना सकते हैं। मटेरियल वही रहता है, चावल दाल, और उसमें आप सब्जियां डालकर उसको और पौष्टिक कर सकते हैं। गुजराती खिचड़ी नरम, पौष्टिक और अक्सर बिना सब्जी के या फिर कढ़ी के साथ परोसी जाती है। बंगाली खिचड़ी, हमने कहा था ना क्षेत्र के अनुसार अलग अलग तरीके से बनाई जाती है, बुलाई भी जाती है। बंगाली खिचड़ी ये भुनी हुई मूंग दाल और गोविंद भोग चावल से बनती है, जो बहुत ही सुगंधित और स्वादिष्ट होती है। राजस्थानी बाजरा खिचड़ी, भला किससे छानी है, मोठ बाजरा, थोड़े से चावल यदि आवश्यकता हो तो, इन सबका मिक्सचर करके आप खिचड़ी बना सकते हैं। अक्सर ये धीमी आंच पर बनती है। इसका लुत्फ लेने के लिए, इसके स्वाद को और बढ़ाने के लिए थोड़ा सा देसी घी यदि इसमें मिला लिया जाए तो फिर क्या कहने बाजरे की खिचड़ी की। सर्दियों का लाजवाब खाना है ये बाजरे की खिचड़ी। बिहारी खिचड़ी, ये उड़द की दाल व चावल से बनती है, जो घी, आचार और चोखा के साथ खाई जाती है। पोंगल दक्षिण भारत का प्रसिद्ध व्यंजन है, जो चावल, मूंग दाल और काली मिर्च से बनता है। पहनो, ये बात तो थी खिचड़ी की। अब बात आती है आपके और हमारे प्यार की। जब आपके पत्र आते हैं, जब आपके मैसेज आते हैं, तो हम समझ लेते हैं कि आप हमें बहुत प्यार करते हैं। लेकिन जब पत्र नहीं आते तो हम असमंजस में पड़ जाते हैं कि आखिर क्या चल रहा है, क्या आपका चुप रहना भी प्यार तो नहीं।

बेनू, घड़ी की सुइयां इजाजत नहीं दे रही कि आपके साथ और लंबी बात करती रहूं, इसलिए आज के लिए इतना ही। रजनी को दें आज्ञा, नमस्कार।

0: He becomes the first BJP Chief Minister of West Bengal, takes oath along with five cabinet ministers. Political stalemate continues for government formation in Tamil Nadu as TVK yet to reach the majority mark. National Legal Services Authority organizes National Lok Adalat across the country to provide amicable settlement of disputes. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar meets Prime Minister of Trinidad and Tobago to strengthen bilateral cooperation. And in IPL cricket, Rajasthan Royals to face Gujarat Titans in Jaipur this evening. For details of these stories and more, log on to our website www.newsoneir.gov.in and News on EIR app. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने उनके साथ पांच कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिरोध जारी टीवीके को अब तक बहुमत नहीं मिला राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री से मुलाकात की और जयपुर में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा अब समाचार विस्तार से शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बन गए हैं राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है भाजपा ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल आर एन रवि ने श्री शुभेंदु को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई एक रिपोर्ट
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित देश के कई मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री और राज्य के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया
3: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वरेर नामे शपथ करितेछि जे विधि द्वारा स्थापित भारतेर संविधानेर प्रति आमी अकृत्रिम निष्ठा ओ आनुगत्य पोषण करिब आमी भारतेर सार्वभौमत्व ओ अखंडता रक्षा करिब
2: शपथ ग्रहण की प्रक्रिया के अनुसार सबसे पहले शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली उसके बाद एक एक कर मंत्री के रूप में दिलीप घोष अग्निमित्रा पॉल अशोक कीर्तनिया खुदीराम टुडू और निशित प्रमाणिक ने शपथ ली आकाशवाणी समाचार कोलकाता से काशफिन नाहर
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा के शुरुआती दिनों के सबसे वरिष्ठ राज्य नेताओं में से एक 97 वर्षीय मक्खनलाल सरकार का आशीर्वाद लिया प्रधानमंत्री ने उन्हें गले लगाया और उनके पैर छुए मक्खनलाल सरकार भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सहयोगी थे इससे पहले प्रधानमंत्री ने ब्रिगेड ग्राउंड पहुंचने से पहले एक रोड शो किया प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी है सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कृषि अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में पहचान बनाई है प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को भी बधाई दी उन्होंने कहा कि इन नेताओं ने जमीनी स्तर पर अथक परिश्रम किया है और जनता की सेवा की है मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती उन्होंने कहा कि जो लोग अब भी नतीजों पर चर्चा कर रहे हैं उन्हें विवेक से काम लेना चाहिए उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में शिक्षा और संस्कृति को जो भारी नुकसान हुआ है उसे संवारने की जिम्मेदारी भाजपा पर है श्री अधिकारी ने कहा कि गुरुदेव की जयंती के शुभ अवसर पर पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया
4: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए बंगाल के लिए इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में कवि गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया
1: आज गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की 165वीं जयंती है इस अवसर पर शांति निकेतन विश्व भारती विश्वविद्यालय और बांग्लादेश सहित दुनिया भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित

आयोजित किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पौचिशे बैशाख के अवसर पर गुरुदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की। एक रिपोर्ट।

0: उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव टैगोर का योगदान साहित्य के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक था और आने वाली पीढ़ियों पर उनका अमिट प्रभाव रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे। श्री मोदी ने कहा कि गुरुदेव ने एक दार्शनिक, शिक्षाविद, कलाकार और भारत की सभ्यतागत आत्मा की शाश्वत आवाज के रूप में अपनी छाप छोड़ी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गुरुदेव ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत किया और भारत की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि गुरुदेव टैगोर ने साहित्य, संगीत और दर्शन के माध्यम से स्वतंत्रता की भावना को नई दिशा दी। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: संसद के सदस्यों, पूर्व सांसदों और लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने आज नई दिल्ली में संविधान सदन के केंद्रीय हॉल में गुरुदेव के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। लोकसभा सचिवालय ने कहा कि गुरुदेव टैगोर की रचनाओं ने देशवासियों में देशभक्ति की भावना को प्रेरित किया। तमिलनाडु में बहुमत हासिल नहीं करने के कारण नई सरकार के गठन में और देरी हो रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बेबी ने कहा कि राज्यपाल का ये कर्तव्य है कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। चेन्नई में उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यपाल केंद्र के इशारों पर काम कर रहे हैं। एक अन्य घटनाक्रम में अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल से अपनी पार्टी के विधायक द्वारा टीवीके को सौंपी गई समर्थन पत्र पर कार्यवाही की मांग की है। वीसीके पार्टी आज शाम 4 बजे टीवीके के साथ औपचारिक बैठक के बाद समर्थन के बारे में घोषणा करेगी। केरला में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा करेगी। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पारंपरिक संबंधों की सराहना की है। त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश तथा कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के समारोह में डॉ जयशंकर ने दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों और ऐतिहासिक जुड़ाव का उल्लेख किया।
0: भारत के त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ परंपरागत रूप से मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं और ये संबंध साझा इतिहास, उपनिवेश के खिलाफ हमारे संघर्ष और क्रिकेट के हमारे विशेष रिश्तों पर आधारित हैं। दोनों देशों के लोग पहनावे और खेलकूद से लेकर खानपान की आदतों और परंपराओं तक कई मामलों में एक दूसरे से समानता रखते हैं।
1: डॉक्टर जयशंकर ने प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर से मुलाकात में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। यात्रा के दौरान पर्यटन, विदेश और कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के भवन का सौर ऊर्जा से संचालन, विभिन्न परियोजनाओं और आयुर्वेद केंद्र की स्थापना सहित कई समझौतों पर सहमति बनी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि लोक अदालत में समझौता योग्य आपराधिक मामलों, चेक बाउंस और बैंक वसूली विवादों सहित कई प्रकार के मामलों की सुनवाई की जाती है।
2: आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पूरे देश में एक ही समय पे किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि न्यायालय में लंबित मामलों का बोझ कम किया जाए तथा जो मामले, जो विवाद न्यायालय में और प्री लिटिगेशन स्टेज पे लंबित हैं, उनको समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाए।
1: श्री पांडे ने बताया कि वर्ष 2023 से 2025 के बीच 12 राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन कर 26 करोड़ मामलों का निपटारा किया गया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को किफायती

0: वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 27 करोड़ से अधिक नामांकन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन हो चुके हैं और जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 21,500 करोड़ रुपए और पीएम सुरक्षा योजना के अंतर्गत लगभग 3,660 करोड़ रुपए के दावों का निपटारा किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। बाद में प्रधानमंत्री हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे पर गुडेबेलूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है। ये मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिन के इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र के रूप में बदल दिया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: सोमनाथ महादेव मंदिर में आज आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में आज से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से लगभग 1,25,000 आहुतियां अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सोमनाथ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत पर्व की आयोजन की समीक्षा की। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। हुरमुज जलडमरू मध्य के पास कल एक नौका में आग लगने से एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई और 4 अन्य झुलस गए। सरकारी सूत्रों ने बताया कि एक जहाज के चालक दल ने नौका में सवार लोगों को बचा लिया। घायलों का दुबई में इलाज चल रहा है और वे सुरक्षित हैं। आग लगने के कारण का पता लगाया जा रहा है। भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों ने बचाए गए भारतीय नागरिकों से मुलाकात की। दूतावास हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। पाकिस्तान मानवाधिकार परिषद ने देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में हाल में की गई वृद्धि की कड़ी निंदा करते हुए इसे जनता पर सीधा हमला बताया है। मानवाधिकार संस्था ने सरकार से मूल्य वृद्धि तुरंत वापस लेने और जनता को राहत प्रदान करने का आग्रह किया। परिषद ने परिवहन किराए और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में मनमानी वृद्धि पर रोक लगाने की भी मांग की। हिंद महासागर संवाद 10 कल नई दिल्ली में संपन्न हो गया। 2 दिन के इस आयोजन का विषय था परिवर्तनशील विश्व में हिंद महासागर क्षेत्र। संवाद में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं, विद्वानों और विशेषज्ञों ने हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय घटनाक्रमों और उभरती चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS नियुक्त किया गया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। उनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। इस बीच वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। आकाशवाणी की स्थापना के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पंजाब के जालंधर और पटियाला स्टेशन पर आज वॉकेथॉन का आयोजन किया गया। एक रिपोर्ट।
2: पंजाब में आकाशवाणी ने हरित क्रांति के दौरान एक अहम भूमिका निभाई है और आज भी कृषि पर विशेष रूप से तैयार किए गए कार्यक्रम के जरिए किसानों को जानकारियां उपलब्ध करवा रहा है। आज के वॉकथॉन के दौरान आकाशवाणी के श्रोताओं, पूर्व कर्मचारियों और अन्य लोगों ने FM स्टूडियो में एंकर्स द्वारा बजाए जा रहे बेहतरीन गानों के बीच सीधे प्रसारण के जरिए अपने अनुभव साझा किए। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के अपने आदर्शों पर खरा उतरते हुए यह राष्ट्रीय प्रसारक विभिन्न कार्यक्रमों और समाचार बुलेटिन के माध्यम से जानकारी, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करते हुए बीते 9 दशकों से देश की सेवा में तत्पर है। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: आकाशवाणी शिलांग में भी मैराथन का आयोजन किया गया। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से होगा। अंक तालिका में राजस्थान 4th और गुजरात 5वें नंबर पर है। अंत में मुख्य समाचार।

0: लगातार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने, उनके साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिरोध जारी, टीवीके को अब तक बहुमत नहीं मिला। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। और जयपुर में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: प्रस्तुत है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान की बात।
2: मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर, FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरत कड़ है। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 2:30:17 हुए हैं। लीजिए अब सुने कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं दीवाना फिल्म के इस गीत के साथ। इसे स्वर दिया है अलका याग्निक और कुमार शानू ने। इसके गीतकार हैं समीर और संगीत।

फिल्म संगीत का ये प्रोग्राम इस वक्त आप कॉटन सिटी चैनल सूरत कर से सुन रहे हैं। कार्यक्रम में लीजिए अब सुने गुप्त फिल्म का ये गीत। स्वर कुमार शानू और अलका याग्निक के हैं। इसके गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीत विजू शाह का।

श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम फिल्म संगीत मीडियम वेव 326.79 अर्थात 918 किलोहर्ट्ज पर, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। श्रोताओ, हमारे स्टूडियो

मीडिया में भी 1071 किलोहर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात। 3:05 हुआ चाहते हैं, कुछ ही लम्हों में खबरें नशर होंगी।

आकाशवाणी है। अब आप माजिद अली से खबरें सुनिए। शुभेंदु अधिकारी मगरबी बंगाल के बीजेपी के पहले वजीर आला बन गए हैं। उन्होंने 5 काबिनी उजरा के साथ हलफ लिया। चिली के वजीर खारजा फ्रांसिस्को परेज मैकेना का आज से भारत का दौरा शुरू हो रहा है। कानूनी खिदमात की कौमी अथॉरिटी तनाजात के बासानी हल के लिए पूरे मुल्क में लोक अदालत का इनेकाद कर रही है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने बाहमी तआवुन को मजबूत करने की गरज से त्रिनिदाद और टोबेगो की वजीर आजम से मुलाकात की और भारत की खवातीन की फुटबॉल टीम ने 17 साल तक की उम्र की AFC खवातीन एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार पहुंचकर तारीख रकम की है। अब खबरें तफसील से। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शुभेंदु अधिकारी को मगरबी बंगाल के बीजेपी के पहले वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया गया। उनके साथ 5 दूसरे काबिनी वजीरों ने भी हलफ लिया। इन वजीरों के नाम हैं दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक किर्तानिया, निशित प्रमाणिक और सुधीराम टुडू। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह, कई मरकजी वजीरों और बीजेपी की सरकार वाली रियासतों के वजराए आला ने हलफ बरदारी की तकरीब में शिरकत की। ब्रिगेड ग्राउंड पहुंचने से पहले वजीर आजम ने एक रोड शो भी किया। नागालैंड के वजीर आला नीफी रायो ने शुभेंदु अधिकारी को मगरबी बंगाल के वजीर आला के ओहदे का हलफ लेने पर मुबारकबाद दी है। जनाब रियो ने उनके और उनकी वजारती काउंसिल के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया है और कहा है कि वो कामयाबी के साथ अपने ओहदे की मुद्दत पूरी करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। दिन में लगभग 11 बजे वजीर आजम बेंगलुरु में द आर्ट ऑफ लिविंग के 45 साल पूरे होने की तकरीब में शामिल होंगे और आर्ट ऑफ लिविंग बैन अल-अक़वामी मरकज में नए तामीर किए गए ध्यान मंदिर का इफ्तिताह करेंगे। वजीर आजम प्रोग्राम के दौरान वहां मौजूद लोगों से खिताब भी करेंगे। इसके बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी हैदराबाद रवाना हो जाएंगे और तकरीबन 3 बजे हैदराबाद में कई तरक्याती प्रोजेक्टों की बुनियाद रखेंगे और उनका इफ्तिताह करेंगे, जिनकी मालियत 9,400 करोड़ रुपए बताई जाती है। सोमनाथ मंदिर की असरेनो तामीर के 75 साल पूरे होने के मौके पर सोमनाथ अमृत पर्व 2026 मनाया जा रहा है। इस 5 रोजा तकरीब के दौरान मंदिर की तारीखी अहमियत को उजागर किया जाएगा। इस तकरीब को यादगार बनाने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी पीर को सोमनाथ मंदिर के दर्शन करने जाएंगे। मवासलात के मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया कल अपने पार्लियामानी हल्के गुना का दौरा करेंगे। वहां अडानी सीमेंट प्लांट का संग बुनियाद रखेंगे। उनके साथ मध्य प्रदेश के वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव भी होंगे। दौरे के दौरान कई तरक्याती प्रोजेक्टों का भी इफ्तिताह किया जाएगा। ग्वालियर चंबल खित्ते में सीमेंट का यह पहला प्लांट होगा। अडानी ग्रुप ने गुना में लगभग 3,500 करोड़ रुपए की सरमायाकारी का ऐलान किया था और इसमें से 1,100 करोड़ रुपए के करीब सीमेंट प्लांट लगाने पर सर्व किए जाएंगे। चिली का वजीर खारजा फ्रांसिस्को पेरेज माकेना आज से इस महीने की 15 तारीख तक भारत का दौरा करेंगे। जनाब माकेना कल नई दिल्ली में एक प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। वो तिजारती तकरीबात में भी शिरकत करेंगे, जिनका एहतमाम पीर को भारत के खुराक के दरामदकारों के फोरम और SOCHM ने किया है। मंगल को वो तिजारत के वजीर पीयूष गोयल से बातचीत करेंगे और ताजिरों की एक तकरीब में शिरकत करेंगे, जिसका एहतमाम CII ने किया है। वो CII की सालाना तिजारती समिट 2026 में भी शिरकत करेंगे। बुध के रोज वो वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर से बातचीत करेंगे और इसके बाद वो भारत चिली तिजारती वफद के साथ एक मुश्तरका मीटिंग भी करेंगे। कानूनी खिदमात की कौमी अथॉरिटी NLSA आज पूरे मुल्क में दूसरी कौमी लोक अदालत 2026 का इनेकाद कर रही है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए NLSA के मेंबर सेक्रेटरी संजीव पांडे ने बताया कि शमूलियत और अवाम पर मरकूज तरीकों के जरिए तनाजात के बासानी निपटारे और अदालतों पर बोझ को कम करना इस इकदाम का मकसद है। उन्होंने बताया कि मुसालियत के काबिल मुजरमाना मामलात

तलत महमूद ने बहुत छोटी उम्र में ही गाना शुरू कर दिया था। 16 साल की उम्र में उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ से गजलों का प्रोग्राम आगाज किया। उनकी आवाज की इंफरादियत थी, उनकी मखमली आवाज जिसने लोगों को उनका गिरविदा बना दिया।

मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। सुबाई लोकगीतों के प्रोग्राम में आज सुनिए छोटी बानो नूर मोहम्मद लांगा, अफरोज बानो और साथियों के गाए राजस्थानी लोकगीत।

सूबाई लोकगीतों के प्रोग्राम में सामने भी आप सुन रहे थे छोटी बानू, मंगी बाई, अफरोज बानू और नूर मोहम्मद लांगा के गाए राजस्थानी लोकगीत। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। हमें आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 171 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआर और डीडी फ्री डिश पर। पेश खिदमत है फिल्मी नगमे। फिल्मी नगमों के आज के प्रोग्राम में लीजिए पहले समाप्त फरमाइए लता मंगेशकर और मिनी पुरुषोत्तम की आवाजों में दाग फिल्म का नगमा। नगमा निगार साहिल लुधियानी, मौसीकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

और समझ लीजिए, सुनिए एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ में देव कोहली का लिखाई गई, जिसे मौसीकी सजाए राम लक्ष्मण ने, फिल्म है मैंने प्यार किया।

आप सुन रहे थे कुमार सानू और अनुराधा पोडवाल की आवाजों में दाग फिल्म का नगमा, जिसे मौसीकी सजाया था राजेश रोशन ने। और सामने लीजिए, अब सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में एस डी बर्मन की मौसीकी सजाया नगमा फिल्म है इश्क पर जोर।

धर्मा फिल्म का नगमा आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और अरशद भोसले की आवाज में। मौसीकार थे सोनी कोमी। और सामने लीजिए सुनिए प्रोग्राम की अगली पेशकश किशोर कुमार की आवाज में धर्मात्मा फिल्म का नगमा। नगमा निकार इंदिवर, मौसीकार कल्याण जी आनंद जी।

अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता, मैं और मेरी तन्हाई।

ये रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है ये तुम्हारा कंगन, सितारे हैं ये तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है ये तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी ये खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं हो।

सिलसिला फिल्म के लगभग आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और अमिताभ बच्चन की आवाजों में, नगमानी गाते जावेद अख्तर, मौसीकार शिव हरी। और आज के प्रोग्राम की आखिरी पेशकश सूरज और चांद फिल्म का नगमा मोहम्मद रफी की आवाज में।

कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शुभेंदु अधिकारी को मगरबी बंगाल के बीजेपी के पहले वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया गया। उनके साथ पांच दूसरे काबिनी वजीरों ने भी हलफ लिया। इन वजीरों के नाम हैं दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक किरतानिया, निशित प्रमाणिक और खुदीराम टूडू। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह, कई मरकजी वजीरों और बीजेपी की सरकार वाली रियासतों के वजीरा आला ने हलफबरदारी की तकरीब में शिरकत की। ब्रिगेड ग्राउंड पहुंचने से पहले वजीर आजम ने एक रोड शो भी किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। दिन में लगभग 11 बजे वजीर आजम बेंगलुरु में द आर्ट ऑफ लिविंग के 45 साल पूरे होने की तकरीब में शामिल होंगे और आर्ट ऑफ लिविंग में बैनर अक्वामी मरकज में नए तामीर किए गए ध्यान मंदिर का इफ्तिताह करेंगे। वजीर आजम प्रोग्राम के दौरान वहां मौजूद लोगों से खिताब भी करेंगे। इसके बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी हैदराबाद रवाना हो जाएंगे और तकरीबन 3 बजे हैदराबाद में कई तरक्याती प्रोजेक्टों की बुनियाद रखेंगे और उनका इफ्तिताह करेंगे, जिनकी मालियत 9,400 करोड़ रुपए बताई जा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMJJBY और अटल पेंशन योजना APY को पूरे मुल्क के शहरियों की खिदमत में 11 साल मुकम्मल हो गए हैं। खजाने की वजारत ने बताया है कि सभी शहरियों, खासतौर से समाज के कमजोर तबकों को इकतसादी सहूलत देने के लिए इन स्कीमों का आगाज किया गया था। इन स्कीमों के बारे में बात करते हुए मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने बताया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना जैसी जन सुरक्षा स्कीमों का आगाज किया था ताकि कम कीमत पर इंश्योरेंस और पेंशन के फायदे हासिल किए जा सकें। हुकूमत ने वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन को बहरिया का अगला सरबराह मुकर्रर किया है। वजारत दिफा ने कहा है कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन इस वक्त मगरबी बहरिया की कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। एडमिरल की तकरीबन 4 दहाइयों की शानदार खिदमत है। भारतीय बहरिया में मुख्तलिफ अहदों पर रहते हुए उनका ऑपरेशनल स्ट्रेटजिक और जवानों से मुतालिक बंदोबस्त का काफी तजर्बा है। हुकूमत ने लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि को अगला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS मुकर्रर किया है। वजारत दिफा का कहना है कि लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणि अहदा संभालने की तारीख से अगले अहकाम तक फौजी उमूर के महकमे के सेक्रेटरी के तौर पर भी खिदमत अंजाम देंगे। रविन्द्रनाथ ठाकुर के 165वें यौम पैदाइश पर आज पोचिशे बोईशाख के मौके पर रविन्द्र जयंती मनाई जा रही है। पूरी दुनिया में सकाफती प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है और खास प्रोग्राम शांति निकेतन, विश्व भारती यूनिवर्सिटी समेत पूरे मगरबी बंगाल और बांग्लादेश में मुनाकिद किए जा रहे हैं। इन प्रोग्रामों में रविन्द्र संगीत, शायरी, रक्स और ड्रामे का इनेकाद किया जा रहा है। नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पोचिशे बोईशाख के मौके पर गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर को खराज अकीदत पेश किया। चिली के वजीर खारजा फ्रांसिस्को पेरेज माकेना आज से इस महीने की 15 तारीख तक भारत का दौरा करेंगे। जनाब माकेना कल नई दिल्ली में एक प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। वो तजारती तकरीबात में भी शिरकत करेंगे जिनका एहतमाम पीर को भारत के खुराक के दरामदकारों के फोरम और एसोचैम ने किया है। मंगल को वो तिजारत के वजीर पीयूष गोयल से बातचीत करेंगे और ताजिरों की एक तकरीब में शिरकत करेंगे जिसका एहतमाम CII ने किया है। वो CII की सालाना तिजारती समिट 2026 में भी शिरकत करेंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। कानूनी खिदमात की कौमी अथॉरिटी नालसा आज पूरे मुल्क में दूसरी कौमी लोक अदालत 2026 का इनेकाद कर रही है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए NALSA के मेंबर सेक्रेटरी संजीव पांडे ने बताया कि शमूलियत और अवाम पर मरकूज तरीकों के जरिए तनाजात के बआसानी निपटारे और अदालतों पर बोझ को कम करना इस इकदाम का मकसद है। उन्होंने बताया कि मुसालियत के काबिल मुजरिमाना मामलात, बैंकों के चेक वापस होने के मामलात और बैंक की रकम वसूल करने के तनाजात समेत इस लोक अदालत में बड़े पैमाने पर तनाजात निपटाए जा रहे हैं। उन्होंने मजीद बताया कि 2023 और 25 के दरमियान 12 कौमी लोक अदालतों का इनेकाद किया

0: गया जिसमें 26 करोड़ मामलात का निपटारा किया गया है। शुमाली श्रीलंका में कनके संथूरी थोराई और भारत में नागापट्टिनम के दरमियान चलने वाली एक मुसाफिर कश्ती को जुमे की रात को समंदर में कई घंटों तक रुकना पड़ा क्योंकि उसके इंजन में खराबी आ गई थी। इस कश्ती में 144 मुसाफिर सवार थे और नागापट्टिनम के साहिल से तकरीबन दो बहरी मील दूर कालार के पास इसके इंजन में खराबी आ गई। खबर मिली है कि अमेरिका की जनूबी कमान ने मशरक बहरुल काहिल में मुनशियात के धंधे में मुबैना तौर पर मुलविस एक कश्ती पर हमला करके उसे डुबो दिया। इस वाकये में दो अफराद मारे गए और एक जिंदा बच गया। एक मीडिया पोस्ट में अमेरिकी जनूबी कमान ने यह भी बताया है कि इस कश्ती के जरिए मुनशियात का धंधा करने में दहशतगर्द तंजीमें मुलविस हैं। खबरों में यह भी कहा गया है कि कार्रवाई के दौरान अमरीका के फौजी अमले को भी नुकसान पहुंचा है। आबनाए हुरमुज के करीब कल एक लकड़ी की छोटी कश्ती में आग लगने की वजह से एक भारतीय बाशिंदा हलाक और चार दीगर जख्मी हो गए। सरकारी जराये ने बताया कि करीब से गुजर रहे एक जहाज ने अमले के मेम्बरान को बचा लिया। जख्मियों का दुबई में इलाज चल रहा है और वो सही सलामत हैं। जराये ने मजीद बताया कि आग लगने की वजूहत का पता लगाया जा रहा है। भारतीय कौंसल खाने के अफसरान ने कल रात ही बचाए गए भारतीय बाशिंदों से मुलाकात की। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज भारत और त्रिनिदाद और टोबेगो के दरमियान रिवायती रिश्तों की तारीफ की। अपने दौरे के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने खारजी मामलात और त्रिनिदाद और टोबेगो के कैरिगोम मामलात की वजारत में परचम कुशाई के मौके पर खिताब किया। वजीर मौसूफ ने दोनों मुल्कों के दरमियान गहरे सकाफती रवाबित और तारीखी रिश्तों का जिक्र किया। डॉक्टर जयशंकर ने इस बात पर जोर दिया कि दोनों मुल्कों के दरमियान कपड़ों, खेलों और रिवायतों में यकसानियत पाई जाती है। डॉक्टर जयशंकर ने त्रिनिदाद और टोबेगो के वजीर आजम कमला प्रसाद विशेसर से भी मुलाकात की और बाहमी तआवुन को मजीद मजबूत करने के इकदाम के बारे में तबादला ख्याल किया। फुटबॉल में भारत ने पहली बार 17 साल से कम उम्र के ख्वातीन के एएफसी एशियन कप के क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करके तारीख रकम की है। भारत ने कल चीन के शहर सुझोव में अपने ग्रुप बी के फाइनल में लबनान को 4-0 से हराया। भारत के लिए प्रातिका बर्मन ने 7वें और 85वें मिनट में और देवी संजम ने 36वें और जोया ने 72वें मिनट में गोल किए। इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचने पर भारत 2026 के फीफा अंडर 17 खवातीन आलमी कप में अपनी जगह बना लेगा। और आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी मगरबी बंगाल के बीजेपी के पहले वजीर आला बन गए हैं। उन्होंने 5 काबिनी गुजरा के साथ हलफ लिया। चिली के वजीर खारजा फ्रांसिस्को परेज मकेना का आज से भारत का दौरा शुरू हो रहा है। कानूनी खिदमत की कौमी अथॉरिटी तनाजात के बासानी हल के लिए पूरे मुल्क में लोक अदालत का इनेकाद कर रही है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने बाहमी तआवुन को मजबूत करने की गरज से त्रिनिदाद और टोबेगो की वजीर आजम से मुलाकात की और भारत की खवातीन की फुटबॉल टीम ने 17 साल तक की उम्र की एएफसी खवातीन एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार पहुंचकर तारीख रकम की है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 1073 किलो हर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और डीडी फ्री डिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। सामिन शाम के 5 बजे चाहते हैं या हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर होती हैं।
2: मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम युववाणी।

युवाणी सुनने वाले सभी श्रोताओं को पुष्पेंद्र का नमस्कार। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं ऑनलाइन लर्निंग का बढ़ता प्रभाव, बातें रहेगी नई शिक्षा नीति और युवाओं पर, राजस्थान के लोक नृत्य, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे आज का इतिहास, वे एक सुनवाएंगे भेंट वार्ता।

आरएएस भर्ती 2024 में चयनित अभ्यर्थी वार्ताकार महेंद्र गोदारा व साहिल जुरासिया से नवीन सिसोदिया की बातचीत। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ।

0: निखार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: दोस्तों, समय के साथ आज के समय में शिक्षा का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। कभी किताबें और कभी ब्लैकबोर्ड की पढ़ाई का साधन एक लिमिटेड था, लेकिन आज मोबाइल फोन, लैपटॉप और इंटरनेट ने शिक्षा को नई दिशा दे दी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन लर्निंग का बढ़ता प्रभाव की। हमने देखा ही है कि कोरोना काल में ऑनलाइन शिक्षा ने लाखों विद्यार्थियों की पढ़ाई को रुकने नहीं दिया। गांव हो या शहर, बच्चे घर बैठे पढ़ाई करने लगे। और आज के समय में जहां अनेक एजुकेशनल ऐप्स ने शिक्षा को हर किसी की पहुंच में ला दिया है, जैसे YouTube है, Zoom है, Google Meet। दोस्तों, ऑनलाइन लर्निंग का सबसे बड़ा फायदा है सुविधा और समय की बचत। विद्यार्थी अपनी सुविधा के अनुसार कभी भी पढ़ सकते हैं। रिकॉर्डेड क्लासेस को बार बार देखकर कठिन विषयों को समझा जा सकता है। इसके अलावा ऑनलाइन शिक्षा ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को बड़ा ही आसान बना दिया है। आज छोटे शहरों के युवा भी बड़े शिक्षकों को सही से समझ देते हैं और बड़े शिक्षकों को बराबरी भी कर सकते हैं। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। लगातार मोबाइल और स्क्रीन देखने से आंखों पर असर पड़ता है। कई बार विद्यार्थी सोशल मीडिया में उलझ जाते हैं, और साथ ही इंटरनेट की कमी ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी समस्या तो है ही। इसलिए जरूरी है कि ऑनलाइन शिक्षा का सही और संतुलित उपयोग किया जाए। तकनीक तभी लाभदायक है जब वह ज्ञान और विकास का माध्यम बने। तो साथियों, ऑनलाइन लर्निंग ने शिक्षा के नए द्वार खोले हैं। अब यह हम युवाओं की जिम्मेदारी बनती है कि हम इसका सकारात्मक उपयोग करें और अपने सपनों को नई उड़ान दें।

0: जी हाँ दोस्तों, अभी आपने सुना भी है ये गीत, अंदाज क्यों हो पुराना। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब सुनवाते हैं भेंट वार्ता। आरएएस भर्ती 2024 में चयनित अभ्यर्थी वार्ताकार महेंद्र गोदारा व साहिल चुरासिया से नवीन सिसोदिया की बातचीत।
1: श्रोताओं नमस्कार। श्रोताओं, आरएएस भर्ती परीक्षा 2024 का परिणाम घोषित हुए अभी कुछ समय हुआ है और बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिन्होंने इसमें सफलता हासिल की है। उसी क्रम में हमने हमारे सूरतगढ़ क्षेत्र के आसपास जो भी विद्यार्थी परीक्षा में सफल हुए हैं उनके साथ साक्षात्कार किए हैं और उन्हें आकाशवाणी सूरतगढ़ के स्टूडियो में आमंत्रित किया है। उनसे जाना है कि किस प्रकार उन्होंने तैयारी की, क्या उनका सफर रहा और क्या मोटिवेशन वो आने वाली जनरेशन को दे सकते हैं। इसी क्रम में आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं ग्राम सिद्धवाला से साहिल जुरासिया और हमारे साथ उपस्थित हैं ग्राम माणकसर से महेंद्र गोदारा। आप दोनों का आकाशवाणी सूरतगढ़ के स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है।
2: धन्यवाद
3: धन्यवाद सर।
1: आप दोनों का सफर जो है आरएस की तैयारी का वो कैसा रहा उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले महेंद्र जी, आप अपने बारे में बताइए, आप और आपने जो अपनी शिक्षा है वो कहाँ से प्राप्त की।
2: सर, मैं सूरतगढ़ के निकट माणकसर गांव का निवासी हूँ और मेरी प्रारंभिक शिक्षा है वो सूरतगढ़ कस्बे से ही हुई है। उसके पश्चात मैंने ग्रेजुएशन भी यहीं से की है,
1: जी
2: सूरतगढ़ से ही।
1: ग्रेजुएशन में आपके

0: क्या विषय रहे?
1: सर, ग्रेजुएशन में मेरे पास संस्कृत साहित्य, हिंदी साहित्य और भूगोल सब्जेक्ट थे मेरे पास।
0: जी, क्या उस समय आपके मन में थे कि मुझे प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी करनी है?
1: सही कहूँ तो सर, मैं पटवारी लगने के बाद में जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके टच में आया, तो उसके बाद मेरे में ये जुनून जागा कि मुझे RS अधिकारी बनना
0: पटवारी आप कब बने?
1: है। सर, मैं 2017 में पटवारी बना।
0: अच्छा, तब आपने देखा प्रशासन में जाकर कि किस प्रकार प्रशासन काम करता है, और आप अगर बड़े ओहदे पर होंगे तो आप कितना अच्छा काम और कर सकते
1: जी
0: हैं।
1: सर,
0: हम आपका मोटिवेशन फिर उसी को माने।
1: जी सर।
0: उससे पहले आपने क्या सोचा करियर के बारे में कि आप क्या बनेंगे?
1: सर, पहले मेरा ये था कि मैं एक अध्यापक बनूंगा और बच्चों को पढ़ाना भी मुझे अच्छा लगता है, तो अभी भी मैं समय मिलता है तो मैं पढ़ाना जारी रख रहा हूँ। और सर, लेकिन पटवारी लगने के बाद में मुझे ये एहसास हुआ कि जो प्रशासनिक पद है उनकी जो गरिमा है, उनमें जो व्यक्ति कार्य कर सकता है समाज के लिए और अधिक लोगों को हाथों हाथ जो लाभ दे सकता है, उनके जीवन को संवारने में जो वो हेल्प कर सकता है।
0: जी साहिल जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका जो सफ़र रहा शिक्षा का, आपने कहाँ से पढ़ाई की, 10वीं 12वीं या फिर ग्रेजुएशन की हम बात करें, और आप मुख्यतः किस गांव से हैं?
2: जी सर, मैं सूरतगढ़ तहसील के गांव सिद्धवाला का निवासी हूँ।
0: जी
2: मेरी शिक्षा जो है ग्रामीण स्तर पर संपन्न हुई। मेरी ग्रेजुएशन है वो सूरतगढ़ से और पोस्ट ग्रेजुएशन भी सूरतगढ़ से कंप्लीट हुई। ग्रेजुएशन मेरी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स विषय में है और
0: जी
2: पोस्ट ग्रेजुएशन है वो फिजिक्स विषय में है।
0: तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तो सामान्यतः वो लोग लेते हैं जिनको अलग क्षेत्र का चुनाव करना होता है। आपने RS में आना कब सोचा फिर?
2: सर, RS में आना सोचा, मेरे पिताजी पुलिस में हैं
0: जी
2: तो उनके साथ कई बार बड़े अधिकारियों से के साथ मिलना हुआ था मेरा, तो उनसे मिला तब ये एक मोटिवेशन जागा भी। उनका जो एक ओहदा होता है, जो उनकी रिस्पेक्ट होती है या जो उनका समाज में योगदान होता है, उसको जब समझा, उसको जाना, तो ये एक मोटिवेशन मेरे अंदर भी जागा कि होना हो कल को बनना अधिकारी है।
0: और आपने कौन से सन में तैयारी इसकी चालू की?
2: जी सर, 2021 में मैं फाइनल ईयर में था ग्रेजुएशन में, तो उस वक्त मैंने अपीयरिंग में फॉर्म भरा था और अपीयरिंग में फॉर्म भर के मैंने अपने स्तर पर तैयारी शुरू की सूरतगढ़ आकर।
0: जी
2: और जब फॉर्म दिया तो एग्ज़ाम दिया मैंने। एग्ज़ाम देने में थोड़ा बहुत ज़्यादा बढ़िया मेरी परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन कट ऑफ क्लियर हो गई थी,
0: अच्छा।
2: तो मैंने कहा चलो आगे तैयारी करते हैं। फिर मेंस की तैयारी लग गया, जी तोड़ मेहनत की, मेंस क्लियर भी हुआ, इंटरव्यू तक पहुंचा, लेकिन किसी कारणवश रैंक मेरी बहुत बढ़िया नहीं रही। 2021 वाली भर्ती में मेरी रैंक 984 रैंक, तो उसमें कोई पोस्ट अलॉटमेंट नहीं हुई,
0: जी
2: लेकिन ये हो गया अभी हाँ कर सकते हैं, एक जुनून आ गया खुद में। तो फिर मैंने 2023 की भर्ती आई, उसमें तैयारी शुरू की, उसमें पूरे जुनून से तैयारी की, प्री भी पास हुआ, मेंस भी हुआ, इंटरव्यू भी दिया, लेकिन उसमें रैंक आई मेरी 549,
0: जी
2: तो थोड़े बहुत आधा एक नंबर से मैं उसमें रह गया और पोस्ट अलॉटमेंट नहीं हुई। और फिर 2024 की भर्ती थी, जो वैसे तो ये 2023 और 24 की भर्ती साथ साथ चल रही थी,
0: जी
2: इनमें ज़्यादा गैप नहीं था, तो जब तक उसका रिजल्ट आया था तब तक मेंस हो चुका था 2024 का, और उसका रिजल्ट भी आ चुका था, तो मेंस भी क्लियर हो गया था। फिर इसका इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू अच्छा हो गया, और इस बार ईश्वर की कृपा से, माता पिता के आशीर्वाद से 93 मेरी रैंक बनी है सर।
0: काफी अच्छी रैंक आपके। क्या उम्मीद है आपको, कौन सी सर्विस अलॉट हो जाएगी?
2: उम्मीद है सर, DYSP।
0: जी, आपने जो तैयारी की वो स्वयं की या किसी कोचिंग की हेल्प से की, या फिर किस प्रकार की आपने?
2: सर, मूलतः मेरी तैयारी सेल्फ स्टडी रही है सर।
0: जी
2: वैसे 2021 की जब मैंने की थी तो 3-4 महीने मैंने थोड़ा मार्गदर्शन लिया था सूरतगढ़
0: जी
2: से।
0: जी बिल्कुल जरूरी होता है कई बार मार्गदर्शन भी।
2: जी सर,
0: और आपने जो तैयारी की थी, उस तैयारी के बारे में हम जानना चाहेंगे, क्या स्ट्रेटजी आपने उसमें अपनाई थी?
2: सर स्ट्रेटजी ये रही थी कि एक तो सिलेबस पर फोकस रखा जाए,
0: जी
2: फालतू चीज़ें से पढ़ने से अच्छा है वो चीज़ें पढ़ो जो आपके काम की है, जो एग्जामिनर पूछ रहे हैं। एग्जाम पेपर देखो कैसे आ रहे हैं, सिलेबस के पॉइंट्स देखो,
0: जी
2: उसमें कौन कौन सा मटेरियल है जो आपको बेस्ट आउटपुट दे सकता है। फिर आउटपुट देखो सब्जेक्ट्स का, भी कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा आउटपुट दे रहा है कम टाइम में, उन पर ज़्यादा
0: जी
2: फोकस किया जाए। और मेंस में जैसे कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो प्री में नहीं होते, लेकिन उनका आउटपुट मेंस में काफ़ी ज़्यादा होता है, वो काफ़ी स्कोरिंग होते हैं, तो उन सब्जेक्ट पर ज़्यादा पकड़ बनाई।
0: जैसे ऐसे कौन से सब्जेक्ट हैं?
2: जैसे कि सर एथिक्स हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, मैनेजमेंट है, अकाउंटिंग है, और उसके अलावा हिंदी इंग्लिश एक ऐसा पोर्शन है जो मेंस में आता है और काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग होता है
0: जी
2: और जो सिलेक्शन काफ़ी डिसाइड करता है।
0: इसका सिलेबस तो हम जानते हैं कि काफी वृहद है,
2: जी सर,
0: तो इसके पूरे सिलेबस को आप कवर करते हैं कि आपने कुछ चीजें छोड़ी भी थी इसमें?
2: नहीं छोड़ तो सर नहीं सकते क्योंकि कंपटीशन इतना हार्ड है, तो छोड़ के जाना तो कोई चांसेस नहीं है। हाँ, लेकिन जो ऐसे सब्जेक्ट हैं जैसे हिस्ट्री है, जो काफ़ी ज़्यादा उसका सिलेबस है लेकिन उसका आउटपुट उतना नहीं है, उसका वेटेज इतना नहीं है मार्क्स में, तो उस पर थोड़ा कम फोकस किया। लेकिन ऐसे सब्जेक्ट जैसे मैंने बताया आपको, एथिक्स हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, इनका सिलेबस थोड़ा कम है और मार्क्स का जो वेटेज है वो ज़्यादा है, तो इन पर ज़्यादा फोकस किया।
0: साहिल, आपकी जो बैकग्राउंड की बात करें तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स के स्टूडेंट रहे हैं, 11वीं में आपने, 12वीं में, उसके बाद ग्रेजुएशन, इवन आपने पोस्ट

0: ग्रेजुएशन भी फिजिक्स में की है, वहां से पूरा शिफ्ट एक तरह से देखा जाए तो किस तरह मैनेज किया आपने इसको?
1: सर वैसे जब मैंने ग्रेजुएशन शुरू की थी तो तभी मेरा हो गया था अभी तैयारी करनी सिविल सर्विसेज की है। साइंस मैंने इसलिए ली क्योंकि मैंने कुछ बच्चों को कुछ जो पहले सिलेक्टेड थे या जो तैयारी कर रहे हैं उनसे बातचीत की तो उनका यही था भी यार साइंस हमारी कमज़ोर रहती है
0: जी
1: और एक इंग्लिश हमारी कमज़ोर रहती है। तो इंग्लिश में मैं बाय लक मेरी स्टडी हुई है वो इंग्लिश मीडियम में हुई थी और साइंस मैंने बैकग्राउंड रखा। हालांकि बहुत से स्टूडेंट्स हैं वो आके आर्ट्स में शिफ्ट हो जाते हैं जो सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, लेकिन मैंने नहीं छोड़ी और साइंस का मुझे बेनिफिट मिला है इस बार, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला 2024 की भर्ती है इसमें।
0: जी, आपको जो साइंस से संबंधित सवाल थे वो अच्छे से आप उनको जान पाए,
1: जी सर
0: यही फायदा है या इसके अलावा भी कोई फायदे हैं?
1: मूल फायदा सर पेपर में तो यही फायदा हुआ सर क्योंकि फिजिक्स के काफ़ी सवाल थे इसमें मेंस में और
0: जी
1: उन्हें काफ़ी बढ़िया से हैंडल कर पाया और मेरा स्कोर भी सेकंड जो पेपर है उसमें काफ़ी बढ़िया रहा।
0: जी महेंद्र जी, आपसे हम जानना चाहेंगे किस प्रकार आपने जो तैयारी शुरू की उसमें, जैसा कि हमने आपसे भी बात की थी 2018 में, आप इंटरव्यू तक गए थे क्या?
2: नहीं सर, मेंस लिखा था, इंटरव्यू
0: मेंस
2: कॉल
0: आपने
2: नहीं
0: लिखा
2: हुआ।
0: था 2021 का?
2: 2018 की वैकेंसी का मेंस लिखा था, 21 का भी मेंस लिखा था, लेकिन इन दोनों वैकेंसीज में इंटरव्यू कॉल नहीं हो पाई थी।
0: जी, इसके बाद आपने 2023 की वैकेंसी में 765वीं रैंक हासिल की, और इस बार आपका 2024 की जो सिलेक्शन हुआ उसमें कौन सी रैंक आपको मिली है?
2: सर इसमें 273वीं रैंक है
0: जी,
2: मेरी।
0: आप अपनी तैयारी के बारे में बताइए, हमारे जो भी श्रोता हमें सुन रहे हैं, जो छात्र हैं जो तैयारी करना चाहते हैं, किस प्रकार आपने तैयारी की?
2: जी सर, सिविल सर्विस की तैयारी है उसमें धैर्य की सबसे बड़ी आवश्यकता होती है, और धैर्य की सबसे बड़ी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि ये जर्नी इस प्रकार की है कि इसमें आप कभी प्री में फेल हो सकते हो, कभी मेंस में जाके आप असफल हो सकते हो, और कभी इंटरव्यू में आपके उतने अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं
0: जी
2: जितना आप कल्पना करते हो। तो इस प्रकार की जर्नी है कि इसमें हमेशा आपको धैर्य रखना होता है, और सबसे ज़रूरी बात कि निरंतरता इसमें आवश्यक है। आप एक दो अटेम्प्ट अच्छे से दे लो और फिर आप वापस ये सोच के कि नहीं हो रहा है तो मैं किसी और वैकेंसी की तैयारी कर लूँ या मैं बाद में देखूँगा, तो ये थोड़ा मैं मानता हूँ कि गलत चीज़ है। अगर सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो तो जो निरंतरता है वो ज़रूरी है।
0: महेंद्र जी, आपने बताया कि निरंतरता बहुत ज़रूरी है, लेकिन ऐसा होता है कि कुछ लोग इस निरंतरता में फंसे रह जाते हैं और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, तो उनके पास फिर कोई दूसरा रास्ता क्या बचता है?
2: नहीं सर, ऐसे बराबर में अगर कोई दूसरी वैकेंसी जो रोजगार के लिए देख रहे हैं तो वो वैकेंसी वो दे सकते हैं। और जैसे कि मैं स्वयं ही पटवारी के रोजगार में अभी वर्तमान में कार्यरत हूँ पटवारी पद पे,
0: जी
2: मैं मानता हूँ कि अगर मैं पटवारी नहीं होता और सीधा अगर मैं बेरोजगार होता मैं ज़्यादा मुश्किलों का सामना मुझे करना
0: बिल्कुल,
2: पड़ता सर।
0: लेकिन आप अब पटवारी हैं तो आप अपनी जॉब के साथ इस तैयारी को किस प्रकार मैनेज कर पाए?
2: मैं मानता हूँ कि पटवारी के साथ तैयारी करना अपेक्षाकृत मुश्किल है, जैसे कि टीचर के साथ आपको समय थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है,
0: जी
2: तो पटवारी एक ऐसी जॉब है कि जिसमें 24/7 की जॉब आपके पास रहती
0: जी
2: है,
0: फील्ड जॉब भी है।
2: फील्ड जॉब भी है और बर्डन भी बहुत ज़्यादा रहता है, कॉल भी अटेंड करनी पड़ती है आपको बार बार, तो
0: जी
2: इससे जो डिस्ट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा रहता है। तो मैं मानता हूँ कि मुझे थोड़ा ज़्यादा समय लगा और मैंने कोशिश ये की कि जितना समय मैं जॉब के अलावा अपना दे सकता हूँ पढ़ाई के लिए उतना समय मैंने दिया सर इसके लिए।
0: कितना समय आप दिन में निकाल लेते थे पढ़ने के लिए?
2: सर मैं जॉब के अलावा मेरा एक ही ध्येय रहता था कि जितना मैं समय पढ़ाई के लिए और अपने सिलेबस के लिए और जो आरएस की वैकेंसी है उसके लिए निकाल सकूं तो बेहतर रहेगा, क्योंकि जो जॉब है वो इस प्रकार की थी कि कई बार निरंतर भी काम आ जाते थे तो पढ़ाई बीच में छूट भी जाती थी सर।
0: जी बिल्कुल, हम आपसे ये जानना चाहेंगे जब आप इंटरव्यू में पहुंचे थे पैनल के सामने, आपसे किस प्रकार के सवाल पूछे गए?
2: सर जैसा कि मैं पटवारी पद पर कार्यरत था तो मुझसे पटवारी पद से संबंधित प्रश्न पूछे गए, जैसे कि एक प्रश्न ये पूछा गया कि कहावत प्राचीन समय से प्रचलन में रही है कि ऊपर करतार है और नीचे पटवारी, ने पटवारी के पद को बहुत अच्छा समझा जाता है ग्रामीण
0: जी
2: क्षेत्र में। इसके अतिरिक्त हिंदी जो मेरे बीए में सब्जेक्ट था जियोग्राफी थी उससे और कुछ करंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे।
0: जी कोई रोचक आपको सवाल याद हो जो आपको पूछा गया हो?
2: मेरे हिंदी मेरे पास ग्रामर से संबंधित संधि और समास में अंतर पूछ के उसको आज के समय और प्राचीन समय के विवाह संस्था से जोड़कर पूछा गया था कि आज की विवाह संधि या समास है या पहले की विवाह है वो संधि या समास है, तो ये मैं मानता हूँ कि रोचक प्रश्न भी था और आज के समय में जिस प्रकार विवाह संस्था है वो मैं मानता हूँ कि कुछ मायनों में जो थोड़ी बहुत खतरा महसूस हो रहा है विवाह संस्था को, तो उससे संबंधित ये रोचक प्रश्न था।
0: जी, बहुत ही अच्छा सवाल आपसे पूछा गया, और इसी क्रम में साहिल जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका इंटरव्यू कैसा रहा?
1: सर मेरा इंटरव्यू जो था उस दिन

0: चैत्र शुक्ल प्रतिपदा थी जो कि
1: जी।
0: हमारा राजस्थान दिवस है, तो काफी जो इंटरव्यू का फोकस था वो राजस्थान पर रहा था। राजस्थान की हिस्ट्री ज्योग्राफी से काफी मेरे सवाल पूछे गए थे। उसके अलावा कुछ सिचुएशनल क्वेश्चन मेरे से पूछे गए कि आप यदि फील्ड में हो तो आप क्या करोगे, जैसे
1: जी।
0: किसानों की समस्याओं को कैसे हल करोगे, किसानों की आय कैसे बढ़ाएंगे, इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। बाकी
1: जी,
0: ज्यादा फोकस था वो राजस्थान पर ही रहा था उस दिन।
1: क्योंकि राजस्थान दिवस था उस दिन जिस दिन
0: हाँ
1: आपका
0: जी सर,
1: इंटरव्यू था।
0: हाँ जी, हाँ जी सर।
1: साहिल जी, बातें तो हमने काफी की, लेकिन जाने से पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, जो विद्यार्थी, जो श्रोता आपको सुन रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है?
0: मेरा संदेश यही है कि एक तो आप जो भी फील्ड की तैयारी करो उसके बारे में पहले अच्छे से जानकारी लो,
1: जी
0: जो उसका एंट्रेंस का जो प्रोसीजर है उसके बारे में हर एक बारी की आपको पता हो, आपको एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसका सिलेबस आपको पता हो, एक पूरा प्लान बना के तैयारी शुरू करो और उस प्लान को फॉलो करो। दूसरा है, जैसे सिविल सर्विसेज की बेसिकली मैं बात करूं तो जैसा महेंद्र जी ने कहा कि धैर्य की आवश्यकता है,
1: बिल्कुल
0: और धैर्य के साथ साथ मैं मानता हूँ साहस की भी आवश्यकता है, क्योंकि इसमें कई बार आपको टूटना भी पड़ सकता है,
1: बिल्कुल
0: तो उस टूट के दोबारा उठने की साहस की भी इसमें आवश्यकता पड़ेगी।
1: जी। महेंद्र जी, हम आपसे भी यही जानना चाहेंगे कि जो भी श्रोता आपको सुन रहे हैं, छात्र आपको सुन रहे हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है उनको मोटिवेट करने के लिए?
2: सबसे महत्वपूर्ण जो सिविल सर्विस की तैयारी के लिए, जैसा मैंने पहले बताया कि धैर्य की जरूरत, इसमें साहिल जी ने ये जोड़ा साहस, तो छात्र जो तैयारी कर रहे हैं उनको यही संदेश देना चाहूँगा कि ये इस प्रकार का एग्ज़ाम है, इसके लिए आप सबसे पहले अपने मन को कठोर करके और जो दृढ़ता आपको रखनी है कि किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, सिलेबस को अच्छे से रीड आउट करना है, और बहुत अच्छी तरीके से अगर आपने ठान लिया है कि मुझे इस सर्विस के अंदर जाना है, तो आपको पूर्णता निष्ठा से तैयारी करनी है, आपको किसी भी प्रकार जो डिस्ट्रैक्शन में नहीं आना है, और अच्छी प्रकार से आपको निरंतर दिन रात मेहनत करनी है। बस यही मेरा सभी विद्यार्थियों को कहना।
1: जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने। साहिल जी, महेंद्र जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे श्रोताओं को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: थैंक यू सर,
0: धन्यवाद सर।
3: अभी आपने सुनी भेंट वार्ता आरएएस भर्ती 2024 में चयनित अभ्यर्थियों से, महेंद्र गुदारा व साहिल जुरासिया से नवीन सिसोदिया की बातचीत। आइए सुनवाते हैं गीत, फिर करेंगे और भी आपसे ढेर सारी बातें।

दोस्तों, भारत सरकार द्वारा लागू की गई शिक्षा नीति यानी NEP 2020 शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। इसका उद्देश्य केवल डिग्री देना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों को कौशल, रोजगार और जीवन के लिए तैयार करना है। नई शिक्षा नीति में नया शैक्षिक ढांचा लागू किया गया है। इसमें बच्चों की शुरुआती शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस नीति की सबसे खास बात है कि स्किल डेवलपमेंट यानी कौशल विकास। अब विद्यार्थी पढ़ाई के साथ साथ संगीत, खेल, कंप्यूटर, कोडिंग और कमर्शियल शिक्षा भी सीख सकेंगे। युवाओं के लिए ये नीति इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अब उन्हें केवल रटने पर नहीं, बल्कि क्रिएटिविटी और प्रैक्टिकल नॉलेज पर ध्यान देना होगा। नई शिक्षा नीति में मातृभाषा में पढ़ाई को भी बड़ा बढ़ावा दिया गया है। और हालांकि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को काफी लाभ भी मिलेगा। इसके अलावा कॉलेज शिक्षा में कई एंट्री और एग्जिट विकल्प दिए गए हैं, यानी यदि कोई विद्यार्थी बीच में पढ़ाई छोड़ता है तो उसका वर्ष खराब नहीं होगा। हालांकि चुनौतियां भी हैं, जैसे सभी स्कूलों में संसाधनों की उपलब्धता और शिक्षकों का प्रशिक्षण। लेकिन यदि ये नीति सही तरीके से लागू होती है तो ये भारत के युवाओं को विश्व स्तर पर एक नई पहचान दिला सकता है। दोस्तों, नई शिक्षा नीति केवल बदलाव नहीं, बल्कि युवाओं के भविष्य को मजबूत बनाने का प्रयास है। आइए हम सभी इस परिवर्तन का हिस्सा बने और नई शिक्षा को नई दिशा दें।

दोस्तों, राजस्थान अपनी वीरता, संस्कृति और रंग बिरंगी परंपराओं के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ के लोक नृत्य राजस्थान की आत्मा माने जाते हैं। सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है घूमर। घूमर मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है, रंग बिरंगे घाघरे और मधुर संगीत इसकी मधुरता को और बढ़ा देते हैं। इसके अलावा कालबेलिया नृत्य भी विश्व प्रसिद्ध है। यह नृत्य कालबेलिया समुदाय द्वारा किया जाता है। इसकी लचक और तेज गति दर्शकों को हमेशा मंत्रमुग्ध कर देती है। और हां, यूनेस्को ने भी इसे विशेष सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया है। राजस्थान का भवाई नृत्य भी बेहद अद्भुत है, जिसमें महिलाएं सिर पर कई मटके रखकर संतुलन बनाते हुए नृत्य करती हैं। चरी नृत्य में सिर पर जलती हुई चरी रखकर महिलाएं नृत्य करती हैं, वहीं गैर नृत्य मुख्य रूप से पुरुषों द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है। दोस्तों, लोक नृत्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि हमारी संस्कृति और परंपरा की पहचान है। ये नृत्य हमें अपनी जड़ों से जोड़ते हैं। आज जरूरत है युवा पीढ़ी इन लोक कलाओं को सीखे और आगे बढ़ाएं, ताकि हमारी संस्कृति धरोहर सुरक्षित रह सके। राजस्थान के लोक नृत्य हमारी संस्कृति के रंग हैं, जो दुनिया को हमारी परंपरा और कला से परिचित कराते रहते हैं।

दोस्तों, किसी भी समाज की प्रगति तब तक संभव नहीं है जब तक बेटियों को समान अधिकार और सम्मान नहीं मिलता। इसकी सोच के साथ भारत सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को शुरू किया और इस अभियान का उद्देश्य है बेटियों की सुरक्षा, शिक्षा और सशक्तिकरण। इस अभियान का उद्देश्य है बेटियों की सुरक्षा, शिक्षा और सशक्तिकरण। और जहां आज बेटियां हर क्षेत्र में देश का नाम रोशन कर रही हैं, चाहे विज्ञान हो, खेल हो, सेना हो या प्रशासन, वो इसी की वजह से है। लेकिन समाज में आज भी कई जगह बेटियों को बोझ समझा जाता है। बाल विवाह, शिक्षा से वंचित रखना और भेदभाव जैसी समस्याएं अभी भी हमारे समाज में मौजूद हैं। शिक्षा ही वही शक्ति है जो बेटियों को आत्मनिर्भर बनाती है। जब एक बेटी पढ़ती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना, छात्रवृत्तियां और निशुल्क शिक्षा योजनाएं। लेकिन केवल सरकार के प्रयास काफी नहीं है दोस्तों, समाज और परिवार को भी अपनी सोच बदलनी होगी। हमें बेटियों को अवसर देना होगा, उनका आत्मविश्वास बढ़ाना होगा और उन्हें अपने सपनों को पूरा करने की आजादी देनी होगी। याद रखिए, बेटी है तो भविष्य है। आइए हम सब मिलकर बेटियों को सुरक्षित, शिक्षित और सशक्त बनाएं।

दोस्तों, युवाणी के आज के अंतिम पड़ाव में अब समय है आज का इतिहास जानने का। आइए जानते हैं 9 मई को इतिहास में दर्ज कुछ प्रामाणिक और महत्वपूर्ण घटनाएं। आज के दिन 9 मई 1866 को महान समाज सुधारक और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। उन्हें महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु माना जाता है। आज ही के दिन 1874 में भारत के मुंबई शहर में पहली बार घोड़ों द्वारा खींची जाने वाली ट्राम सेवा शुरू हुई थी। यह भारत के सार्वजनिक परिवहन इतिहास की महत्वपूर्ण शुरुआत थी। आज ही के दिन 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सोवियत संघ ने नाजी जर्मनी पर विजय की घोषणा की और इसी दिन को रूस

सहित कई देशों में विक्ट्री डे के रूप में मनाया जाता है। और आज ही के दिन 9 मई 1994 को दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला देश के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। यह रंगभेद के खिलाफ संघर्ष की ऐतिहासिक जीत मानी जाती है। तो साथियों, इतिहास हमें साहस, संघर्ष और बदलाव की प्रेरणा देता है। इसी प्रेरणा के साथ हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए।

अभी आप कार्यक्रम युवाणी सुन रहे थे। मीडियम वेव 326.7 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। अब सुनिए हमारे आज के शेष कार्यक्रमों का विवरण।

6:30 पर आप सुन सकेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिसे हम रिले करेंगे हमारे जयपुर केंद्र से। 6:40 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम जिले की चिट्ठी। 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार रहेंगे। शाम 7 बजे आप सुन सकेंगे कार्यक्रम चुपाल। कार्यक्रम के अंतर्गत जानकारी रहेगी मित्र कीटों का बचाव कैसे करें, बीज खरीदारी करते समय सावधानियां, हरी खाद के लिए ढेंचा की खेती, इसके अलावा बाजार भाव व मौसम की जानकारी। और आज का कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा राजन मुदकल के द्वारा।

शाम 7:45 पर आप सुन सकेंगे फिल्मी भक्ति संगीत। रात्रि 8 बजे कार्यक्रम रहेगा एक ही फिल्म से। 8:30 पर कार्यक्रम स्पोर्ट स्कैन। रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या। रात्रि 9 बजे न्यूज एट 9। रात्रि 9:15 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत।

रात्रि 9:30 पर आप सुन पाएंगे राष्ट्रीय संस्कृति पत्रिका संस्कृत भारती हमारे दिल्ली केंद्र से। रात्रि 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से। तो ये था हमारे आज के शेष कार्यक्रमों का विवरण। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। आप हमें सुन सकते हैं डीआरएम बैंड 909 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर।

0: हम आकाशवाणी
1: सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलो हर्ट्स पर शाम के 6:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सिराय की।

ऑल इंडिया रेडियो दा सराइकी प्रोग्राम है। मैं हरजीत कौर हाजिर हाँ तुहाडे कीते अज दा प्रोग्राम घिन के कुछ बातां कुछ गीत। इस विच असां तुहाडे नाल गल्लां भी करे सां ते पंजाबी गीत भी सुनवे सां। सब तो पहला तुहाकों एक गीत सुनवे सां। गीत हंसराज हंस की आवाज विच है। सिल्ली सिल्ली आउंदी ए हवा किते कोई रोंदा होवेगा।

ए हाई प्रकाश कौर ते सुरिंदर कौर तक आया कीत। सुनना ना लियो, आजकल साइबर फ्रॉड बहु वधेंदे पए हैं। तुसा सुनया हो सी के इंदे खाते चू 40,000 रुपये निकल गए। उन्हाने ऑनलाइन काम करेंदे होए 2 लाख

अभी आप कार्यक्रम सिराय की सुन रहे थे। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसे हम अपने जयपुर केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

उपचार प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और प्रदेश में ज्यादातर स्थानों पर तेज गर्मी का असर, अगले कुछ दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी की संभावना। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश भर में आज राष्ट्रीय लोक अदालतें लगाई गईं, जिनमें बड़ी संख्या में मामलों का आपसी सहमति से निस्तारण किया गया। राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक

0: मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने उच्च न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का विधिवत शुभारंभ किया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत में श्री शर्मा ने बताया कि लोक अदालतों में आपसी समझौतों के माध्यम से मामलों का निस्तारण किया जाता है। उन्होंने कहा कि इससे अदालतों का समय भी बचता है और पक्षकारों को त्वरित न्याय भी मिलता है।
1: जो एक्चुअल केसेस में जिसमें कि लीगल पॉइंट्स होते हैं वो तो कोर्ट में रिजॉल्व होते ही होते हैं, पर आउट ऑफ द कोर्ट जिनको कि आपसी समझाइश के तौर पे विवाद निस्तारण किया जा सकता है उनको हम इन लोक अदालत में लेके आते हैं। जैसे कि हमारे पास एमएसीटी के केसेस होते हैं, विवाद निस्तारण किया जा सकता है उनको हम इन लोक अदालत में लेके आते हैं। जैसे कि हमारे पास एमएसीटी के केसेस होते हैं, इंश्योरेंस के मैटर्स होते हैं, फैमिली कोर्ट के डिस्प्यूट्स होते हैं, इवन रेवेन्यू के केसेस, भाई भाइयों के बीच में जो केसेस होते हैं, कुछ ऐसे केसेस जैसे पेंशन के मैटर्स होते हैं, इन सब के केसेस की रिजोल्यूशन लोक अदालत के माध्यम से की जाती है।
0: राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की विशिष्ट सचिव रश्मि नवल ने आकाशवाणी को बताया कि इस लोक अदालत में 7.5 लाख से अधिक प्रकरण रेफर किए गए।
2: माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में तो 3 इसका गठन किया गया, राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बेंच में 3 बेंचेस का गठन किया गया और समस्त डीएलएसएज राजस्थान में 476 बेंचेस का गठन किया गया, मतलब कुल मिलाकर 482 बेंचेस का कॉन्स्टिट्यूशन किया गया इस संपूर्ण लोक अदालत के लिए पूरे राजस्थान में। और लगभग 7 लाख से अधिक प्रकरणों को रेफर किया गया है पूरे राजस्थान में इस लोक अदालत के लिए।
0: केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि नई न्याय संहिता का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को दंड देना नहीं बल्कि न्याय सुनिश्चित करना है। उन्होंने आज जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में लोक अभियोजकों की राज्य स्तरीय कार्यशाला में शिरकत की। पत्रकारों से बातचीत में श्री मेघवाल ने बताया कि इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोक अभियोजकों से नए कानून पर विस्तार से चर्चा की गई और नई प्रणाली को लागू करने में आ रही व्यवहारिक समस्याओं पर मंथन किया गया।
3: न्यू क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो चेंजेज आया, आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता आई, सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आई, इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम आया, उसके बाद टेक्नोलॉजिकल चेंज हुआ, ई प्लेटफॉर्म बने, साइबर क्राइम जो बढ़ रहा है उसको हम कैसे कंट्रोल करें, उसमें पीपी और एपीपी की क्या भूमिका हो, इसलिए आपने देखा होगा निश्चित रूप से मैं मानता हूं इस वर्कशॉप से अमृत निकलेगा।
0: कार्यशाला में राज्य के विधि मंत्री जोगाराम पटेल भी मौजूद रहे। उन्होंने लोक अभियोजकों की समस्याओं को सुना और उनके प्रभावी समाधान पर चिंतन किया गया। इस एक दिवसीय कार्यशाला में साइबर अपराध, दिव्यांगजन मामलों और नई आपराधिक विधियों के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर विशेष तकनीकी सत्र आयोजित किए गए। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने कहा है कि आधुनिक तकनीक और प्रौद्योगिकी का उपयोग हमेशा मानवीय मूल्यों और न्याय के अधीन होना चाहिए। वे आज जयपुर में विकसित भारत 2047 के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सामाजिक न्याय विषय पर 2 दिन के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। श्री मसीह ने कहा कि बदलते समय के साथ आधुनिक तकनीक का उपयोग भी जरूरी है लेकिन उसका विवेकपूर्ण प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने तकनीक के उपयोग में न्याय के हितों का उल्लंघन नहीं करने की बात कही। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी और सुबोध लॉ कॉलेज की ओर से आयोजित इस सम्मेलन में देश भर के शिक्षाविदों, न्यायविदों और शोधार्थियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान अनुसंधान कार्यों को लेकर एक एमओयू भी किया गया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्रीलंका के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मोहन पीरिस ने न्याय व्यवस्था में तकनीक की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल आर एन रवि ने आज कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री शुभेंदु को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्य में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी शिरकत की। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता का ये ऐतिहासिक जनादेश विकास, सुशासन, राष्ट्रहित और जनविश्वास की सशक्त अभिव्यक्ति है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।

प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में अब उपचार प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जाएगी। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने आज जयपुर में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में इस संबंध में निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी

0: मीणा ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन थिएटर और लेबर रूम की स्थिति खराब होने के बावजूद भी वहां सर्जरी की गई, जिसके कारण मरीजों में संक्रमण फैला। श्री मीणा ने जिम्मेदार उच्च अधिकारियों पर कार्यवाही की मांग की। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती आज प्रदेश भर में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया के जरिए उन्हें नमन करते हुए कहा कि महाराणा प्रताप का त्याग और स्वाभिमान युगों तक प्रेरणा देता रहेगा। भरतपुर में इस अवसर पर शौर्य यात्रा निकाली गई। शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी इस यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। बाद में आयोजित संगोष्ठी में वक्ताओं ने महाराणा प्रताप के अदम्य साहस और राष्ट्रभक्ति पर प्रकाश डाला। वहीं पाली जिले के जवाली में रैली निकाली गई और रक्तदान शिविर लगाया गया। और अब मौसम। प्रदेश के पश्चिमी जिले भीषण लू की चपेट में हैं, वहीं दक्षिणी पूर्वी हिस्सों में आंधी बारिश की गतिविधियां दर्ज की गई हैं। आज जैसलमेर, बाड़मेर और फलोदी में दिन का पारा 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर मापा गया। कुछ अन्य पश्चिमी जिले भी प्रचंड गर्मी की चपेट में रहे। दिन के साथ साथ पश्चिमी जिलों में रात का पारा भी सामान्य से ऊपर दर्ज किया जा रहा है। बीती रात फलोदी में न्यूनतम तापमान 31.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा जोधपुर में पारा 30 डिग्री सेल्सियस मापा गया। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि आने वाले दिनों में तापमान के और बढ़ने के आसार हैं।
1: फिलहाल पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज हो रहे हैं। आगामी 2-3 दिनों में और 1-2 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी होने और पश्चिमी राजस्थान में अगले 4-5 दिन हीट वेव का दौर दर्ज होने की प्रबल संभावना है। वहीं पूर्वी राजस्थान के भी ज्यादातर इलाकों में अगले 2-4 दिन मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इसके अलावा केवल उत्तर पूर्वी और उत्तरी राजस्थान में 11, 12 और 13 मई को मेघ गर्जन और कहीं कहीं आंधी चलने की संभावना है। इसके साथ में राज्य के अधिकांश भागों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 1-2 डिग्री सेल्सियस की और बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना है।
0: प्रदेश में जनगणना 2027 की तैयारियों के तहत कार्मिकों के प्रशिक्षण का दौर जारी है। इसी कड़ी में डूंगरपुर के जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान में प्रगणकों और पर्यवेक्षकों के तीसरे बैच का 3 दिन का प्रशिक्षण आज संपन्न हुआ। तहसीलदार उज्जवल जैन ने बताया कि ये डिजिटल जनगणना 2 चरणों में पूरी होगी। पहले चरण में 16 मई से 14 जून तक मकानों के सूचीकरण का काम किया जाएगा, जबकि मुख्य जनगणना अगले साल फरवरी में होगी। प्रशिक्षण में मोबाइल ऐप के उपयोग, लेआउट मैप बनाने और स्वगणना की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस दौरान प्रगणकों को फील्ड में मोबाइल के जरिए डेटा दर्ज करने का व्यवहारिक अभ्यास भी कराया गया। जयपुर पुलिस आयुक्त सचिन मित्तल ने पुलिस अधिकारियों को अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और पीड़ितों को तुरंत न्याय दिलाने के निर्देश दिए हैं। वे आज जयपुर में शहर की कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण की समीक्षा कर रहे थे। श्री मित्तल ने विशेष रूप से महिला और बाल अपराधों सहित SC ST से जुड़े मामलों में जल्द अनुसंधान और प्रभावी कार्रवाई पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस की प्राथमिकता अपराधियों में डर और आमजन में विश्वास पैदा करना होना चाहिए। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आज भूगोल विषय की प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा 2026 शांतिपूर्वक संपन्न हुई। प्रदेश के 38 जिलों में आयोजित इस परीक्षा में कुल 76.43% अभ्यर्थी उपस्थित हुए। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार परीक्षा के लिए कुल 3,95,000 से ज्यादा अभ्यर्थी पंजीकृत थे। इनमें से 3,02,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश भर में आज लगाई गई राष्ट्रीय लोक अदालतों में आपसी राजीनामे से बड़ी संख्या में मामलों का निस्तारण किया गया। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने कहा, आधुनिक तकनीक और प्रौद्योगिकी का उपयोग मानवीय मूल्यों और न्याय के अधीन होना चाहिए। राज्य सरकार ने सभी सरकारी अस्पतालों में उपचार प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और प्रदेश के ज्यादातर स्थानों पर तेज गर्मी का असर, अगले कुछ दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप जितेंद्र सिंह पूनिया से अजमेर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख नीलिमा दाधीच ने तैयार किया है। सृष्टि रचियता जगत पिता ब्रह्मा की पवित्र नगरी और अपनी जायकेदार कढ़ी कचौरी के नाश्ते के लिए प्रसिद्ध अजमेर जिले की चिट्ठी में हम आपको हालिया खबरों, ताजा घटनाक्रम और जिले की मुख्य गतिविधियों के बारे में बताएंगे। चिट्ठी की शुरुआत एसआई भर्ती परीक्षा 2021 की बात के साथ। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने ये भर्ती परीक्षा रद्द कर दी है। ये भर्ती परीक्षा इस साल दोबारा से सितंबर महीने में संभावित है। आयोग के अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू ने बताया कि अब केवल वही 383,000 अभ्यर्थी दोबारा परीक्षा दे सकेंगे जो पहले दोनों पेपर में शामिल हुए थे। नए आवेदकों को इसमें अवसर नहीं दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को उनके द्वारा पूर्व में भरे गए आवेदन पत्रों में आवश्यक सुधार और अपडेट करने का मौका दिया जा रहा है। संशोधन की ये प्रक्रिया 16 मई से 30 मई तक चलेगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे ताज़ा जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट और रिक्रूटमेंट पोर्टल देखते रहें। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से प्रयोगशाला सहायक सीधी भर्ती परीक्षा 2026 का आयोजन किया जा रहा है। जिले में इस परीक्षा के लिए 32 केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर 8,900 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। बोर्ड ने पारदर्शी और सुचारू तरीके से परीक्षा करवाने के लिए सभी केंद्रों पर वीडियोग्राफी की व्यवस्था की है। जिले में 16वीं राष्ट्रीय डिजिटल जनगणना प्रक्रिया 2027 शुरू हो गई है। पहले चरण में मकानों का सूचीकरण किया जा रहा है। 1 मई से 15 मई तक नागरिक स्वगणना कर सकते हैं। वहीं 16 मई से 14 जून तक जनगणना कर्मी घर घर जाकर मकानों की गिनती करेंगे। जिले में जनगणना के लिए मास्टर ट्रेनर्स को CMMS पोर्टल और मोबाइल ऐप के इस्तेमाल संबंधी प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही जिला प्रशासन ने डिजिटल जनगणना के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम किए हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े पिछले महीने अजमेर प्रवास पर रहे। उन्होंने अजमेर के महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई वेबसाइट का लोकार्पण किया। ये वेबसाइट भारतीय ज्ञान परंपरा की आधुनिक दृष्टि विषय पर विकसित की गई है। लोकार्पण समारोह में राज्यपाल ने नई तैयार वेबसाइट की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस वेबसाइट के माध्यम से विश्वविद्यालय की सभी सेवाओं को अधिक सुगम, पारदर्शी और उपयोगकर्ता अनुकूल बनाया गया है, जिससे विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं और अभिभावकों को सभी शैक्षणिक जानकारियां तथा पाठ्यक्रम संबंधी जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध होगी। विश्वविद्यालय के कुलगुरु सुरेश अग्रवाल ने बताया कि विश्वविद्यालय अब जीरो कार्बन कैंपस हो गया है। मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के अंतर्गत विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने पिछले दिनों एक समारोह में 37 दिव्यांगों को स्कूटी प्रदान की। ये कार्यक्रम अजमेर के वैशाली नगर बधिर विद्यालय में आयोजित किया गया। स्कूटी मिलने से इन दिव्यांगों को जीवन यापन, रोजगार और कामकाज में सहयोग मिलेगा। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष श्री देवनानी ने 118 जरूरतमंद व्यक्तियों को 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता भी दी। बीते महीने जिले को कई विकास कार्यों की भी सौगात मिली। चंद्रवरदाई नगर योजना में 7 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले JNIT नर्सिंग स्कूल का केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री भागीरथ चौधरी के मुख्य आतिथ्य में शिलान्यास किया गया। साथ ही मानसून के दौरान शहर में जल भराव की समस्या से आमजन को राहत पहुंचाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष और अजमेर विधायक श्री देवनानी के प्रयासों से केसरबाग पुलिया को चौड़ा और ऊंचा करने के काम के लिए राज्य स्तर पर स्वीकृति मिली। वहीं 3 करोड़ रुपए की लागत से पुलिस लाइन नाले का काम भी किया जाएगा। जिले की राजकीय विद्यालयों में बोर्ड परीक्षा 2026 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 6 बालकों और 16 बालिकाओं को जिला प्रशासन द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समारोह में सम्मानित किया गया। अजमेर जिले की चिट्ठी में बस इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर पेश है प्रादेशिक समाचार।

0: खास समाचार। प्रदेश में आज राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई, मोटी तादाद में मामला राजीनामा निपटाई गया। सुप्रीम कोर्ट रा न्यायाधीश जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह कहो, नवी तकनीक और प्रौद्योगिकी मानवीय मूल्या और न्याय रा अधीन काम ले जावनी चाहिए। राज्य सरकार सगला सरकारी अस्पताल में इलाज रा प्रोटोकॉल री कड़ाईयों पालना करण रा हुकम दीना। और प्रदेश में घनखर ठोणा तेज गर्मी रो असर, आवता दिना पारो और चढ़वा रा आसार। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर, अरब समाचार विगतवार। विधिक सेवा प्राधिकरण री ओरों आज देश भर माए साल री दूजी राष्ट्रीय लोक अदालत लगाईची। प्राधिकरण रा सदस्य सचिव संजीव पांडे आकाशवाणी समाचार ने बतायो कि लोक अदालत माए राजीनामा लायक मामला ने सुनवाई करी जावे है। वे कहो कि इनो अदालतां रो टेम बचबा सागे, पक्षकारां ने तुरंत न्याय मिले है।
1: जो एक्चुअल केसेस में जिसमें की लीगल पॉइंट्स होते हैं वो तो कोर्ट में रिजॉल्व होते ही होते हैं, पर आउट ऑफ द कोर्ट जिनको की आपसी समझाइश के तौर पे विवाद निस्तारण किया जा सकता है उनको हम इस लोक अदालत में लेके आते हैं। जैसे कि हमारे पास एमएसीटी के केसेस होते हैं, इंश्योरेंस के मैटर्स होते हैं, फैमिली कोर्ट के डिस्प्यूट्स होते हैं, इवन रेवेन्यू के केसेस, भाई भाइयों के बीच में जो केसेस होते हैं, कुछ ऐसे केसेस जैसे पेंशन के मैटर्स होते हैं, इन सब के केसेस की रिजोल्यूशन लोक अदालत के माध्यम से की जाती है।
0: राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण के विशिष्ट सचिव रश्मि नवली आकाशवाणी ने बतायो कि आ लोक अदालत में 7.5 लाख बत्ता मामला सुनवाई सारू रेफर करी चिया।
2: माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में तो 3 का गठन किया गया, राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बेंच में 3 बेंचेस का गठन किया गया और समस्त डीएलएसएज राजस्थान में 476 बेंचेस का गठन किया गया, मतलब कुल मिलाकर 482 बेंचेस का कॉन्स्टिट्यूशन किया गया इस संपूर्ण लोक अदालत के लिए पूरे राजस्थान में। और लगभग 7 लाख से अधिक प्रकरणों को रेफर किया गया है पूरे राजस्थान में इस लोक अदालत के लिए।
0: केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कहो है कि नई न्याय संहिता रो मकसद सजा देवण री बजाय न्याय दिलावण है। वे आज जयपुर में राखी जी लोक अभियोजकां री राज्य स्तरीय कार्यशाला में बोल रहा है। इन पाछे खबर नवीसा सागे बातचीत करता थका मेघवाल कहो कि कार्यशाला में लोक अभियोजकां सागे नुआ कानूना रे बारा में विगतवार चर्चा करी जी और वाने लागूकरण में आ रही परेशानियां रे बारा में विचार करी जियो।
3: न्यू क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो चेंजेज आया, आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता आई, सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आई, इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम आया, उसके बाद टेक्नोलॉजिकल चेंज हुआ, ई प्लेटफॉर्म बने, साइबर क्राइम जो बढ़ रहा है उसको हम कैसे कंट्रोल करें, उसमें पीपी और एपीपी की क्या भूमिका हो, इसलिए आपने देखा होगा निश्चित रूप से मैं मानता हूं इस वर्कशॉप से अमृत निकलेगा।
0: कार्यशाला में राज्य रा विधि मंत्री जोगाराम पटेल ही लोक अभियोजकां की समस्यावां सुनी अरमारा निपटारा रा बारा में विचार कीनो। कार्यशाला में साइबर अपराध, दिव्यांग जन जुड़िया मामला और नुआ आपराधिक कानूना ने असरदार तरीकों लागू करण रे बारा में खास तकनीकी सत्र रखी चिया। सुप्रीम कोर्ट रा जज न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह नवी तकनीक और प्रौद्योगिकी ने मानवीय मूल्या और न्याय रा अधीन काम लेवण माथे जोर दीनो है। वह आज जयपुर में विकसित भारत 2047 के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सामाजिक न्याय मुद्दा माथे राखी चिया 2 दिन रा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन रा उद्घाटन सत्र में बोल रहा है। न्यायमूर्ति मसीह कहो कि बदलता जमाना सागे नवी तकनीक काम लेवण जरूरी है, पर तकनीक काम लेवण रे दौरान मानव मूल्यां ने नजरअंदाज नहीं करया जा सके है और न्याय राहितां री अनदेखी नहीं वेवणी चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी और एक गैर सरकारी कॉलेज का नींव रख्या चिया इन सम्मेलन में देश भर रा शिक्षाविद, न्यायविद और शोध करण वाला भाग लीनो। सम्मेलन में श्रीलंका रा पहली वाला मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मोहन पीरिस न्याय व्यवस्था में तकनीक रा काम ने घणो खास बतायो। भारतीय जनता पार्टी रा नेता शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल रा मुख्यमंत्री बन गया है। कोलकाता रा ब्रिगेड परेड मैदान में राखी चिया कार्यक्रम में

0: राज्यपाल आर एन रवि शुभेंदु अधिकारी ने पद और गोपनीयता री शपथ दिलाई। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ही शिरकत कीनी। वह सोशल मीडिया पोस्ट रे जरिए कहो कि पश्चिम बंगाल री जनता रो ओ ऐतिहासिक जनादेश विकास सुशासन देश रा भला और जनता रा विश्वास री मजबूत अभिव्यक्ति है। ध्यानयोग है कि पश्चिम बंगाल में पहली दफा भारतीय जनता पार्टी रो राज आयो है। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रदेश रा सगला सरकारी अस्पतालों में अब इलाज जुड़िया सगला नियमों री कड़ाई पालना तय करी जावेला। चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग रे प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ आज जयपुर में आला अहलकारां सागे मीटिंग कर इ बारा में हुक्म दीना। वह कहो कि इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर और आईसीयू सरी खिठौना लापरवाही री सूरत में संस्थान रा प्रभारी और यूनिट हेड ने सीधा जिम्मेदार ठहराया जावेला। श्रीमती राठौड़ अस्पतालों में संक्रमण रोकण सारू कीटाणु खत्म करण बाबत नियमित तौर काम करण माथे जोर दीनो। कोटारा न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ऑपरेशन रे जरिए जापो वेवण पाछे नुवी मायड़ा री मौत वेवण और तबियत बिगड़वारा मामला में राज्य सरकार एक डॉक्टर समेत दो नर्सिंग कर्मचारियों ने मुअत्तल कर दीना है। ईसा गई यूटीबी माथे लाग्योड़ा एक डॉक्टर ने नौकरी निकाल दियो चियो है और दो डॉक्टरों ने कारण बताओ नोटिस देर जवाब तलब करी चियो है। दूजीकानी चिकित्सा शिक्षा आयुक्त बाबूलाल गोयल काल कोटाचार वाकयारो विगतवार जायजो लीनो और जरूरी हुक्म दीना। चिकित्सा शिक्षा विभाग रे प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ बतायो कि मामला री शुरुआती जांच में चिकित्सा प्रोटोकॉल और प्रक्रिया में गंभीर लापरवाही री ठापण्या पाछे स्त्री और प्रसूति रोग विभाग रा यूनिट हेड डॉक्टर बी एल पाटीदार और यूनिट हेड डॉक्टर नेहा सिहरा ने कारण बताओ नोटिस दियो चियो है। ई वाकया पाछे कांग्रेस पार्टी वारा नुमाइंदा रो एक दल कोटा भेजो। राज्य रा पहली वाला चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा री अगुवाई में ओ दल अस्पताल रो दौरो कीनो। ई पाछे वे अस्पताल प्रबंधन माथे घोर लापरवाही रो आरोप लगाता थका कहो के ऑपरेशन थिएटर और जापा विवरण रा कमरा री खराब हालत रे बावजूद वठे ऑपरेशन करी जिया जी कारण मरीजा में संक्रमण फैल गयो। महाराणा प्रताप री जयंती रे मौके आज वन श्रद्धा भाव सागर याद करया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सोशल मीडिया पोस्ट रे जरिए नमन करता थका कहो के महाराणा प्रताप रो त्याग और खुद माथे अभिमान युगा युगा ताई सीख देवेला। ई मौके भरतपुर माय शौर्य यात्रा निकाली ची। ई पाछे राखी जी संगोष्ठी माय महाराणा प्रताप री जबरदस्त हिम्मत और देशभक्ति री गाथावा याद करी ची। पाली जिलारा जवाली माई रैली निकाली ची और खूनदान शिविर लगाई चियो। प्रदेश माई जनगणना 2027 री तैयारियां रा तहत कर्मचारियों ने सिखावण देवण रो दौर चाल रियो है। डूंगरपुर माई प्रगणका और सुपरवाइजरा रा तीजा बैच रो तीन दिन रो सिखावण कार्यक्रम आज पूरो भियो। सिखावण रे दौरान जनगणना सारू मोबाइल ऐप काम लेवण लेआउट नक्शो बनावण और स्व गणना रा काम रे बारा में विगतवार जानकारी दीरी जी। प्रगणका ने घर घर जार मोबाइल फोन रे जरिए डेटा दर्ज करण रो अभ्यास ही कराई चियो। ई दफा डिजिटल जनगणना दो दौर माय करी जा रही है। राज्य माय इरा पहला दौर माय 16 मई 14 जून ताई मकाना री लिस्ट बनाई जावेला जबकि मुख्य जनगणना फरवरी 2027 माय करी जावेला। अरब मौसम प्रदेश रा अतुणी हल्का माय लू बाज रही है जबकि लंकाऊ उगनी हल्का माय आंधी बारिश रो दौर चाल रियो है। जैसलमेर बाड़मेर और फलौदी माय ऊंचो ऊंचो तापमान 44 डिग्री सेल्सियस ने पार कर गयो। कुछ और जिला माए जबरदस्त तावड़ो पड़ रियो है वठे दिन सागे रात्रि बगती पारो सामान्य ऊंचो दर्ज करियो चा रियो है। बीती रात फलौदी माए 31.4 और जोधपुर माए 30 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज करी चियो। मौसम केंद्र जयपुर रा निदेशक राधेश्याम शर्मा बतायो के आवता दिना पारो और चढ़वारा आसार है।
1: फिलहाल पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज हो रहे हैं। आगामी दो तीन दिनों में और 1 से 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी होने

0: और पश्चिमी राजस्थान में अगले 4-5 दिन हीट वेव का दौर दर्ज होने की प्रबल संभावना है। वहीं पूर्वी राजस्थान के भी ज्यादातर इलाकों में अगले 2-4 दिन मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इसके अलावा केवल उत्तर पूर्वी और उत्तरी राजस्थान में 11, 12 और 13 मई को मेघ गर्जन और कहीं कहीं आंधी चलने की संभावना है। इसके साथ में राज्य के अधिकांश भागों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की और बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना है।
1: जयपुर रा पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल पुलिस रा अहलकारा ने अपराधियां रा खिलाफ करड़ी कार्रवाई करण और पीड़ित जनता ने तुरंत न्याय दिरावण रा जतन करण रा हुक्म दिना है। वे आज जयपुर माए शहर री कानून व्यवस्था बनाई रखण और अपराधा माथा काबू करण रे बारा माए राखी जी मीटिंग माए बोल रहा है। पुलिस कमिश्नर खास तौर महिलावां और बच्चों के खिलाफ होने वाला अपराधा और अनुसूचित जाति जनजाति जुड़िया मामला में तुरंत जांच कर और असरदार कार्रवाई करण माथे जोर दिनो। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड री ओर आज भूगोल विषय री प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा 2026 शांति सागर पूरी फैगी। राज्य रा 38 जिला माए फी ई परीक्षा माए 76.43% उम्मीदवार शामिल फिया। आईपीएल क्रिकेट होड़ रहते आज राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस बीच मैच फैला। वो मुकाबलो जयपुर रा सवाई मानसिंह स्टेडियम माए अब थोड़ी देर पछे 7:30 शुरू फैला। आखिर माए खास समाचार एक कर फेरू सुन ले रहो। प्रदेश माए आज राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई ची मोटी तादाद माए मामला राजीनामा निपटाई चिया। सुप्रीम कोर्ट रा न्यायाधीश जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह कहो नवी तकनीक और प्रौद्योगिकी मानवीय मूल्यां और न्याय रा अधीन काम ली जावनी चाहिए। राज्य सरकार सगला सरकारी अस्पतालों में इलाज रा प्रोटोकॉल री कड़ाई पालना करण रा हुक्म दीना। और प्रदेश में घनखर ठोणा तेज गर्मी रो असर। ईसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो थियो। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। शाम के 7 बजे हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम चौपाल।

फसलों ने नुकसान पहुँचाने वाला जो कीट है बाने खा गया किसान परिवारों की सहायता भी करें, आना आपा मित्र कीट या लाभकारी कीट के नामों भी जाना। प्राकृतिक रूप में देखा तो अपनी फसलों की हानि पहुँचाने वाला कीटों रक्षा करें और रासायनिक दवाइयों की जिसकी अपनी ज़रूरत है बिना भी कम करते हुए। जय मित्र कीट है आंगो आप अच्छी तरीके से संरक्षण करा तो अपनी खेती ज़्यादा फायदेमंद, ज़्यादा सुरक्षित और अपने पर्यावरण के भी अनुकूल बन सके हैं। जिका अपना पुराना किसान परिवार है बांसगला ने तो पतो ही है, अपना नया जिका युवा किसान है बंग खातर बात करा तो मित्र कीट की पहचान के हुए किसा किसा मित्र कीट हुए। अगर नाम की बात करें विशेष तौर पर तो सब पहलू नाम आवे लेडी बर्ड बीटल कीट को। आ माहू जिका कीट है बाने खा गए और अपनी फसल की सुरक्षा करें। ट्राइकोगामा जिको अपनो मित्र कीट है हानिकारक कीटांगे अंडा ने नष्ट करे हैं। क्राइसोपा मित्र कीट भाई लोगों जिन्हें आपा हरे भृंग के नामों भी जाना, वो धोलती माखी और माहू ने खा गए अपनी फसल की रक्षा करें। मधुमक्खी की बात करें तो आ परागण में सहायता करें और कदे कदे मकड़ियां भी हानिकारक कीटा ने पकड़ गए बने खावे और अपनी फसल ने नुकसान बचावे। ड्रैगन फ्लाई की बात करें तो छोटा उड़न वाला जिका भी कीट है बने आ नष्ट कर देवे। तो अब अपना जिका मित्र कीट है बंग वापा बचाव किया कर सका हाँ, अगर अपना युवा किसान भाई अपने जानना चाहे तो रासायनिक कीटनाशकों को एक तो आपा कम प्रयोग करा, क्योंकि ज़्यादा कीटनाशक उपयोग करने के कि मित्र कीट है वह भी मरण लग जाए। जरूरत होने पर ही आपा कोई भी प्रकार के रसायन को छिड़काव करा और जटे तक हो सके आपा कम विषैला कीटनाशकों का उपयोग करा। शाम के टाइम पर छिड़काव करा ताकि के है कि मधुमक्खियाँ भी यूँ प्रभावित ना हो। इनके अलावा देखा तो आपा मित्र कीट ने बचाने खातर आपा जैविक खेती ने बढ़ावा दे सका हाँ। जैविक खेती में प्राकृतिक तरीकों जिका भी उपयोग में आने वाला साधन है भी यूँ के है कि मित्र कीट सुरक्षित रहे और गोबर खाद कंपोस्ट खाद अंगों प्रयोग करके आपा अपने खेत में जैविक खेती ने बढ़ावा दे सका हाँ। नीम आधारित जिका भी जैविक कीटनाशक है बांगू भी आपा उपयोग कर सका हाँ और रासायनिक उर्वरकों को आपा प्रयास करा कि सीमित उपयोग हुए। खेत में आपा अलग अलग तरीका की फसलें लगावा, क्योंकि कई बार एक ही प्रकार की फसल बारी बारी आपा लगावा तो क्या है हानिकारक कीट बढ़न लग जाए। मिश्रित खेती ने आपा स्वीकार करा और सागे सागे फूलदार जिका पौधा है वह लगावा जिका मित्र कीट आकर्षित हो और अपने समय के सागे फसल चक्कर है जिको बिंगो भी आपा महत्व समझा और बिने भी अपनावा। इनके अलावा फेरोमेन ट्रैप है या प्रकाश प्रपंच है बिंगो आपा उपयोग कर सका हाँ, यह हानिकारक कीटा ने नियंत्रित करें और मित्र कीटा ने कम नुकसान पहुँचावे। खेत में फेरोमेन ट्रैप भी आपा लगावा और रात के टाइम पर सीमित प्रकाश प्रपंच को भी आपा उपयोग कर सका हाँ। मित्र कीटा को आपा कृत्रिम तरीका भी बढ़ावा कर सका हाँ। कुछ ऐसा मित्र कीट हुआ भाई लोगों जिका प्रयोगशाला में भी आपा तैयार कर सका हाँ, जिया ट्राइकोगामा कार्ड है बिंगो आपा खेत में उपयोग कर सका हाँ। जैविक नियंत्रण जिकी भी एजेंसियां हैं बांगी भी आपा सहायता ले सका हाँ। खेत की स्वच्छता है वह आपा समय समय पर बनाकर रखांगा तो खरपतवार और संक्रमित पौधा ने आपा जिया जिया हटावा हाँ भी उनके हानिकारक कीट कम हो जाए। खेत की आपा नियमित निगरानी करता रहा, रोगग्रस्त जिका भी पौधा है आपा बाने नष्ट कर देवा। मित्र कीटा को जिको है अच्छो संरक्षण करा, रासायनिक दवाइयाँ हैं जिकी बांगो भी खर्चो धीरे धीरे कम हो जावे, पर्यावरण अपनो सुरक्षित बने रहे, माटी की उर्वरता शक्ति बढ़े, अपनी जिकी भी फसल आपा लेन लाग रहा बिंगी गुणवत्ता ज़्यादा होवे और मानव के सागे सागे पशुओं के स्वास्थ्य पर भी कोई दुष्प्रभाव को नहीं पड़े। तो आपा अगर सारी बात छोटा तरीका समझना चाहवा तो बा आ है कि मित्र कीट है जिका बा किसाना का सच्चा मित्र हुआ है, प्राकृतिक रूपों के फसलों की रक्षा करें और उत्पादन बढ़ाने में आपा ने सहायता देवे। जे किसान परिवार रासायनिक दवाइयों को संतुलित उपयोग करें, जैविक खेती अपनावे और मित्र कीटों को संरक्षण करें तो खेती के अपनी ज़्यादा टिकाऊ और लाभकारी बन जावे। तो इन खातर मित्र कीटों की रक्षा करना आधुनिक कृषि की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। ये आवश्यकता ने आपा समझा और खेती पाती की बात आपा कार्यक्रम में आगे और भी करांगा, पर अभी पहले सुना पाओ भजन लियो सुनो सा।

सुनो भाई लोगों, आपा भजन भजनों पहले आपा अपनी खेती पाती की चर्चा करा और एक बार फिर उचाला आपा अपनी खेती पाती की दुनिया में। आपा कोई भी प्रकार की खेती करा तो भी मैं जमीन तैयार करने के बाद सब ज़्यादा अपनों मुख्य काम हुआ बीज वो ध्यान रखनो। जिको बीज आपा खरीदने लग रहा वो सही बीज है या कोनी, बीज अच्छी गुणवत्ता को है या कोनी, अपना उत्पादन कितों मिलेगू, तो इं तरीका का बहुत सारा सवाल अपने किसान परिवार का मन में हुए हैं। तो आज आप चर्चा करांगा कि जब अपना किसान परिवार बीज खरीदे तो बी टाइम पर के इसी सावधानी आप राख सका जकाऊँ के कि आपने अपनी खेती में फायदों मिलेगू। बात करा आप सब पहले तो हमेशा आप वही प्रयास रखा कि प्रमाणित जिको बीज है वो ही आप खरीदा। हमेशा कोई भी प्रकार की सरकारी संस्था, कृषि विश्वविद्यालय, सहकारी समिति या कोई भी जिकी विश्वसनीय कंपनी है बिंगो यापा प्रमाणित बीज खरीदा। प्रमाणित बीज खरीदे आपने कई फायदा हुए जिकाऊँ आपा अगर कुछ की चर्चा करा सब पहले तो बिंगी शुद्धता काफ़ी ज़्यादा हुए, अंकुरण क्षमता बाकी बीजें की तुलना में बहुत बढ़िया दिखने मिले, रोग और खरपतवार बिंगमा बिल्कुल कम हुए और बीज गए जिको पैकेट हुए बिंगो पर भी प्रमाणित बीज या सर्टिफाइड सीड को टैग हमेशा देखा आपा। एक बात देखा आपा कि बीज को जिको लेवल है बिना आपा ध्यान पड़ा, बीज खरीदता टाइम पर पैकेट पर लिखड़ी जिकी जानकारी है बिंग भी आपा जांच जरूर करा कि फसल और किस्म को नाम, भाई किसी फसल में आपा इन्हें प्रयोग लेवा और किसी किस्म को बीज है, किसा साल इंगो उत्पादन हुएडो है, कद तक इंगी वैधता अवधि है, अंकुरण प्रतिशत ई बीज को कितो है और सब जरूरी शुद्धता प्रतिशत कितनो है, इनके अलावा बीज गमा कितनी नमी है, के बैच नंबर को बीज है और जय अगर पैकेट पर ई प्रकार की कोई भी जानकारी स्पष्ट रूप ना लिखड़ी हुए तो वो बीज आपा ना खरीदा। क्षेत्र और अपने जलवायु का हिसाब हूँ बीजू आपा चुनाव करा, अपने क्षेत्र की जिकी माटी है, जलवायु है और जिकी सिंचाई सुविधा है बिंग हिसाब हुई आपा उपयुक्त किस्म के बीज को चयन करा। उदाहरण तौर पर देखा तो कम पानी आड़ो जिको भी क्षेत्र है भी मैं सुखो सहन करने वाली जिकी किस्म है बिंग आपा चुनाव करा और ज़्यादा उत्पादन खातर के आपा कोशिश करा उन्नत किस्म को बीज ही लेके आवा। अंकुरण क्षमता जिकी बीज की है आपा जरूर जांचा आपा, क्योंकि अच्छा बीज की अंकुरण क्षमता सामान्य तौर पर 70-90% तक या भी ज़्यादा हो सके है। कम अंकुरण आलू जी को बीज है भी उनके कि बूंटा की संख्या है वह भी कम हो जाए और टैम के सागे उत्पादन भी घटने लग जाए। बीज रोग मुक्त और स्वस्थ होना चाहिए, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखा कि बीज कठों भी टूटड़ो ना हुए, सड़ेड़ो ना हुए या सिकुड़ेड़ो ना हुए या बेडोड़ो सो बेरंगो ना हुए, और विशेष तौर पर ध्यान रखा कि फफूंद लागड़ो बीज आप कदी ना लेवा। स्वस्थ बीज हमेशा चमकदार और एक समान आकार का ही हुए है। इनके अलावा आप भाई लोगों देखा तो जब कभी भी आप बीज खरीदने जावा तो कोशिश आई करा कि जिको अपना विश्वसनीय विक्रेता है भी उन जगह आप चीज खरीदा। पुराना जिका भी बड़ा बुजुर्ग है या पुराना जिका किसान भाई है वे हमेशा आपके विश्वसनीय विक्रेता हुई बीज खरीदे है, और अपना जिका युवा किसान परिवार है या जिका अभी अभी खेती की दुनिया में कदम रखे है तो वह जरूर ध्यान रखे कि लाइसेंस सुधाधारी जिकी भी दुकान है या जिको अधिकृत विक्रेता है बिंगमा हुई आप जाके बीज खरीदा, और कोई भी सड़क के किनारे या बिना बिल हाड़ो जिको बीज है बिना खरीदण आप बच्चा। जब भी आप बीज खरीदा तो आप ध्यान रखा कि आप बिल बिंगो जरूर लेवा। बीज खरीदने के बाद के पक्को बिल लेना बहुत जरूरी हुआ है। बिल गमा बीज को नाम, कितनी मात्रा आप खरीदने लग रहे हैं बा, किसी कंपनी को बीज है भी कंपनी को नाम, कितनी कीमत देगा आप वो बीज खरीद रहे हैं, खरीद की तारीख, ऐसी सब चीज़ें स्पष्ट रूप में लिखड़ी होनी चाहिए, और भविष्य में कभी आपने बीज संबंधित कोई शिकायत या मुआवजा खातर भी बिल की जरूरत पड़ सके है तो ध्यान रखा कि आप जब भी कोई चीज़ खरीदा तो बिंगो बिल जरूर लेवा। और पैकेट पर सील लागड़ी है कौन लागड़ी बिंग भी आप जांच करा, क्योंकि बीज को पैकेट सही प्रकार बंद और सील बंद होना चाहिए, फटड़ो या खुल्लो पैकेट आपा ना खरीदा। और किसान भाई विशेष तौर ध्यान रखे ज़्यादा पुराना

बीज भी आप ना खरीदा, क्योंकि बीज जिया जिया पुराना होते जावे बिंगो अंकुरण प्रतिशत है वो धीरे धीरे कम होने लग जाए। तो कोशिश करा हमेशा नयो और ताज़ा बीज ही आप खरीदा। इनके अलावा एक बात आपने किसान भाई विशेष तौर पर ध्यान रखे कि जरूरत के हिसाब में आप हमेशा बीज खरीदा। ज़्यादा मात्रा में बीज खरीदने के भंडारण में कई बार समस्या हो जाए। जरूरत के हिसाब में आप जब बीज खरीदा तो वो अपने खातर सबू ज़्यादा बढ़िया रहे। संकर बीज और देसी किस्म को बीज है बिंग अंतर भी आपा अंतराल जी को है वो समझा। संकर बीज जका ना आपा हाइब्रिड बीज के नामों भी जाना वो आपने ज़्यादा उत्पादन देवे, लेकिन हर साल आपने नयो बीज खरीदना पड़े। इनकी अपेक्षा में देखा तो देसी बीज सस्ता हुआ और अगली फसल तक आपने सुरक्षित भी राख कहाँ, पर हाइब्रिड बीज की तुलना में आंगो जी को अंकुरण प्रतिशत है वो थोड़ो कम हुआ है। तो किसान भाई आपकी ज़रूरत के हिसाब हूँ और आप गए बजट ने देखते थका इंगो चयन करें। इनके अलावा जिका भी आपने नज़दीक में कृषि विशेषज्ञ है बांगी सलाह भी आपा ज़रूर लेवा। जे कोई नई किस्म को बीज आपा खरीदने लाग रहे हैं तो आपने कृषि अधिकारी या कृषि वैज्ञानिकों सलाह ले गए बिंग बाद ही आपा कोई काम करा। मोटी मोटी बात आया है कि बीज लेवल आड़ू खरीदा, केवल कम कीमत देख के आपा बीज ना लेवा। ध्यान रखा कि बिना बिल के आपा खरीदारी ना करा। अपने क्षेत्र के हिसाब हूँ बीज के जिकी किस्म है बिंगू चुनाव करा। पुराना या खराब बीज ना खरीदा। अच्छा बीज की पहचान समझा और बीज साबु खरीदारी करा। साफ सुथरो चमकदार बीज लेवा। समान आकार और वजन को ध्यान रखा। रोग और कीट रहित अपनों बीज होवे और बिंगी अच्छी अंकुरण क्षमता और कम नमी आड़ो बीज ही आपा लेगा। मोटी मोटी बात आया है कि अच्छी फसल उत्पादन आपा सगड़ा चाहवा हाँ तो बिंग खातर उत्तम गुणवत्ता आड़ो बीज को चयन सबू ज़्यादा जरूरी है। बीज खरीदता टाइम प्रमाणित बीज अंकुरण क्षमता बिंगी कितनी वैधता अवधि है, पैकेट पर सील लागड़ी है कोनी, अधिकृता जिको आपा खरीदने लाग रहे हैं वो अधिकृत है कोनी, विश्वसनीय विक्रेता, आ सब बातों को आपा ध्यान रखा। क्योंकि सावधानी खरीदेड़ो जिको बीज है वो किसानों ने ज़्यादा उत्पादन और ज़्यादा फायदों दिलाने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभावे हैं। तो आ सगली बातों को आपने किसान भाई ध्यान रखें। चला एक बार फिर मनोरंजन की दुनिया में और सुनावा था ना वो गीत, लियो सुनो सा।

सुनियो भाई लोगों आपा गीत चला एक बार फिर हूँ अपनी खेती पाती की दुनिया में। और आज आपा आगे अब चर्चा करा कि आपने खेत में समय समय पर जब आपा जैविक खेती की अवधारणा ने समझा और भी मैं आगे बढ़ा तो बिंग माँ हरी खाद को बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और बिंग खातर अपने किसान भाई भात भात की फसलों की खेती भी करें। आज आपा विशिष्ट तौर पर चर्चा करांगा कि हरी खाद खातर आपा ढेंचा की जिकी खेती है बा क्या कर सका हम। ढेंचा आपने एक महत्वपूर्ण दलहनी फसल के रूप में निकल गया आवे है जिनको उपयोग आपा मुख्य रूपों हरी खाद के रूप में करा। आपने भारत में जिकी भी कृषि भूमि है बिंगी उर्वरता शक्ति बनाए रखने खातर और माटी में जिका भी जैविक पदार्थ है

बढ़ाने खातर डेंचा की खेती सबू ज्यादा फायदेमंद मानी जाए। आ फसल कम टाइम में ज्यादा आपने हरे जैविक पदार्थ तैयार करके दे देवे और माटी के माजी की नाइट्रोजन की मात्रा है बिने भी बढ़ा देवे। रासायनिक उर्वरकों पर अपनी जी की निर्भरता बढ़ने लग रही है और माटी की जी की उर्वरता टाइम के साथ घटने लग रही है। ढेंचा की खेती अगर देखा तो आज के टाइम पर भी वो महत्व और भी बढ़ गए हैं। ढेंचा की बात करा कि ढेंचो की चीज़ है तो आ एक दलहनी पौधो है भाई लोगों, जिका गो वैज्ञानिक नाम सेसबेनिया एक्यूलेटा है। इन्हें मुख्य तौर पर हरी खाद बनाने खातर पशुओं के चारा के रूप में और जमीन सुधार खातर उगाया जावे। इनकी जड़ा में राइजोबियम जीवाणु पाया जावे जिकी के है कि वायुमंडल में उपस्थित जितनी भी नाइट्रोजन है बिन्हें माटी के माँ स्थिर करते हुए है। ढेंचा की अगर प्रमुख विशेषताओं की आप बात करा तो कम टाइम का माँ तेजी हुआ बढ़े, माटी में जिका भी जैविक पदार्थ है बाने बढ़ावे, नाइट्रोजन फसल का माँ स्थिरीकरण करें, खरपतवार नियंत्रण में भी काफ़ी सहायता आपने प्रदान करें, जमीन की पानी धारण करने की जिकी क्षमता है बिना तो बढ़ावे ही है, सागे सागे अपनी खेत की माटी ने भुरभुरी बनावे और उपजाऊ क्षमता भी बढ़ा देवे हैं। जलवायु की बात करें तो आपने ढेंचा की खेती खातर गर्म और आर्द्र जी की जलवायु है वह सारों ज़्यादा बढ़िया मानी जावे, जबकि गमा तापमान लगभग 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक बढ़िया रहा है। बिरखा की बात करें तो लगभग 60 से 100 सेंटीमीटर तक ही में पर्याप्त रहा है। जय ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा जल भराव हो जाए तो भी टाइम पर आप आएंगे ध्यान रखना, क्योंकि आप गर्मी के साथ हल्को जी को जल भराव है भी न सहन कर सके हैं। ढेंचा की खेती खातर किसी जमीन होनी चाहिए तो बिंग खातर ध्यान रखा कि ज़्यादातर तो आपा हर प्रकार की माटी का मायने उगास कहाँ, लेकिन दोमट माटी या बलुई माटी जी की हुए बाइंग खातर सबो ज़्यादा बढ़िया रहे, जबकि गो पीएच मान लगभग 6.5 से 8 तक हो है। क्षारीय माटी या हल्की जी की लवणीय जमीन है बिंग माँ भी किसान भाई इनकी खेती कर सके हैं। और खेत की तैयारी में ध्यान रखें किसान भाई कि खेत की एक गहरी जुताई कर देवे, 2-3 बार हल्की जुताई करके माटी ने अच्छी तरीक़ों भुरभुरी बना लेवे, खेत ने समतल करके पाटो लगावे और अच्छा अंकुरण खातर नमी को पर्याप्त ध्यान रखें। बुआई टाइम की बात करें तो आपने खरीफ का मौसम में आपने किसान भाई जून और जुलाई के महीना में इनकी बुआई कर सके वो सब ज़्यादा उपयुक्त टाइम है, पर सिंचित जितना भी क्षेत्र है बठे जरूरत के हिसाब हूँ कोई भी अन्य टाइम पर भी इन्हें किसान भाई उगा सके हैं। बीज दर और बीजांत की विधि की बात करें लगभग 25 से 40 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर तक पर्याप्त रहे। बीजांत आपा चाहे तो छिटकवा विधियों भी कर सका हाँ या कतारा में भी वो बीज आपा बो सका हाँ। कतार की दूरी लगभग आपा 25 से 30 सेंटीमीटर रखा और बीज की गहराई 3 से 5 सेंटीमीटर तक पर्याप्त रहे। उर्वरक और खाद प्रबंधन को भी आपा विशेष तौर पर ध्यान रखा। हरी खाद खातर उगाई जाने वाली जिकी भी ढेंचा की फसल है भी मैं सामान्य तौर पर देखा तो ज़्यादा उर्वरकों की जरूरत कौन पड़े। प्रारंभिक जिकी बढ़वार है बिंग खातर 15 से 20 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर तक सबू ज़्यादा फायदेमंद रहा है। जीव उर्वरकों को प्रयोग अगर आप में करा तो वह भी अपने फसल खातर लाभदायक हुए। सिंचाई प्रबंधन में ध्यान रखा कि बिरखा आधारित जितना भी क्षेत्र है बठे सामान्य तौर पर सिंचाई की जरूरत कोनी पड़े। जब बिरखा कम हुआ तो आपा लगभग 1 से 2 सिंचाई इंगमा कर सका हाँ और पानी भराव की स्थिति में उचित निकासी की भी आपा व्यवस्था बना के रखा। डेंचो के भाई लोगों तेजियों बढ़ने वाली फसल है तो इंग खातर के खरपतवार आप भी इंगमा दब जाए हैं। प्रारंभिक अवस्था में देखा तो एक निराई गुड़ाई पर्याप्त रहे और इन आपा हरी खाद के रूप में उपयोग में लेवा तो ढेंचा की फसल जद 45 से 50 दिन की हो जाए और भी मैं फूल आने लाग जाए तो भी टेम्परी ने खेत का मापा पलट सका हाँ। फसल ने जिकी माटी में दबाणु के 2-3 हफ्ता तक अच्छी तरीके वहाँ पर सड़न देवा, इनके बाद माटी में जैविक पदार्थ और नाइट्रोजन की जिकी मात्रा है वह भी बढ़ जाए। ढेंचाओं के है कि सब में बड़ो फायदो तो है कि अपनी माटी की जिकी उर्वरता शक्ति है भी में बढ़ोतरी हुए, लगभग 40 से 60 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर माटी के माँ जोड़ देवे हैं, जैविक पदार्थों की पूर्ति कर देवे, रासायनिक उर्वरकों की आपा समय समय पर बचत कर सका हाँ।

और माटी की संरचना में भी वो सुधार लेगा। वह माटी भुरभुरी बनाए और बिंगी पानी धारण करने की जिकी क्षमता है बाबी बढ़ जावे है। प्राकृतिक और जैविक खेती ने एक तरीका वो बढ़ावो है क्योंकि यूं प्रदूषण कम हुआ है तो इंग खातरा पा पर्यावरण भी संरक्षित राख सका है। ढैंचा में सामान्य तौर पर रोग और कीट कम लागे है, फिर भी जे आपने जरूरत पड़े तो कृषि विशेषज्ञ की सलाह लेकर आपा बांगों में नियंत्रण कर सका है। सब जरूरी बात जिकी उपज है अपनी हरी खाद के रूप में ढैंचो लगभग 150-250 क्विंटल हरी जैविक पदार्थ आपने प्रति हेक्टेयर तक प्रदान कर देवे है। मूल तौर पर मोटी मोटी बात आ है कि आपने ढैंचा की खेती हरी खाद खातर सब ज्यादा उपयोगी और लाभकारी है। माटी के मां उर्वरता शक्ति बढ़ानो, नाइट्रोजन उपलब्ध कराना, जैविक खेती ने एक अच्छो प्रोत्साहन देनो, इंग मां आ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभावे है। कम लागत और ज्यादा फायदा के कारण के किसान भाई ढैंचा की खेती हमेशा अपनावे है और जिका अपना युवा किसान है बाने भी आ खेती अपनानी चाहिए। यूं के कि जमीन की गुणवत्ता बनी रहे और भविष्य में भी अच्छी फसल को उत्पादन किसान भाई सुनिश्चित कर सके हैं। खेती पाती की बात आपा करी और अब आपा चाला एक बार फिर मनोरंजन की तरफ और सुनावा थाना रागनी लियो सुनो सा।

सुनी भाई लोगों, आपा रागिनी, अब आपने कने सूरतगढ़ मंडी में आज का बाजार भाव पूर्ति होया है। सूरतगढ़ मंडी में आज कणक बिकी भाई लोगों 2375 रुपयों ले गए 2548 रुपया कुंटल, जो का भाव रहा 2020 रुपयों ले गए 2076 रुपया कुंटल। सरसों का भाव उगड़ा भाई लोगों 6140 रुपयों ले गए 6664 रुपया कुंटल, और ग्वार बिकी आज 5318 रुपया कुंटल। इनके अलावा भाई लोगों, आपा खेती पाती के जानकारी के विषय में बात करा। कुछ जानकारी आपने किसान भाई पुराना जी का बुजुर्ग किसान है या आसपास जी का खेती खड़ मिणक है बाऊ ले लेवे। इनके अलावा आपना जी का युवा किसान भाई है, खेती से संबंधित बाने कोई भी प्रकार की जानकारी लेनी हो है, या पाइया कह देवा कि युवा किसान भाइयों के सागे सागे अपना जिका पुराने टाइम खेती करता आन लाग रहा किसान परिवार है, बने भी कोई प्रकार की जानकारी लेनी होवे, कोई फसल के विशिष्ट तौर पर कोई चीज़ की जानकारी लेनी होवे, या पाइया कह देवा कि कोई एक फसल में कोई समस्या बने आन लाग रही है, बी फसल के बारे में भी जानकारी लेनी होवे, तो आपके नज़दीक के कृषि विज्ञान केंद्र पर जाके कृषि वैज्ञानिकों भी संपर्क कर सका हाँ। और जिकी भी समस्या आपने आन लाग रही है या जिका विषय पर भी आपा जानकारी लेनो चाहवा हाँ, बांगे सागे साझा करगा आपा कृषि वैज्ञानिकों हर प्रकार की समस्या को समाधान ले सका, हर प्रकार की जानकारी जठ तक बने पतो हुए बासारी आपा ले सका हाँ। तो कार्यक्रम में अब चला आपा आज, और सुना देवा थाने कार्यक्रम को आखिरी गीत लो सुनो सा।

अभी आप कार्यक्रम चौपाल सुन रहे थे। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.7 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं फिल्मी भक्ति संगीत।

अब यह फिल्मी भक्ति संगीत सुन रहे थे। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। अब सुनिए कार्यक्रम एक ही फिल्म से।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को पुष्पेंद्र का नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा की उस सुपरहिट फिल्म का जिसमें रहस्य है, रोमांच है, संगीत है और स्टाइल, चारों का ऐसा संगम जिसे दर्शक देखकर आज भी भूल नहीं पाते हैं। जी हां, आज की हमारी फिल्म है जॉनी मेरा नाम। साल था 1970 और ये फिल्म सिर्फ एक थ्रिलर नहीं थी बल्कि ये देवानंद के करियर की सबसे सुपरहिट फिल्मों में से एक गिनी जाती है। फिल्म में थे सदाबहार अभिनेता देव आनंद, खूबसूरत अभिनेत्री हेमा मालिनी, शानदार अभिनेता प्राण प्रेमनाथ और आईएस जोहर। और दोस्तों, इस फिल्म का निर्देशन किया था विजय आनंद ने, जिन्हें हिंदी सिनेमा में बेहतरीन कैमरा वर्क और सस्पेंस प्रस्तुत करने के लिए जाना जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सफर की। फिल्म का नाम है जॉनी मेरा नाम।

दोस्तों, फिल्म जॉनी मेरा नाम की कहानी दो भाइयों के इर्द गिर्द घूमती है जो बचपन में बिछड़ जाते हैं। एक भाई अपराध की दुनिया में पहुंच जाता है और दूसरा कानून का रखवाला बन जाता है। देवानंद की फिल्में अक्सर रोचक हुआ करती थी, तेज हुआ करती थी और दर्शकों को रोक कर रखती थी। उन्हीं सब फिल्मों में से ये फिल्म है, जॉनी मेरा नाम। और देवानंद ने इस फिल्म में पुलिस अधिकारी का जो किरदार निभाया, नाम दिया गया जॉनी। और उस समय पर यही जॉनी अंडरकवर मिशन पर जाता है। कहा जाता है कि फिल्म की शूटिंग के दौरान निर्देशक विजय आनंद ने हर सीन को बेहद विस्तार से तैयार किया था। कैमरे की मूवमेंट और सस्पेंस को लेकर वे इतने परफेक्शनिस्ट थे कि कई बार एक ही शॉट के लिए घंटों मेहनत लग जाती थी। और यही वजह थी कि जॉनी मेरा नाम तकनीकी रूप से उस दौर की सबसे आधुनिक फिल्मों में से गिनी जाती है।

दोस्तों, फिल्म में देवानंद और हेमा मालिनी की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। उस समय हेमा मालिनी नई नई सुपरस्टार बन रही थी और देवानंद पहले से ही युवाओं के दिलों की धड़कन थे। कहा जाता है कि इस फिल्म के बाद हेमा मालिनी की लोकप्रियता और भी ज्यादा बढ़ गई थी। फिल्म के गानों का संगीत दिया था मशहूर संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी ने, जबकि गीत लिखे थे इंदिवर ने, और फिल्म का हर गीत सुपरहिट हुआ था।

दोस्तों, देवानंद सिर्फ अभिनेता नहीं थे, वे एक स्टाइल आइकॉन थे। उनके चलने का अंदाज, गर्दन झुकाकर जब वो डायलॉग बोला करते थे, और तेज रफ्तार अभिनय युवाओं में फैशन बन गया था। उस दौर में लड़के देवानंद जैसी हेयर स्टाइल और जैकेट पहनना पसंद करते थे। इस फिल्म के निर्देशन की बात करें तो विजय आनंद को हिंदी सिनेमा का मास्टर ऑफ सस्पेंस कहा जाता था। उन्होंने फिल्म में कई ऐसे ट्विस्ट डाले थे जो उस दौर में बिल्कुल नए लगते थे। फिल्म की एडिटिंग और कैमरा एंगल्स आज भी फिल्म स्कूलों में दिखाई जाती है और ये चर्चा का विषय बने रहते हैं।

0: दोस्तों, एक समय ऐसा भी आया जब फिल्म इंडस्ट्री में मल्टी स्टारर और एक्शन फिल्मों का दौर तेज हो रहा था। लेकिन ये फिल्म जॉनी मेरा नाम ने ये साबित किया कि अगर कहानी मजबूत हो, संगीत शानदार हो और निर्देशन दमदार हो, तो फिल्म इतिहास बन जाती है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी हिट हुई थी, और उस दौर में जब ये साल 1970 था, तो अगर कमर्शियल बात करें तो सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल थी। फिल्म में अभिनेता प्राण का किरदार भी दर्शकों को बेहद पसंद आया था। उस दौर में प्राण अक्सर खलनायक की भूमिका निभाते थे, लेकिन उनकी स्क्रीन प्रेजेंस इतनी प्रभावशाली थी कि कई बार दर्शक तालियां बजाने लगते थे, और इस फिल्म में उनका अभिनय फिल्म की सबसे बड़ी ताकत बना था। दोस्तों, इस फिल्म की सफलता ने देव आनंद और विजय आनंद की जोड़ी को हिंदी सिनेमा की सबसे सफल जोड़ियों में शामिल कर दिया था।
1: बार बार जेल जा चुका है तो इन हसीन आंखों में तेरे लिए सिवाय नफरत के कुछ नहीं रहेगा।
2: नफरत

तो दोस्तों, ये फिल्म जॉनी मेरा नाम सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, बल्कि वो दौर था जब हिंदी सिनेमा में स्टाइल, संगीत और सस्पेंस का एक नया चैप्टर लिखा जा रहा था। देवानंद की मुस्कान, हेमा मालिनी की अदाएं, कल्याण जी आनंद जी का संगीत और विजय आनंद का निर्देशन, इन सब ने मिलकर इस फिल्म को अमर बना दिया। और इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी कार्यक्रम एक ही फिल्म से में, एक नई कहानी, नए किस्सों और सदाबहार गीतों के साथ। नमस्कार।

अभी आप कार्यक्रम सुन रहे थे एक ही फिल्म से। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलो हर्ट्ज पर। आइए अब सुनते हैं स्पोर्ट्स कैन।

0: नमस्कार स्पोर्ट्स कैन के आज के
1: के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं शक्ति सिंह और श्रोताओं तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ मोना पार्थ सारथी। मोना, आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद, सभी श्रोताओं को नमस्कार।
0: सबसे पहले नजर डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला जारी। कल कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराया। एशियाई अंडर 15 अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों का शानदार प्रदर्शन जारी। साहिल जाधव ने तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। और आईएसएल फुटबॉल लीग में जमशेदपुर एफसी और बेंगलोर एफसी के बीच मुकाबला जारी।

0: आईपीएल क्रिकेट में आज जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला खेला जा रहा है। ताज़ा समाचार मिलने तक गुजरात ने 11 ओवर में एक विकेट खोकर 119 रन बना लिए थे। इससे पहले राजस्थान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। अगर अंक तालिका की बात की जाए मुना तो राजस्थान चौथे स्थान पर है और पाँचवें नंबर पर गुजरात की टीम है। आज जो जीतेगी उसके लिए ये मैच एक लॉटरी से कम नहीं होगा।
1: बिल्कुल लॉटरी से कम नहीं होगा, क्योंकि आप अगर अंक तालिका पर नज़र डालें तो सनराइज़र्स हैदराबाद शीर्ष पर हैं, 11 मैचों में 14 अंक है और इन दोनों टीमों के 12-12 अंक हैं। तो जो भी टीम जीतती है उसके पास दूसरे या हो सकता है पहले स्थान पर भी जाने का एक सुनहरा मौका हो।
0: जी बिल्कुल, एक सुनहरा मौका कि आप दूसरे स्थान पर तो कम से कम जाएंगे और अगर अच्छे अंतर से जीतते हैं तो पहला स्थान भी आपका इंतजार कर रहा है। इससे पहले कल खेले गए मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। एक रिपोर्ट।
2: जैसे जैसे आईपीएल आगे बढ़ रहा है प्लेऑफ की दौड़ और भी रोमांचक होती जा रही है। इसी दौड़ में बने रहने की उम्मीदों को लिए कल दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में आमने सामने आए कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स, जहां केकेआर ने दिल्ली को 8 विकेट से हराते हुए सीजन में लगातार अपनी चौथी जीत दर्ज की। पहले बल्लेबाजी करने उतरी कैपिटल्स ने 20 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 142 रन लगाए। प्रथम निशंका ने सर्वाधिक 50 रन बनाए जबकि आशुतोष शर्मा ने 39 का योगदान दिया। केकेआर की ओर से कार्तिक त्यागी और अनुकूल रॉय ने दो दो विकेट लिए। 143 रन के लक्ष्य को केकेआर ने 14 ओवर और 2 गेंद में 2 विकेट खोकर आसानी से हासिल कर

0: टीम के लिए जीत के हीरो रहे फिन एलन, जिन्होंने 47 गेंदों में नाबाद 100 रन की शानदार पारी खेली। इस जीत के बाद कोलकाता को प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदों को नई जान मिली है, जबकि दिल्ली के लिए रास्ता बेहद मुश्किल हो गया है। विशेष शुक्ला, स्पोर्ट्स कैन।
1: कोलकाता के लिए कल का मुकाबला किसी तोहफे से कम नहीं होगा, क्योंकि उसने भी सोचा नहीं होगा कि दिल्ली अपने मैदान पे इतनी आसान जीत उसको दे देगी।
2: देखिए, पूरे टूर्नामेंट में अगर हम दिल्ली के प्रदर्शन को देखें तो पैचेस में किसी मैच में उसके गेंदबाज चलते हैं तो किसी मैच में उसके बल्लेबाज चलते हैं। एक इकाई के रूप में जो प्रदर्शन की बात होती है वो दिल्ली अभी तक कर नहीं पाई है। 200 से ऊपर का स्कोर करके भी मैच हारी है दिल्ली की टीम। और अगर कल के मैच की हम बात करें तो केकेआर की यहाँ तारीफ करनी पड़ेगी कि ये इतना लंबा टूर्नामेंट है जिसमें सही समय पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। केकेआर की शुरुआत धीमी रही लेकिन लगातार 4 मैच जीते हैं टीम ने, और आप देखिए कि उसके जो टॉप ऑर्डर है, उसके जो फिनिशर है, उसके जो बॉलर है, सब जबरदस्त फॉर्म में। कल फिन एलन ने 5 चौके और 10 छक्के, उसमें एक छक्का 92 मीटर का था। तो जो आक्रामक बल्लेबाजी का प्रदर्शन कल उन्होंने किया है, पूरी तरह से दिल्ली के जो गेंदबाज हैं वो दबाव में नजर आए। और यहाँ पर अक्षर पटेल और कुलदीप यादव, जो आईपीएल से ठीक पहले जबरदस्त फॉर्म में चल रहे थे, बिल्कुल निराश किया उन्होंने। उनकी गेंदों में वो दिशा और दशा नजर ही नहीं आ रही थी जिसके लिए वो जाने जाते हैं। तो यहाँ पर दिल्ली को काफी निराशा। और मैच के बाद तो अक्षर पटेल ने बोला भी कि अब जो भी होगी प्लानिंग वो अगले सीजन के लिए होगी। मतलब टेक्निकली, मैथमेटिकली भले ही दिल्ली अभी कहीं ना कहीं प्लेऑफ की दौड़ में है, लेकिन अंदर से टीम मैनेजमेंट समझ चुका है कि अब उनके लिए जो है रास्ते बंद हो चुके हैं। और कोलकाता की जीत में फिन एलन ने निश्चित तौर पर अच्छा प्रदर्शन किया। कैमरन ग्रीन के साथ जो उनकी साझेदारी थी, शतकीय साझेदारी, वो काफी अच्छी रही। और यहां विशेष तौर पर बात करनी पड़ेगी एक ऐसे खिलाड़ी की जो शुरू से कोलकाता नाइट राइडर का ट्रंप कार्ड रहा है, वह सुनील नारायण। 4 ओवर 17 रन 1 विकेट। ऐसे आईपीएल में जिसमें गेंदबाजों के लिए कुछ भी नहीं है, जसप्रीत बुमराह जैसे गेंदबाज भी यहां पिट रहे हैं, ऐसे में ये इस तरीके का प्रदर्शन करना, अनुकूल रॉय गेंदबाजी के साथ जो एक कैच उन्होंने लपका था वो भी बहुत जबरदस्त था। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि केकेआर जो है वो सही समय पर एक इकाई के रूप में अच्छा प्रदर्शन कर पा रही है और यहां से आगे उनकी राह मुझे आसान होती हुई नजर आ रही है।
1: जी बिल्कुल, जिस तरह का कमबैक इस सीजन में केकेआर की तरफ से देखने को मिला, पहले 6 मुकाबलों में 5 हारे, एक टाई और लगातार 4 जीत, तो टीम एक अच्छी पटरी पर है। वहीं दिल्ली के लिए मुश्किल ये भी होगी कि आने वाले 3 मैचों में पंजाब, राजस्थान और एक बार फिर कलकत्ता की टीम सामने होगी। उज़्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 15 अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में आज भी भारतीय मुक्केबाजों का शानदार प्रदर्शन जारी रहा। 8 भारतीय मुक्केबाज अंडर 15 में आज खेले गए सेमीफाइनल मुकाबलों में जीत दर्ज करके फाइनल में पहुंच गए। ये खिलाड़ी अब फाइनल में स्वर्ण पदक के लिए अपनी चुनौती पेश करेंगे, जबकि 5 भारतीय मुक्केबाजों को सेमीफाइनल में हार के बाद कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। तो कह सकते हैं कि ताशकंद में भारतीय मुक्केबाज अपने हर मुक्के के साथ एक नए पदक की आस भारत को दिलाते हुए।
2: और सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है ना कि अंडर 15 और अंडर 17 आयु वर्ग के चैंपियनशिप है, और यहाँ से जो निकलेंगे उनके लिए आगे जो बहुराष्ट्रीय बहु खेल टूर्नामेंट होते हैं, जैसे एशियन गेम्स है, राष्ट्रमंडल खेल है या ओलंपिक है, उनके लिए यहाँ पदक जीतने वालों का मनोबल बढ़ेगा। और जो भारत का पूल तैयार होगा, जैसे हम अगले ओलंपिक लॉस एंजलिस के बाद ब्रिस्बेन, या जो हम खुद आकांक्षा कर रहे हैं कि भारत में 2036 ओलंपिक हो, तो उसकी दृष्टि से अगर हम देखें तो काफी अच्छा यहां से एक्सपोजर मिलेगा इन खिलाड़ियों को, जिनमें से भविष्य के लिए पूल तैयार होगा।
1: जी बिल्कुल, भविष्य के लिए पूल तैयार होंगे और ये मेडल इन खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अच्छा प्रदर्शन करने का और प्रोत्साहन लेकर के साथ आएंगे। और अब मुक्केबाजी के बाद रुक करते हैं तीरंदाजी का, जहां चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में आज साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डेम्सबे को 147-144 से हराया। एक रिपोर्ट।
3: महाराष्ट्र के 25 वर्षीय तीरंदाज साहिल जाधव ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डेम्सबो को 147-144 से हराकर मौजूदा टूर्नामेंट में भारत का पहला पदक हासिल किया। ये विश्व कप में उनका पहला व्यक्तिगत पदक भी है। जाधव पहले सेट के बाद 1 अंक से पीछे चल रहे थे, लेकिन भारतीय खिलाड़ी ने दूसरे सेट में परफेक्ट 30 का स्कोर बनाया, जबकि डेम्सबो 27 का स्कोर ही बना पाए। इससे जाधव को कुल 59-57 की बढ़त हासिल करने में मदद मिली और अपने अंतिम 9 तीरों में

0: केवल 2 अंक गवा कर 3 अंक की यादगार जीत हासिल की। हालांकि सेमीफाइनल में उन्हें फ्रांस के मौजूदा विश्व चैंपियन निकोलस गिरार्ड से 1 अंक से हार का सामना करना पड़ा था। भारत ने इस पदक के साथ कंपाउंड वर्ग में अपने अभियान का भी समापन किया। भारत अब कल प्रतियोगिता के समापन दिवस पर रिकवर स्पर्धा में 2 और पदक जीतने की कोशिश करेगा। भारतीय महिला टीम स्वर्ण पदक के लिए प्रतिस्पर्धा करेगी, जबकि सिमरनजीत कौर सेमीफाइनल से अपने अभियान की शुरुआत करेंगी। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैट।
1: जो पदक भारत ने आज के लिए जीता, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन

0: जीत कौर सेमीफाइनल से अपने अभियान की शुरुआत करेंगी। वैष्णवी स्पोर्ट्स कार्ड।
1: जो पदक भारत ने आज के लिए जीता एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन नज़र कल होगी जहां पे स्वर्ण पदक के लिए, वो भारतीय टीम जो कोरिया को हरा करके पहुंची है, 10 बार की चैंपियन कोरिया टीम को कल चीन सामने होगा, कितना दबाव होगा?
2: देखिए, सबसे पहले तो आज जो साहिल ने किया है उसकी बात करते हैं कि कंपाउंड में पिछली बार भारत को 5 पदक मिले थे और इस बार बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन रहा, तो इसको एक कॉन्सोलेशन कह सकते हैं कि, और वो भी साहिल जैसे युवा खिलाड़ी जिसके लिए ये दूसरा ही करियर का बड़ा पदक है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में पदक जीत चुके हैं और सामने बहुत ही अनुभवी तीरंदाज थे, पहले सेट में पिछड़ भी गए थे, उसके बाद भी जो शूटिंग और आर्चरी है नर्व्स का खेल होता है, एक सांस से बदल जाता है मुकाबला, तो वहाँ पर उसको कंपोजर बनाए रखते हुए उन्होंने जो प्रदर्शन किया वो वाकई काबिले तारीफ है। और अगर हम कल की बात करें रिकर्व में महिला टीम की, तो दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कुमकुम महोद जैसे युवा खिलाड़ी हैं, अनुभव और युवा खिलाड़ी का अच्छा तालमेल है, साउथ कोरिया को हराया है 10 की चैंपियन, मनोबल काफी बड़ा होगा और बड़े मुकाबलों में खेलने का काफी अनुभव दीपिका के पास है, अंकिता के पास है, तो मुझे लगता है कि ये जो चाइना से मुकाबला होने वाला है यहां पर वो अनुभव जरूर उनका काम आएगा। और पिछले कुछ अरसों में अगर हम प्रदर्शन को देखें, चाहे वो दीपिका हो चाहे वो अंकिता हो, कहीं ना कहीं एक निराशा होगी कि बड़े टूर्नामेंट में वो पदक जीतने में नाकाम रहे, तो उनके पास ये बहुत ही सुनहरा मौका है। और व्यक्तिगत वर्ग की अगर हम बात करें, सिमरनजीत, आप देखिए कॉम्पिटिशन का लेवल कि जब क्वालिफिकेशन हो रहा था तो दीपिका से 3 अंक से पीछे रह गई थी सिमरनजीत और टीम स्पर्धा में जगह बनाने में नाकाम रही, तो उनके पास भी अब एशियन गेम्स की पदक विजेता रह चुकी है, तो उनके पास भी एक नया इतिहास लिखने का ये सुनहरा मौका है।
1: जी बिल्कुल, जिस तरह का पहला चरण भारत के लिए रहा था, बहुत अच्छी नतीजे वहां से भारत के लिए नहीं आए थे, तो उम्मीद होगी यहां पे कम से कम कुछ पदकों के साथ इस अभियान को समाप्त किया जाए। और अब बात करते हैं फुटबॉल की। ISL फुटबॉल लीग में जमशेदपुर FC और बेंगलोर FC के बीच मुकाबला जारी है। तक समाचार मिलने तक बेंगलोर FC ने जमशेदपुर पर 1-0 की बढ़त बना ली है। वहीं आज खेले गए एक अन्य मुकाबले में गोवा FC ने मोहन बगान FC के बीच साथ एक-एक से मुकाबला ड्रॉ खेला। एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता सोमवार से गुजरात के गांधीनगर में शुरू हो रही है। भारत 44 साल बाद इस प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष सहदेव यादव ने बताया कि गुजरात इस प्रतियोगिता की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता में दुनिया के शीर्ष खिलाड़ी भाग लेंगे।
3: एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप की तैयारी पूरी है और 102 मैन और 77 गर्ल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। गुजरात गवर्नमेंट को धन्यवाद करना चाहूंगा, एशियन चैंपियनशिप पहली बार हो रही है वो भी गुजरात में। कॉमनवेल्थ गेम जो 2030 में होना है उसके लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरा भाई चानू को ज्यादा इंजरी नहीं है, थोड़ा सा उसने शोल्डर में पेन महसूस किया था, तो इसलिए कहीं ज्यादा इंजरी ना हो जाए उसको अभी रेस्ट दे दें। कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल लेना बहुत जरूरी है और एशियन गेम्स में, इसलिए हमने उसको ड्रॉप किया है।
1: इससे कुछ महीने पहले गुजरात ने ही कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप की मेजबानी की थी, जहां भारतीय खिलाड़ियों का एक अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला था। यहाँ पर क्या महत्वाकांक्षाएं होंगी अपने भारोत्तोलन के खिलाड़ियों से भारत को?
2: बिल्कुल होगी, क्योंकि एक वैसे थोड़ा सा सेटबैक है कि मीराबाई चानू इसमें भाग नहीं ले रही है, हालांकि ये राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेलों को ध्यान में रखते हुए कोई जोखिम लेना ठीक नहीं समझा होगा, और वो सही भी है, लेकिन दुनिया भर के काफ़ी नामी गिरामी ओलंपिक मेडलिस्ट, एशियन गेम्स मेडलिस्ट इसमें भाग ले रहे हैं, तो एक अच्छा एक्सपोजर होगा और राष्ट्रमंडल खेलों के लिए ये क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट भी है, तो यहाँ से काफ़ी कोटा स्थान हासिल करने की उम्मीद है। और चूंकि गांधीनगर में हो रहा है और ये वही जगह है जो हमारे राष्ट्रमंडल खेलों का अहमदाबाद मेज़बान है और ओलंपिक के लिए भी हम अहमदाबाद ही चुने हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा कि वहाँ किस तरीके का प्रदर्शन रहता है। और आगे चूंकि ये बहुत ही पैक्ड शेड्यूल है, बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम है आगे, तो यहाँ से जितने खिलाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा पदक मिलेंगे उतना ही मनोबल उनका बढ़ेगा।
1: जी बिल्कुल, मनोबल के साथ स्ट्रेंथ और फिटनेस मेंटेन रखने की भी परीक्षा कल से शुरू होगी और देखा जाता है कि भारत के लिए ये प्रतियोगिता किस तरह से गुजरती है। मिस्र के गीजा में विश्व स्क्वाश प्रतियोगिता में वीर चोटरानी अगले दौर में पहुंच गए हैं। वीर ने कल पुरुषों के पहले राउंड में हमवतन अभय सिंह को 5 गेम तक चले मुकाबले में 14-12, 8-11, 5-11, 11-7 और 11-2 से हराया। चोटरानी कल दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी मिस्र के मुस्तफ़ा असल का सामना करेंगे। अन्य भारतीय खिलाड़ियों की बात की जाए तो रमित टंडन, वेलावन सेंथिल कुमार

0: बाहर हो गए और अभय भी कल बाहर हो गए थे, और महिला वर्ग में भारत की तरफ से कोई चुनौती इस बार नहीं है इस चैंपियनशिप में अपने अपने कारणों से, तो भारत के लिए बहुत अच्छी प्रतियोगिता ना गुजरती हुई अब तक।
1: बिल्कुल, लेकिन वीर छोटरानी का हालिया प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है, तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ से वो भारत के लिए कुछ अच्छी खबर लेकर आएंगे।
0: जी बिल्कुल, अच्छी खबरों की आस होगी। और बात करते हैं नई दिल्ली में चल रही निशानेबाजी प्रतियोगिता की, जहाँ नई दिल्ली में 24वीं कुमार सुरेंद्र सिंह मेमोरियल निशानेबाजी प्रतियोगिता में आज रेलवे और सेना की टीम का दबदबा देखने को मिला। रेलवे का प्रतिनिधित्व कर रहे ओलंपियन अनीश भानवाला ने आज पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। नई दिल्ली की कर्णी सिंह शूटिंग रेंज में चैंपियनशिप के फाइनल में अनीश ने 31 का स्कोर करके पोडियम पर शीर्ष स्थान हासिल किया। वहीं 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल की टीम स्पर्धा में आर्मी की यूनिट ने स्वर्ण पदक जीता। तो एक प्रतियोगिता मुख्य रूप से भोपाल में खेली जा रही है, लेकिन कुछ मुकाबले इसके दिल्ली में भी चल रहे हैं, जहाँ भारतीय निशानेबाज जो लगातार हर टूर्नामेंट में बेहतर प्रदर्शन करते हैं, यहाँ भी कुछ ऐसा ही नजर आता हुआ।
1: बिल्कुल, कर्णी सिंह शूटिंग रेंज देखिए, अनीश भानवाला वहीं अभ्यास करते हैं और उनके लिए तो बिल्कुल घर जैसा है, और ओलंपियन रह चुके हैं, पदक कई बड़े टूर्नामेंटों में पदक विजेता है, तो उनके लिए चुनौती आसान थी और अपेक्षा के अनुरूप ही कहा जाएगा उनका प्रदर्शन रहा।
0: जी बिल्कुल, और अंत में चलते चलते एक बार स्कोर पर नजर डाल लेते हैं, जहाँ गुजरात और राजस्थान के बीच मुकाबला जारी है, और गुजरात ने इस समय 14 ओवर और 5 गेंद में 2 विकेट खोकर 165 रन बना लिए हैं। और श्रोताओं, समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, मोना आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: शुक्रिया।
0: और श्रोताओं, इसी के साथ मुझे और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए, नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 5 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख विजय ने कांग्रेस, वीसी के, आईयूएमएल और वाम दलों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया। कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भारत ने MIRV प्रणाली से लैस अग्नि मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे, कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा को धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया, और साहिल जाधव ने तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल RN रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 मंत्रिमंडल मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशीत प्रमाणिक और खुदीराम टुडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित रहे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने की तुरंत बाद ही शुभेंदु अधिकारी प्रशासनिक काम में जुट गए। ब्रिगेड में शपथ ग्रहण समारोह के बाद वो जोरासा को ठाकुरबाड़ी गए और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद मैदान में PWD की टेंट में राज्य पुलिस और प्रशासन की शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की। बाद में शाम को भवानीपुर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के निवास पर जाकर राज्य के पहले BJP मुख्यमंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पूरी मंत्रिमंडल का गठन अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री ने अगले सोमवार 9 में प्रशासनिक कामकाज की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक बुलाया है। कलकत्ता से आकाशवाणी के लिए अभिरूप भट्टाचार्य।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने श्री अधिकारी को आगामी कार्यकाल की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने 5 मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि मंत्री के रूप में ये सभी पश्चिम बंगाल के विकास पथ को और मजबूत करेंगे। तमिलनाडु में तमिलगम

0: वेत्री कड़गम टीवीके के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने आज लोक भवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री विजय कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। एक रिपोर्ट।
1: हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में टीवी के 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में पार्टी को नई सरकार के गठन के लिए 118 सीट की आवश्यकता है। चेन्नई में आज संवाददाताओं से बातचीत में टीवी के नेता अधव अर्जुन ने बताया कि VCK और IUML दोनों ने सरकार गठन के लिए उसे बिना शर्त समर्थन दिया है। दो विधानसभा क्षेत्रों से जीत हासिल करने वाले विजय को एक सीट खाली करनी होगी, जिससे TVK की संख्या घटकर 107 रह जाएगी। हालांकि TVK पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, VCK और IUML से कुल 13 विधायकों का समर्थन मिल चुका है। इनमें कांग्रेस के 5 और अन्य सहयोगी पार्टियों के 2-2 विधायक हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। UDF की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे पर गुडे बेलूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। इसकी कुल लागत 3,175 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सोमनाथ महादेव मंदिर में आज आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में आज से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से लगभग 1,25,000 आहुतियां अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सोमनाथ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत पर्व के आयोजन की समीक्षा की। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY की 25वीं वर्षगांठ पर कल मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भैरुंदा में रजत जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इस दौरान PMGSY के चौथे चरण का भी शुभारंभ किया जाएगा। कार्यक्रम में श्री चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को राज्य में 973 सड़कों के लिए वित्तीय आवंटन और स्वीकृति पत्र सौंपेंगे। समारोह

0: में श्री चौहान वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 18,907 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सरकार द्वारा 11 वर्ष पहले शुरू की गई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना जैसी प्रमुख सामाजिक सुरक्षा और पेंशन योजनाओं से हुए लाभों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये योजनाएं देश के लोगों के लिए गरिमा, आश्वासन और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। भारत ने कल ओडिशा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल एमआईआरवी प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। एमआईआरवी ऐसी तकनीक है जिससे एक ही मिसाइल कई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस मिसाइल का परीक्षण कई पेलोड के साथ किया गया जिसका निशाना हिंद महासागर के भौगोलिक क्षेत्र में फैले विभिन्न लक्ष्यों पर था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्नि मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ, सेना और उद्योग जगत की सराहना की है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड से जुड़े एक कथित धन शोधन मामले में पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार किया है। इससे पहले ईडी ने इस मामले में दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 5 स्थानों पर छापेमारी की थी। ये कार्रवाई धन शोधन रोकथाम अधिनियम पीएमएलए 2002 की आपराधिक धाराओं के अंतर्गत की गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह की कंपनियों के खिलाफ दर्ज 3 मामलों के सिलसिले में मुंबई के 17 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। सीबीआई ने बताया है कि ये तलाशी अभियान कंपनियों के निदेशकों के आवासीय परिसरों के साथ साथ उन मध्यस्थ कंपनियों के कार्यालयों में भी चलाए जा रहे हैं जिनके खातों का इस्तेमाल बैंक निधि के गबन के लिए किया गया था। सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा कर दी है। देश भर से चुनी गई 42 पंचायतों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने बताया है कि पुरस्कार वितरण समारोह 3 जून को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार कर्नाटक ने सबसे अधिक पुरस्कार प्राप्त किए हैं जहां 6 पंचायतों को चुना गया है। इसके बाद आंध्र प्रदेश और ओडिशा का स्थान रहा जहां प्रत्येक को 5-5 पुरस्कार मिले हैं। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीईडीए ने आज असम के बक्सा जिले से अमेरिका को 20 मीट्रिक टन शहद की पहली खेप का निर्यात किया। एपीईडीए के प्रसंस्करण संयंत्र में परीक्षण और प्रयोगशाला उपकरण उपलब्ध कराने सहित बुनियादी ढांचे के विकास में सहयोग से ये निर्यात संभव हुआ। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। अमेरिका ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया में चल रहे क्षेत्रीय संघर्ष को समाप्त करने के उद्देश्य से एक प्रस्तावित 14 सूत्रीय रूपरेखा पर ईरान की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है। एक रिपोर्ट।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया कि तेहरान की प्रतिक्रिया वार्ता के अगले चरण को निर्धारित कर सकती है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने हालिया अमेरिकी सैन्य कार्रवाइयों की आलोचना करते हुए अमेरिका पर तनाव बढ़ाकर कूटनीतिक प्रयासों को कमजोर करने का आरोप लगाया। ये ताजा घटनाक्रम हॉर्मुज जलडमरू मध्य और उसके आसपास की घटनाओं के बाद सामने आए हैं जिनमें ईरानी और अमेरिका सेनाओं के बीच नौसैनिक मुठभेड़ की खबरें शामिल हैं। अमेरिका के अधिकारियों ने ईरान के ड्रोन कार्यक्रम से जुड़े नेटवर्क को निशाना बनाते हुए नए प्रतिबंधों की भी पुष्टि की है। हालांकि तनाव के बावजूद न तो अमेरिका और न ही ईरान ने औपचारिक रूप से युद्ध विराम के टूटने की घोषणा की है। इस बीच इसराइल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए अपने अभियान तेज कर दिए हैं। समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
0: चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डैम्सबो को हराया। भारतीय महिला रिकर्व टीम कल स्वर्ण पदक के लिए चीन का सामना करेंगी जबकि सिमरनजीत कौर अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी। वहीं आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक गुजरात ने 17वें ओवर में 3 विकेट

0: पर 186 रन बना लिए हैं। राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। राजस्थान अंक तालिका में चौथे जबकि गुजरात पांचवें स्थान पर है। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। बिहार में आज तेज हवाएं चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरल, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा, रायलसीमा, तेलंगाना और दक्षिणांतरिक कर्नाटक में कल तक बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना है। इस बीच कोंकण और गोवा के कुछ स्थानों पर गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 5 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख विजय ने कांग्रेस, वीसी के, आईयूएमएल और वाम दलों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया। कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भारत ने एमआईआरवी प्रणाली से लैस अग्नि मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा को धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया। और साहिल जाधव ने तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Shubhendu Adhikari takes oath as first BJP Chief Minister of West Bengal. 5 MLAs also sworn in as cabinet ministers. TVK Chief C. Joseph Vijay stakes claim to form government in Tamil Nadu with support of Congress, VCK, IUML and left parties. Set to take oath as Chief Minister tomorrow. India conducts successful flight trial of advanced variant of Agni missile with MIRV system. Prime Minister Narendra Modi to launch several development projects during his day-long visit to Karnataka and Telangana tomorrow. Enforcement Directorate arrests Punjab Cabinet Minister Sanjeev Arora in alleged money laundering case. And in archery, India Sahil Jadhav wins bronze medal in men's individual compound event at World Cup Stage 2 in Shanghai. Shubhendu Adhikari took oath as the first BJP Chief Minister of West Bengal today. Governor R. N. Ravi administered the oath of office in secrecy to Mr. Adhikari at a grand ceremony held at the Brigade Parade Grounds in Kolkata. Along with him, 5 other MLAs including Dilip Ghosh, Agnimitra Paul, Ashok Kirtania, Nishit Pramanik and Khudiram Tudu were sworn in as cabinet ministers. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, Chief Ministers of various NDA and BJP ruled states, BJP President Nitin Naveen and several other leaders of the BJP attended the ceremony. The swearing-in ceremony was held on Pochishe Boishakh, marking the 165th birth anniversary of poet Guru Rabindranath Tagore. We have more from our correspondent.
2: After taking the oath as Chief Minister of West Bengal, Shubhendu Adhikari held meeting with the Chief Secretary, Home Secretary and other officials of the state at the PWD tent at Maidan. Meanwhile, renovation works are underway at the Writers Building in Kolkata for reshifting of the Secretariat of the State Government, which was shifted from this heritage building to the Navanno after Mamata Banerjee came to power in 2011. The new BJP government will work from the Writers Building, which is a heritage structure. In an important development today, special observer for the West Bengal for SIR, retired IAS officer Subroto Gupta has been appointed as the advisor to the Chief Minister of West Bengal and the 2017 batch IAS officer Shantanu Bala appointed as the personal secretary to the CM. It is learned that on 30th May, the newly elected MLAs of West Bengal will take oath at the assembly in Kolkata. Kollan Laha reporting from Kolkata.
1: The BJP registered a decisive victory in the recent state assembly elections, securing 260

0: अभी आप कार्यक्रम सुगम संगीत सुन रहे थे। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ से बोल रहे हैं मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर। अगला कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया जाएगा, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी की अखिल भारतीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता। आज के इस अंक में हम चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जो मंच के पर्दों से शुरू होती है, लोकगीत की गूंज से गुजरती है और बुद्ध की पावन स्मृति तक जाती है। आज की पत्रिका के पहले पड़ाव पर हम मिलेंगे एक ऐसे रचनाकार से जिनके कलम ने कभी भी समझौता नहीं किया, जिनके नाटकों को बंद कराने की मांगे उठी पर जिनकी आवाज कभी दबी नहीं, शब्दों का विद्रोही विजय तेंदुलकर। सन 1928 6 जनवरी महाराष्ट्र के पुणे शहर में एक बच्चे का जन्म हुआ, विजय धोंडोपंत तेंदुलकर। पिता एक प्रकाशक थे तो घर में किताबों की सुगंध थी बचपन से। आर्थिक तंगी में बड़े हुए तेंदुलकर ने जल्दी ही काम शुरू किया, पत्रकारिता, अनुवाद, सिनेमा लेखन का। लेकिन उनकी असली पहचान बनी नाटकों से। मराठी में लिखे, हिंदी में अनुदित हुए और पूरे भारत में खेले गए उनके नाटकों ने दर्शकों को बेचैन किया और यही उनका उद्देश्य भी था। उन्होंने कहा, मैं दर्शकों को सुकून देने के लिए नहीं लिखता, मैं उन्हें उनके अपने चेहरे से मिलवाने के लिए लिखता हूँ, चाहे वो चेहरा कितना भी भद्दा क्यों ना हो। शांतता कोर्ट चालू आहे, यानी खामोश अदालत जारी है। सन 1967 में लिखा ये नाटक भारतीय रंगमंच का एक मील का पत्थर है। एक मंडली है, एक स्त्री है बेनी, जो एक नकली अदालत में असली सच्चाइयों का सामना करती है। समाज, परंपरा और पुरुष की सत्ता के विरुद्ध ये नाटक आज भी उतना ही प्रासंगिक है। और फिर सखाराम बाइंडर, 1972 में लिखा गया ये नाटक एक मध्यवर्गीय पुरुष जो कि अपने घर में स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करता है, उसकी कहानी है। ये नाटक इतना विस्फोटक था कि उसे बंद कराने की मांग उठी। अदालत ने प्रतिबंध नहीं लगाया और तेंदुलकर की जीत हुई, कलम की जीत हुई। फिर घासीराम कोतवाल, ये नाटक इतिहास, राजनीति और सत्ता के खेल का ऐसा चित्रण था कि महाराष्ट्र में इसे हटाने की मांग उठी। पेशवाई के दौर की पृष्ठभूमि में लिखा गया ये नाटक राजनीति की दुष्प्रवृत्तियों का एक आईना सा बन जाता है। 19 मई 2008 को विजय तेंदुलकर इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनके नाटक आज भी मंचित होते हैं, मुंबई में, दिल्ली में, पुणे में, कोलकाता में और न जाने कितनी जगहों पर। उनके पात्र आज भी जीवित हैं। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण और अनगिनत सम्मान मिले, लेकिन उनकी असली पहचान वो बेचैनी है जो उनके नाटक देखने के बाद हमारे मन में घर कर जाती है। विजय तेंदुलकर ने ही एक बार कहा था,

0: आकाशवाणी के 90 वर्ष की ये यात्रा जिसमें अनगिनत आवाजें घुली हुई हैं, अनगिनत सुर समाए हुए हैं, इस ऐतिहासिक पड़ाव पर हम मिलते हैं उस आवाज से जिसने लोकगीत को गांव की मेड़ से उठाकर विश्व मंच तक पहुंचा दिया, परंपरा को नया जीवन दिया। इसके साथ साथ शास्त्रीय गायन में भी उन्होंने एक विशेष पहचान बनाई है और अभी कुछ ही समय पहले उन्होंने अपने संस्मरणों को एक पुस्तक के रूप में भी विमोचित किया है। सुनते हैं पद्मश्री मालिनी अवस्थी को।
1: मैं तो यही कह सकती हूँ कि हम लोग बड़े भाग्यवान रहे, हम आकाशवाणी के स्वर्ण युग की रश्मियां हैं। वाचन कैसा हो और कैसी भाषा हो तो आकाशवाणी ने सिखाया। अब आज जो बोलने की शैली है, क्षमा करेंगे मुझे, मुझे कहने दीजिए, अनुमति प्रदान करें जो मैं बोलूं, शायद बहुत लोगों को अखरेगा। इस मामले में मैं थोड़ा परंपरावादी हूं कि ये तो सच है कि आपको नई जनरेशन से जुड़ने के लिए अपने को बदलना पड़ेगा, ये ठीक है, लेकिन नई जनरेशन के लिए जब आप बदलेंगे तो आप उनको सुनाना क्या चाहते हैं, उनकी चीजें अपनी चीजें, आप उनके लिए बदलिए लेकिन सुनाइए तो क्वालिटी की चीजें। मैंने तो वो दौर देखा है आकाशवाणी का, आकाशवाणी की जो उर्दू सर्विस होती थी उसकी जो तकरीरें थी, जो गुफ्तगू थी, उसको सुनने के लिए हम लोग लगाते थे। उर्दू सर्विस की बात करूं, हम लोग वो तकरीरें सुनते थे जिसमें कि कोई एक कहानी लेती थी और उस कहानी को बयान करती थी, उस कहानी की वही नायिका है। अब वो कहानी को पढ़ रही है, आप कहेंगे आजकल क्या कोई वन एक्ट प्ले करेगा, कि उस कहानी को पढ़ने का अंदाज ऐसा होता था कि उस कहानी को सुनकर आपको लगता था फिल्म देख रहे हैं पूरा। तलफ्फुज इतना अच्छा, अदायगी इतनी कमाल की कि आपको लगता था क्या बात है। तो हम लोग ने जो थिएट्रिक्स है, जो अपने गाने बजाने में भी, वो सब रेडियो से बहुत सीखा। तो मुझे लगता है कि चाहे वो भाषाई इल्म हो, लिटरेचर हो, पोइट्री हो, क्वालिटी म्यूजिक हो, क्योंकि आकाशवाणी से गानों का, जो फिल्म के गाने भी प्रसारित होते थे, उसका भी एक स्तर होता था। हमारे और भाई और हम लोग ये बात कर रहे थे कि हमारा म्यूजिक का जो सेंस बना वो अर्ली 70s को सुन करके बना, कि अर्ली 70s में जैसे फिल्म के गाने आ रहे थे, जैसा नॉन फिल्मी गाना बन रहा था उसने हमारा शेपअप कर दिया, क्योंकि रेडियो ही हमारा सबसे बड़ा साधन था। क्या बजता था, क्या मतलब क्वालिटी, तो यानी रेडियो में कोई फिल्म का गाना भी स्तरीय नहीं समझा जाता था तो नहीं। बहुत छोटी कलाकार हूँ और मेरी कोई हैसियत नहीं, लेकिन मैं अपनी ओर से ये जरूर यहाँ अर्ज करूंगी कि आज जब बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं और रेडियो के बहुत सारे प्लेयर्स हैं, यानी प्राइवेट इतने FMs हैं, इतने लोग आज कर रहे हैं, प्लीज आप वो सब मत बनिए, आप रहिए। आपको मैं यही बात दूरदर्शन के लिए कहूंगी कि दूरदर्शन को बाकी चैनल्स जैसा बनने की जरूरत नहीं है। आप क्वालिटी और तकनीक में आज की भाषा और आज की तकनीक को एड्रेस कीजिए, लेकिन कंटेंट वही रखिए। कौन बनाएगा प्रेमचंद, कौन बनाएगा टैगोर की कहानियों पर नाटक, कौन शरद चंद्र पे बनाएगा? यदि हम भी वही सब करने लगे तो मुझे तो लगता है कि आज के लिए तो यही मैं चाहूंगी कि आकाशवाणी आप ऐसी बात कहें जो सुनाए। आज रेडियो सबके पास है, कंटेंट अच्छा लगेगा तो सुनेगा, क्योंकि भीड़ में आप हमेशा से अलग थे, तो आपकी हमेशा से जो एक पहचान रही आकाशवाणी की वो भारतीयता रही है, भारत की कहानियां सुनाने, तो वो पहचान बनी रहे, बरगद का पेड़ बन के खड़े रहिए जिसको आंधियां नहीं हिला पाती। दो बज के 30 मिनट पे वो समय एक होता था, वो आकाशवाणी गोरखपुर के लिए भी, लखनऊ के लिए भी, सारे आकाशवाणी केंद्रों के लिए अलग अलग कलाकार रोज गाते थे वहां भी यहाँ भी। वो हम लोग उसको सुनने के लिए, क्योंकि वहां पे खाटी कलाकार गाते थे, जो सुगम संगीत गा रहे थे उनके लिए भी अनिवार्य शर्त रख दी गई उस दौर में, भोजपुरी जरूर गाएंगे, क्योंकि ये जियो आया था सरकार की ओर से और मेरे ख्याल में सारे रीजनल सेंटर्स को गया होगा कि वो अपने आंचलिक भाषा को पुष्ट करें। तो वो गाना अलग होता है कि आप सीख कर कुछ गाएं, लेकिन 2:30 बजे से आता था जो वहाँ के पारंपरिक लोक कलाकार, उसको सुनने के लिए, क्योंकि उसमें कुमाऊनी भी बजता था, गढ़वाली बजता था, ब्रज का रसिया बजता था, अवधी भी सब गाते थे हम लोग, तो बड़ा कमाल का एक वो। अब शास्त्रीय संगीत का तो प्रतिदिन कार्यक्रम होते, आप देखिए कि एक कार्यक्रम जो आपका एक होता था स्वर सरिता सुबह 7:15 बजे, जिसमें एक राग लेते थे और उस राग से उसको फिल्म में कैसे, वो बड़ा पॉपुलर कार्यक्रम था, क्योंकि जिनको नहीं शास्त्रीय संगीत समझ में आता है वो उस फिल्म के गाने से

समझ जाते थे, ओह अच्छा। मुझे लगता है आज फिर से उसी तरह से उस सहजता के साथ वो चीजों को लेकर के आने की जरूरत है। वो बड़ा कमाल का कार्यक्रम था। ऐसे मंगलवार को जो शास्त्रीय संगीत की सभा, मंगलवासी, सारे क्लासिकल म्यूजिशियंस उनका वैसे तो कभी भी गाते थे, लेकिन मंगलवासी संगीत सभा में गाने का एक अलग गोल्ड स्टैंडर्ड होता था कि लोग कहते थे भाई मंगलवासी में हम गा रहे हैं, सुनिएगा जरूर। लोग कहते थे भैया, लोग सुनते थे, सुन करके वापस बताते थे कि आपने क्या गाया। और गजलों की जहां तक बात करी, जब आपको नियमित गाना है, आपको हर 3 महीने में आपको एक रिकॉर्डिंग मिलेगी जो कि आप दो दो गजलें कम से कम गाएंगे, तो उसमें किसी से दूसरे से कलाम न मिले, तो फिर आप क्या करते हैं? आप मेहनत करते हैं, अच्छे शेर चुनते हैं, अच्छे शायरों को सुनते हैं, फिर आप सीखते हैं, धुन बनाते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है दूसरा क्या गा रहा है ये सुनने की भी बड़ी एक हम लोगों में तल्लीनता रहती थी कि अगले ने क्या गाया। और ये तो हुआ, मैंने आपको बताया साथी कलाकार हम लोग, साथ साथ रेडियो में, क्योंकि वो जमाने में पैरेलल म्यूजिक क्रिएट हो रहा था फिल्म के अलावा, उसे आकाशवाणी ने जब बजाना शुरू करा तो हम पहली बार, मेरा मतलब पैरेलल म्यूजिक से है जो गैर फिल्मी गाने

0: करते हैं, धुन बनाते हैं कहीं ना कहीं। मुझे लगता है दूसरा क्या गा रहा है ये सुनने की भी बड़ी एक हम लोगों में तल्लीनता रहती थी कि अगले ने क्या गाया। और ये तो हुआ मैंने आपको बताया साथी कलाकार हम लोग, साथ साथ रेडियो में, क्योंकि वो जमाने में पैरेलल म्यूजिक क्रिएट हो रहा था फिल्म के अलावा, उसे आकाशवाणी ने जब बजाना शुरू करा तो हम पहली बार, मेरा मतलब पैरेलल म्यूजिक से है, जो गैर फिल्मी गाने जो फोक भी नहीं थे, यानी सबसे पहले आप जब गजलें सुन रहे थे जगजीत सिंह साहब को सुन रहे थे वहाँ, जब आप वहाँ पहली बार पंकज उदास जी को सुन रहे थे, और जब आप बेगम साहिबा को सुन रहे थे, या भजनों में आप जब सुन रहे थे अच्छे अच्छे कलाकारों को, और सब बॉम्बे की रिकॉर्डिंग्स होती थी, तो आपको समझ में आता था कि हम यहाँ पे जो लोकल स्तर पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और ये जो एल्बम्स, क्योंकि सबके वो जमाना सीडी का नहीं था तो सबके रिकॉर्ड्स भी नहीं थे, लेकिन संस्कार रोपने में रेडियो का बहुत बड़ा हाथ रहा। आराधना, रामचरितमानस भजन रोज बजते थे, तो एक बड़ा खूबसूरत बैलेंस म्यूजिक का 24 घंटे में रेडियो ने कर रखा था कि सबके हिस्से में सब कुछ था, कुछ इग्नोर्ड नहीं था। फिल्म म्यूजिक भी था, क्लासिकल भी था, और किस्सा कहानी थी, नौटंकी थी, बहनों के लिए भी था, किसानों के लिए भी था। रेडियो की उम्र इतनी लंबी रही है कि वो हर आदमी के कान पे वो ये रहता था कि उस सबके लिए कुछ ना कुछ है।
1: ये थी पद्मश्री मालिनी अवस्थी, स्वरांश सौजन्य, आकाशवाणी लखनऊ। सोचिए, एक ऐसा कैनवस जिस पर हर देश का रंग है, हर सभ्यता की लकीर है, और फिर भी तस्वीर एक है। आने वाली 21 मई को यूनेस्को का विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस है, और आज भारत इस कैनवस का केंद्र है, जहां ICCR जैसी संस्थाएं, विदेशी कलाकारों के हाथ और हमारी अपनी बहुरंगी परंपराएं मिलकर एक ऐसी भाषा बोलती हैं जिसका कोई अनुवाद नहीं होता, पर समझता हर व्यक्ति है। सुनते हैं हमारी अगली प्रस्तुति, एक ही मिट्टी 100-100 रंग।
2: आज से करीब 6 दशक पहले मशहूर विचारक मार्शल मैकलुहान ने एक शब्द दिया था, ग्लोबल विलेज। उन्होंने कल्पना की थी एक ऐसी दुनिया की जो सूचनाओं और तकनीक के जरिए एक छोटे से गांव में सिमट जाएगी।
3: लेकिन सच तो ये है कि मैकलुहान से हजारों साल पहले इस भारत भूमि ने पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र दिया था। भारत के लिए वैश्विक गांव कोई नई खोज नहीं, बल्कि एक प्राचीन जीवन दर्शन है, जहां पूरी दुनिया ही एक परिवार है।
2: इसी शाश्वत विचार और बिखरती हुई वैश्विक कलाओं को एक साझा मंच देने के लिए यूनेस्को ने 21 मई को विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस के रूप में चिन्हित किया है।
3: ये दिन महज एक तारीख नहीं, बल्कि एक जीता जागता स्मारक है इस बात का कि विविधता समाज को बांटती नहीं, बल्कि उसे मुकम्मल बनाती है। आज भारत इसी कल्चरल डाइवर्सिटी के वैश्विक केंद्र के रूप में खड़ा है।
2: भारत दुनिया के लिए एक ऐसी सांस्कृतिक प्रयोगशाला है, जहां 7 समंदर पार के रंग हमारी मिट्टी में मिलकर एक नया इंद्रधनुष बनाते हैं। इस सिलसिले को मजबूत कर रही है भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, यानी ICCR।
3: एक ऐसा संस्थान जिसका मुख्य उद्देश्य केवल अपनी कला का प्रदर्शन करना नहीं, बल्कि विश्व स्तर पर एक ऐसा साझा मंच तैयार करना है, जहां हर संस्कृति को सम्मान मिले और संवाद के लिए नए रास्ते खुलें।
2: सरकार की इन कोशिशों और वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती सांस्कृतिक धमक पर आइए विस्तार से सुनते हैं परिषद की उप महानिदेशक मनीषा स्वामी को।
4: भारत में हमेशा से ही वसुधैव कुटुंबकम की बात करते आए हैं। हमारी फिलॉसफी जो अप्रोच है सारे दुनिया को लेकर, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की जो हम बात करते हैं, ग्लोबल विलेज भी उसी का रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि हम यही मानते हैं कि सारी दुनिया जो है वो एक समुदाय, एक कुटुंब की तरह है। भारतीय कल्चर जो है वो उसके अंदर बहुत ही बेहतरीन तरीके से फिट होता है। तो मुझे लगता है कि कल्चर और ICCR ग्लोबल विलेज में एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम कर सकता है। शुरुआत में जब भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत रखा गया था 1950 में, लेकिन बाद में विदेश मंत्रालय जो है उसके अंतर्गत लाया गया, क्योंकि ये माना गया कि वे फॉरेन पॉलिसी का अभिन्न अंग है। इसीलिए ICCR है उसका जो मैंडेट है वो यही है कि प्रमोशन

0: ऑफ कल्चरल एक्सचेंजेस, आर्टिस्टिक एक्सचेंजेस, पीपल टू पीपल टाई, जो हमारे दो तीन वर्टिकल हैं, उनका मकसद ही यही है कि हम भारतीय संस्कृति का ना केवल प्रचार प्रसार करें, बाकी विश्व के साथ में भी हमारे एक्सचेंजेस बढ़े। ICCR आज की तारीख में 38 जो हमारे ICC जिन्हें कहते हैं भारतीय कला केंद्र, वो विश्व में हैं, और हमारे 11 ऑफिस जो हैं वो भारत के अंदर हैं, प्लस जो हमारे भारतीय मिशन हैं और दूतावास और प्रधान कौंसुल, वो हैं 200 के आसपास। उनके द्वारा हम अपने सभ्यता संस्कृति अपनी हेरिटेज का प्रचार प्रसार करते हैं। हमारे पास में बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, हमारे फ्लैगशिप फेस्टिवल्स हैं। मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगी कि हम भारत से कम 700 आर्टिस्ट हर साल भारत से बाहर परफॉर्म करने के लिए भेजते हैं, और ऐसे ही हम 500 के आसपास जो आर्टिस्ट, विदेशी आर्टिस्ट हैं, जो भारत में आते हैं और वो हमारे फेस्टिवल्स में भाग लेते हैं। भारतीय सभ्यता संस्कृति के साथ साथ में जो विश्व में जो आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, कला साहित्य संस्कृति की कोई भाषा नहीं होती, और वो सबके लिए आनंद का विषय है। और विशेष रूप से ICCR जो है फोक ट्राइबल आर्टिस्ट को प्रमोट कर रहा है, तो ICCR स्कॉलरशिप्स के माध्यम से जो है वो विदेशी छात्रों को भारत में पढ़ने के लिए आमंत्रित करता है, और 4000 स्कॉलरशिप प्रति वर्ष दी जाती हैं, और उसमें भी ग्लोबल साउथ जो हमारा है उसको प्रेफरेंस दी जाती है। कुछ विशेष रूप से स्कॉलरशिप है जो पूरे विश्व के लिए ओपन है फॉर परफॉर्मिंग आर्ट। तो इस प्रकार से आयुर्वेदा, योगा, डांस एंड म्यूजिक, एक गिवन पॉइंट पे आप देखेंगे 7,000 से 8,000 स्टूडेंट्स हमेशा भारत में पढ़ रहे होते हैं। दे आर अवर रियल ब्रांड एम्बेसडर्स।
1: इस दास्तां का सबसे सुंदर रंग उन विदेशी कलाकारों की आंखों में दिखता है जो यहाँ आकर अजनबी नहीं रहे। सुनिए इन आवाजों को जिन्होंने सरहदों की बंदिशों को पीछे छोड़ दिया और भारत की इस छाव में अपना दूसरा घर ढूंढ लिया।
2: नमस्ते प्यारे दोस्तों, मेरा नाम AK जुगबाया है। 15 साल पहले मुझे भारत सरकार ICCR की छात्रवृत्ति मिली। मुझे एक साल तक नई दिल्ली में रहने और पढ़ने का अवसर मिला। मेरे लिए ये बहुत ही रोचक और शानदार अनुभव था। मेरा जिंदगी नए रंगों में रंग गई। मैंने दिलचस्प लोगों के साथ पढ़ाई की और हिंदी का उपयोग मैं आज भी करती हूँ।
3: नमस्ते, मेरा नाम दरिया है। मैं ICCR के एक प्रोग्राम में हिंदी सीख रही थी और मैं भारत गई थी 2012 और 13 में। हिंदी केंद्रीय संस्थान दिल्ली के अंदर में हिंदी का एक साल का कोर्स पूरा किया था। उसके बाद मैंने अपना BA रशिया से पूरा कर लिया था, मास्टर्स भी पूरा कर लिया था और PhD का कोर्स भी पूरा किया था। उसके बाद मैं हिंदी पढ़ा पाई सेंट पीटर्सबर्ग के स्टेट यूनिवर्सिटी में, और अलग अलग क्षेत्रों में मैंने काम किया है भारतीय लोगों के साथ। मैंने बहुत काम किया है अनुवाद के क्षेत्र में और भारतीय टूरिस्ट को बहुत घुमाया रूस में, सेंट पीटर्सबर्ग में, जो कि मेरा अपना शहर है, और भारतीय प्रतिनिधियों के लिए बहुत अनुवाद किए हैं भारत को जानने के लिए, भारत को घूमने के लिए। हमारे पढ़ाई के दौरान हम ICCR के 2 टूर ले पाए और हम गए थे मुंबई गोवा और कर्नाटक और तमिलनाडु देखने गए थे। और ICCR के प्रोग्राम के तहत हम बहुत सारे देशों के लोगों से भी मिल पाए, दोस्ती बना पाए, और अब मैं ये बता पाऊंगी कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, अलग अलग देशों के दोस्त हैं, जिससे मुझे बहुत खुशी और आज तक मेरी बात लोगों से होती रहती है। और मैं सबको ये बोलूंगी, भारत जरूर जाइए, भारत घूमिए, देखिए, हिंदी सीखिए और आपको सफलता मिलेगी।
4: जब कोई विदेशी हाथ भरतनाट्यम की मुद्रा बनाता है या जब कोई विदेशी कंठ संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण करता है तो भाषा के सारे फासले मिट जाते हैं।
1: शिकागो से टोकियो और सेंट पीटर्सबर्ग से पेरिस तक आज भारत की मिट्टी की महक हर दिशा में है, चाहे वो आयुर्वेद का प्राचीन संयम हो या भारतीय संगीत की मधुर तान। दुनिया आज भारत को खुले दिल से गले लगा रही है।
4: भारत की ये सांस्कृतिक यात्रा हमें उस मोड़ पर ले आती है जहाँ भूगोल के नक्शे धुंधले पड़ जाते हैं और केवल मानवीय संवेदनाओं के रंग उभरते हैं।
1: आज भारत दुनिया के लिए महज एक गंतव्य नहीं, बल्कि वो अनुभव बन चुका है जहाँ अलग अलग संस्कृतियाँ नए रंग उड़ती हैं। संस्कृति।

0: आरती के लिए मैं नेत्रा
1: और मैं प्रांजल।
2: ये थी हमारी प्रस्तुति एक ही मिट्टी सौ सौ रंग। एक तरफ बड़े बड़े बाजार हैं, चमक दमक है, विज्ञापन है, और दूसरी तरफ एक छोटी सी दुकान, एक कांपती उंगली और उसमें उतरा पीढ़ियों का हुनर। आज की हमारी अगली लघु प्रस्तुति में उन्हीं की बात होगी। वो महिला शिल्पकार जो वोकल फॉर लोकल को सिर्फ नारा नहीं अपना जीवन मानती हैं। सुनते हैं उन्हीं की जबानी उनकी कहानी। वोकल फॉर लोकल हुनरमंद।
3: मेरा नाम सुनीता जाखड़ है। एक्चुअली मैं प्रोफेशनल टेक्सटाइल डिजाइनर हूँ। 12 इयर्स के बाद फिर मुझे काम करते करते मुझे लगा कि मुझे अब अपना खुद का कुछ स्टार्ट करना चाहिए, और जो मैं घर बैठे ताकि मैं अपनी फैमिली को भी टाइम दे पाऊँ, अपने बच्चों को भी देख पाऊँ और घर से अपना कुछ स्टार्ट कर पाऊँ। तो उसी से मेरा आइडिया है। मैंने जहाँ कंपनी में काम करती थी वही के मैंने स्टाफ, एक दो स्टाफ मैंने हायर किया, एक मशीन से मैंने स्टार्ट किया। फिर मैंने प्रोडक्ट अपने डिफरेंट डिफरेंट जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वहाँ पे मैंने उनको लिस्टेड किया। फिर देखा कि वहाँ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है अपने प्रोडक्ट्स को। फिर और हौसला बढ़ाते रहे, मतलब कस्टमर ने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। मैं जो भी हूँ अपने कस्टमर्स की वजह से ही हूँ। वो मुझे फीडबैक देते हैं अपना कि इसमें इतना जीपर्स होना चाहिए, इतना इसमें वेट होना चाहिए, चाहिए कि हम इजी कैरी कर पाए और हमारे लुक के साथ जो है वो मैच भी हो जाए। तो अपने मोस्टली जो है अपना B2B मैं एग्जीबिशन के थ्रू ज्यादा सेल करती हूँ। बाकी दो अपने ऑफलाइन स्टोर्स हैं। पूरा जो है मैं राजस्थान का आर्ट, आर्किटेक्चर और कल्चर हेरिटेज को ही अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू रिप्रेजेंट करती हूँ। जैसे इसमें शेखावटी की हवेलियां मैंने बनाई है, इस पे भी मैंने नवलगढ़ की, मंडावा की, वहां का आर्ट फॉर्म लेकर के उसको फोटोशॉप में लेयर टू लेयर उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं, रिपीट देखते हैं, कलर देखते हैं कि कहां से कैसा मैचिंग करेगा ताकि मेरे कस्टमर को कुछ नया दे पाऊं। मैं हमेशा मेरी ये कोशिश रहती है।
4: मेरा नाम साक्षी है और मैं भादोगढ़ हरियाणा से आई हूँ। मेरा जो काम है वो सांझी कला में है। मैं सांझी कला को प्रोत्साहन देने के लिए और उसको जीवंत रखने के लिए काम कर रही हूँ। और सांझी कला जो है वो बहुत ही प्राचीन कला है, हरियाणा की ही नहीं बल्कि पूरे जो ब्रज क्षेत्र है उसकी जो है वो बहुत ही प्राचीन धरोहर है। तो मैं उसके ऊपर कार्यरत कर रही हूँ। जैसे मैंने बहुत बचपन से ही करते थे तो मम्मी काफी चीजें करती रहती थी, तो उन्होंने भी बहुत सारा एक्सपोजर दिया और एग्जीबिशंस में भी जाते रहते थे बचपन से। तो ये हमारे घर में ही एक आदत थी कि बचपन से कला की पहचान सीखना। तो मैंने बहुत सारी चीजें ट्राई करी, बहुत सारे आर्ट फॉर्म्स ट्राई करे, लेकिन फिर सांझी पे आके मेरा दिल रुक गया कि मेरे को यही करना है। बहुत कम आर्टिजन्स हैं जो ये कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं इसी को क्यों ना एज अ नीच लेके चलूं और फिर उसी में काम करूं। तो मैं अभी लगभग 9 से 10 साल हो गए हैं मुझे आर्ट फॉर्म सीखते हुए भी और करते हुए भी बाकी लोगों को उसके बारे में बताते हुए। जब मैंने अपना 12th पास किया था उसके बाद से ही मैंने ये आर्ट फॉर्म स्टार्ट कर दिया था। इन सब चीजों के बारे में बस पढ़ते थे, तो उसके बाद मुझे मौका मिला ताकि मैं ये आर्ट फॉर्म या इसमें कुछ कर पाऊँ। मेरा जो शहर है भादोगढ़, वहाँ पे साल में एक इवेंट ऑर्गेनाइज होता है, उसमें सिर्फ आर्टिजन को बुलाया जाता है। तो जिनसे मैंने सीखा, श्री राम सोनी जी जो इस कला में निपुण है और उनको नेशनल अवार्ड मिला हुआ है, वो वहाँ पे आए थे, तो मैंने उनका काम देखा, फिर मैंने उनसे प्रेरणा ली। तो मैंने उनके साथ सीखते सीखते उनके साथ काम करते करते मैं आज मेरे को स्टेट अवार्ड मिला हुआ है हरियाणा सरकार की तरफ से।
5: मेरा पूजा राहुल नाम है, मैं गुजरात से हूँ, भावनगर कच्छ के साइड से। मेरा ये काम है ज्वेलरी का काम, सारा हैंडमेड रहता है और मेरी ज्वेलरी भी ऐसी ही रहती है, हमेशा हैंडमेड से बनी हुई पीसेस। जब भी मुझे एक पीस बनाना होता है तो 3-4 दिन में मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। हम इतनी जो मेहनत करते हैं और मेहनत के बाद ये जो हमें फल मिलता है जो सरकार की नजरों में आता है, क्योंकि ऐसे तो बहुत से सब होते कारीगर घर में जो काम करते हैं पर बहुत मुश्किल है वो बाहर निकल के आ पाए। जो सरकार हमें उभारती है, जो अवार्ड देती है, नेशनल अवार्ड दे या फिर स्टेट अवार्ड दे, वो हमारे लिए बहुत महत्व रहता है। उसी से हम बाहर निकलते हैं, उसी से हमें तजुर्बा मिलता है।
2: ये थी हमारी प्रस्तुति वोकल फॉर लोकल हुनरमंद। सहयोग श्रीनाथ दीक्षित का था। कुछ चीजें समय से परे होती हैं, आस्था, स्मृति और श्रद्धा। जब तथागत बुद्ध की पवित्र शरीर धातु उनकी पावन भूमि पर लौटती है तो लगता है जैसे इतिहास ने सांस ली हो। प्रस्तुत है लघु रूपक पुण्य प्रत्यावर्तन।
0: आवाज में उतरने दीजिए इस दृश्य को। हिमालय की गोद में बसा लद्दाख, ऊंचाई ऐसी कि सांस थम जाए, ठंड ऐसी कि पत्थर भी सिहर जाए,
1: और इन्हीं पहाड़ों के बीच

0: इन दिनों एक अलग ही ऊष्मा है, एक अलग ही रोशनी है, एक ऐसी आस्था की लहर जो पूरे भारत में महसूस की जा रही है।
1: वजह है भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों का लद्दाख पहुंचना। लोग इसे महज एक आयोजन नहीं मान रहे, उनके लिए ये है बुद्ध का पुनरागमन।
0: सदियों से लद्दाख ने बौद्ध धर्म की उस लौ को थामे रखा है जो बाकी दुनिया में भी रोशनी का पर्याय बन रही है। यहाँ के मठ, यहाँ के भिक्षु, यहाँ की मिट्टी, सब कुछ बुद्ध के संदेश से रचा बसा है।
1: जब पवित्र अवशेषों के प्रदर्शन की बात आई तो लद्दाख को ही चुना गया, लेकिन इन अवशेषों का यहाँ पहुँचना बुद्ध के स्वयं आने जैसा क्यों माना जा रहा है? बता रहे हैं इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के महानिदेशक श्री अजीत हल्दर।
2: ये जो एक्सपोजिशन है, रिलिक जो है, गौतम बुद्ध के जो अवशेष है, इनको गौतम बुद्ध के खुद उनका अपना ओरिजिनल सेल्फ माना जाता है। जब वो रिलिक को कहीं ले जाते हैं हम किसी देश में, तो बहुत देश में जो बुद्धिस्ट हैं वो मानते हैं कि गौतम बुद्ध खुद आए हमारे देश। लद्दाख में लेने का मतलब इसलिए है क्योंकि लद्दाख ही एक ऐसा जगह है जहाँ पे सब बौद्ध ट्रेडिशंस जो है वो एक साथ मिल के रह रहे हैं फॉर सेवरल सेंचुरीज। और लद्दाख में जो मोनेस्ट्रीज हैं, 100 से ऊपर मोनेस्ट्रीज है, हमें सिर्फ जो मेन मोनेस्ट्रीज उनके बारे में ज़्यादा ज्ञान है। तो इतने सालों से इन मोनेस्ट्रीज ने बुद्धिस्ट आर्ट, स्क्रिप्चर, मैनुस्क्रिप्ट्स, बुद्धिस्ट चैंटिंग, बुद्धिस्ट वैल्यू सिस्टम्स को एक जगह संगठित तरीके से रखा हुआ है, मगर ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। वो अपने कोने में कहीं पर लद्दाख में बैठे हुए अपने पास अपने सब एकत्रित करके किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं। रिलिक ले जाने का मतलब यह है कि दूर दराज जगहों से ले में जो लद्दाख में जो लोग हैं सबको एक जगह लाया जाए, हर एक कोने से लोग जो बुद्धिस्ट रह रहे हैं लद्दाख में सबको लाने का बंदोबस्त किया गया है। तो ये पूरा लाके एक माहौल ऐसे क्रिएट किया जाएगा ताकि गौतम बुद्ध का जो सीख है, कंपैशन, विजडम एंड पीस, इसके जरिए सब पे ये मैसेज जाएगा कि भाई आप लोगों ने इतने सालों से जो इतना बढ़िया काम किया, उसका जो एक ट्रिब्यूट कह सकते हैं जो दिया जा रहा है आपको, ये गौतम बुद्ध का आशीर्वाद, बुद्ध खुद आपके जमीन में आके आपको आशीर्वाद दे रहा है।
0: 21 अप्रैल से 15 मई 2026 तक लेह से जांस्कर तक ये आयोजन एक आध्यात्मिक यात्रा की तरह चल रहा है। प्रार्थना सभाएं, ध्यान सत्र, सांस्कृतिक संध्याएं, बौद्ध दर्शन पर संवाद
1: और 1 मई बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर पवित्र अवशेषों के सार्वजनिक दर्शन का अवसर भी खुला।
0: ये आयोजन केवल आस्था का पर्व नहीं, ये लद्दाख को दुनिया के नक्शे पर और गहरे अंकित करने का अवसर भी है।
1: केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत बता रहे हैं कि किस तरह यह महोत्सव लद्दाख की सांस्कृतिक पहचान और पर्यटन दोनों को नई ऊंचाइयां देगा।
3: भारत में और भारत की यह वांगमय में भगवान बुद्ध का चरित्र, भगवान बुद्ध का व्यक्तित्व, भगवान बुद्ध का जीवन और उनका दर्शन, ये सब निश्चित रूप से एक स्ट्रॉन्ग होल्ड पिलर के रूप में है। और भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए उनके प्रत्यक्ष स्मृति अवशेषों का इस तरह का प्रदर्शन और उसके चलते हुए जिस तरह की ऊर्जा का उत्सर्जन वहाँ लद्दाख में होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण। और क्योंकि निश्चित ही इस प्रदर्शनी के चलते हुए देश और दुनिया से अनेक लोग लद्दाख में जाने वाले हैं, स्थानीय लोग भी लद्दाख में, उसके कारण से डोमेस्टिक टूरिज्म भी बढ़ने वाला है। और जब इस तरह का बड़ा आयोजन किसी क्षेत्र में होता है, किसी जगह पर होता है, तो निश्चित ही उसके प्रति एक ध्यान आकर्षित पूरे विश्व भर का होता है, एक नई जो है उत्सुकता उस क्षेत्र को लेकर के डेवलप होती है। मैं मानता हूँ कि इसका बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव जो है वो लद्दाख के पर्यटन पर पड़ेगा।
1: शांति, करुणा, धैर्य, बुद्ध के ये तीन शब्द लद्दाख की हर घाटी में, हर मठ की दीवार पर, हर भिक्षु की सांस में जीते हैं।
0: आज जब ये पवित्र अवशेष इस धरती पर है तो लगता है जैसे बुद्ध स्वयं कह रहे हो, मैं यहाँ था, मैं यहाँ हूँ और रहूंगा। संस्कृति भारती के लिए मैं प्रांजल।
1: और मैं नेत्रा।
4: बुद्ध ने कहा था, जो जाता है वो स्मृति में लौटता है। और आज की इस पत्रिका के अंतिम पड़ाव पर

0: हम उन्हें याद करते हैं जो चले गए पर जिनके अवदान आज भी हमारे बीच मौजूद हैं और हमें समृद्ध कर रहे हैं। भारत रत्न पंडित पी.वी. काणे, जिन्होंने धर्मशास्त्र अध्ययन को नई ऊंचाइयां दी। अमर शहीद मास्टर अमीर चंद, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनके शब्दों में पूरा विश्व, पूरा आकाश समाया हुआ है। सत्यजीत रे, जिन्होंने सिनेमा को ही कविता बना दिया। और विदुषी गिरिजा देवी, जिनके स्वर में गंगा सी पवित्रता थी। इन सभी विभूतियों को पत्रिका का शत शत नमन। इसी के साथ संस्कृति भारती का ये अंक अब संपन्न होता है। नवोदिता को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ।
2: मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। अगला कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया जाएगा, कृपया प्रतीक्षा करें।
3: पंडित प्रशांत मजुमदार से तबला की प्रारंभिक शिक्षा लेकर की, इसके पश्चात उन्होंने तबला में उच्च प्रशिक्षण दिल्ली घराने के पंडित प्रेम बल्लभ, फर्रुखाबाद घराने के प्रोफेसर ज्ञान प्रकाश घोष तथा बनारस घराने के महान तबला वादक पंडित सामता प्रसाद से प्राप्त की। तबला में स्वर्ण पदक प्राप्त करने के बाद उनकी लय और ताल की गहरी समझ ने उनके संगीत को एक सुदृढ़ आधार प्रदान किया। इसी दौरान उन्होंने संतूर सीखने की प्रेरणा प्राप्त की और महान संतूर वादक पंडित भजन सोपोरी के सानिध्य में सूफियाना घराने की शिक्षा ग्रहण की। लय और स्वर के प्रति उनकी गहरी समझ ने उन्हें एक उत्कृष्ट वादक के रूप में स्थापित किया, जिसके लिए उन्हें विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगीत संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया गया। श्री राजकुमार मजुमदार आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के ए श्रेणी के कलाकार हैं तथा ICCR के मान्यता प्राप्त कलाकार हैं। वे भारत एवं विदेशों में एक प्रतिष्ठित कलाकार के रूप में अनेक मंचों पर अपनी प्रस्तुतियां दे चुके हैं।
4: This is Akashwani. In tonight's National Program of Music, we bring to you a Santoor recital by Rajkumar Majumdar. Rajkumar Majumdar is one of the most versatile Santoor players in India, renowned for his distinctive style and exceptional tonal quality. His performances are widely admired by music connoisseurs, particularly for his remarkable ability to play the santoor with both hands in a vibrant and dynamic manner, creating a truly captivating musical experience. He began his musical journey with training in tabla under his father, the eminent classical vocalist, late Sangeet Sadhak, Pandit Prashant Majumdar. He later underwent advanced training in tabla under illustrious gurus including Pandit Prem Ballab of the Delhi Gharana, Professor Gyan Prakash Ghosh of the Farrukhabad Gharana, and the legendary Pandit Samata Prasad of the Banaras Gharana. A gold medalist in tabla, his deep understanding of rhythm laid a strong foundation for his musical evolution. During this period, he was inspired to learn the santoor under the guidance of the legendary santoor maestro, Pandit Bhajan Sopori of the Sufiana Gharana. His innate sense of rhythm combined with melodic sensitivity enabled him to emerge as a distinguished instrumentalist, earning accolades at both national and international levels from various prestigious musical organizations. Rajkumar Majumdar is an A-grade artist of All India Radio and Doordarshan and an empaneled artist of ICCR. A celebrated performer in India and abroad, he has presented his art on numerous prestigious occasions.
3: आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं उजित उदय कुमार। राजकुमार मजुमदार अपने कार्यक्रम का आरंभ राग जनसमोहिनी से कर रहे हैं। प्रस्तुत है आलाप जोड़ और झाला। विलंबित रचना रूपक ताल में निबद्ध है और मध्य लय रचना तीन ताल में निबद्ध है।
4: He is accompanied on

मुकाबला बाय उजित उदय कुमार. राजकुमार मजूमदार बिगिन्स हिज संतूर रिसाइटल विद राग जन सम्मोहिनी प्रेजेंटिंग आलाप जोड़ एंड झाला. विलंबित कॉम्पोजिशन इज सेट टू रूपक ताल एंड मध्यलय. द्रुत कॉम्पोजिशन इज सेट टू तीन ताल.

0: ये था राजकुमार मजुमदार का संतूर पर बजाया राग जनसम्मोहिनी। राग जनसम्मोहिनी के बाद लीजिए अब सुनिए राजकुमार मजुमदार का संतूर पर बजाया राग आभोगी। मध्य लय व द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है।
1: That was Rag Jansammohini. Continuing his recital, he now presents Rag Abhogi. Madhyalay and Drut composition is set to Teen Taal.

0: अभी आप सुन रहे थे राजकुमार मजुमदार का संतूर पर बजाया राग आप होगी। इसी के साथ आज का संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे उजित उदय कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और इसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित किया गया।
1: You just heard Santoor recital by Rajkumar Majumdar. With this, we come to the end of tonight's national program of music. He was accompanied on tabla by Ujit Uday Kumar. This program was earlier recorded in the studios of Akashwani Delhi. This broadcast came to you from the Delhi station of Akashwani.

0: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशीत प्रामाणिक और खुदीराम टुडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने 5 मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। तमिलनाडु में तमिलग्म वेत्री कड़गम TV के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री विजय कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
1: हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में TV के 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में पार्टी को नई सरकार के गठन के लिए 118 सीट की आवश्यकता है। चेन्नई में आज संवाददाताओं से बातचीत में टीवी के नेता अधव अर्जुन ने बताया कि VCK और IUML दोनों ने सरकार गठन के लिए उसे बिना शर्त समर्थन दिया है। 2 विधानसभा क्षेत्रों से जीत हासिल करने वाले विजय को 1 सीट खाली करनी होगी, जिससे TVK की संख्या घटकर 107 रह जाएगी। हालांकि TVK पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, VCK और IUML से कुल 13 विधायकों का समर्थन मिल चुका है। इनमें कांग्रेस के 5 और अन्य सहयोगी पार्टियों के 2-2 विधायक हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री वारंगल में PM मित्रा पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। भारतीय तटरक्षक बल ICGS ने आज गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में नई पीढ़ी के अदम्य श्रेणी के फास्ट पेट्रोल वेसल श्रृंखला के नवीनतम पोत ICGC अचल को सेवा में शामिल किया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये पोत तटीय और अपतटीय निगरानी, अवरोधन गतिविधि, खोज और बचाव, तस्करी रोधी अभियान और समुद्री प्रदूषण से निपटने के अभियान में सहयोग करेगा। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डेम्सबो को हराया। भारतीय महिला रिकर्व टीम कल स्वर्ण पदक के लिए चीन का सामना करेगी, जबकि सिमरनजीत कौर अपना सेमीफाइनल

0: The 25-year-old Maharashtra archer defeated Denmark veteran player-cum-coach Martin Damsbo 147-144 in the bronze medal playoff to secure India's first medal of the ongoing tournament. And with that, we end this news bulletin.
1: मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी आज की ये सभा यहीं संपन्न होती है। प्रातः 5:52 पर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक आज्ञा दें, शुभ रात्रि, जय हिंद।